0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद से
0: संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाने
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो
1: गया। अच्छा खाओ खाओ।
0: ना कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे।
2: और फिर यशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: घाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
3: बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास।

सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है आप सभी का। स्वागत अभिनंदन, आपने ट्यूनिंग कर लिया है एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के देसी रेडियो और उस रेडियो स्टेशन पे जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, मंडे की सुबह है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है। अगर बात करें स्टेशन क्लॉक में समय की, तो भैया समय हुआ है 8:21:12 और आज तारीख की बात करूं तो 3 अगस्त की सुबह है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खूबसूरत सी पावन मेला में। आपका अभिनंदन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं, दिल से आप सभी का वेलकम है जी। एंड एक और खास चीज जो बतानी है मुझे आपको, मैं डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज का दिन बहुत खास है, ऑफकोर्स आप समझ गए, आज सावन का पहला सोमवार है। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेरों मंगल शुभकामनाएं। भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि ईश्वर भगवान शिव आपके जीवन में सारी जितनी भी दुविधाएं हैं, जो भी संकट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ दूर करे। आपके जीवन में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें आए, पॉजिटिविटी आए, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। जो भी आपके जीवन में आपको बनना है या जो भी कुछ आपको हासिल करना है, वो सब कुछ भगवान शिव आपको दें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप जीवन में हर एक पल का आनंद ले सकें, यही ईश्वर से प्रार्थना है और हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके लिए। आज के दिन की ढेरों मंगल बधाइयां। श्रोताओं, आप जब आनंद के साथ जुड़ते हैं तो बातें बिल्कुल दिल वाली होती हैं और दिल से दिल तक वाली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप भी मेरे साथ जेन्युइन होते हैं और हम भी आपके साथ बिल्कुल जेन्युइन दिल से दिल वाली बातें करते हैं। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ, ढेर सारी जानकारियाँ आपको देनी है और अगले 2 घंटे आपका और मेरा साथ बिल्कुल ऐसे ही बरकरार रहेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

0: चलिए श्रोताओं, अब बात हो ही गई है भगवान शिव की और आज का दिन भी इतना प्यारा है, तो फिर एक खूबसूरत मधुर मधुर भगवान शिव की इस खूबसूरत सी आराधना के साथ ही करेंगे, स्तुति के साथ ही करेंगे आज के इस सफर की शुरुआत। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए
1: मोबाइल।
0: मैं आपको थोड़ी देर में यहीं पर मिलता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: तेरा बैग यहाँ रख रहा हूँ। अरे पागल।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलान
2: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
4: जुड़े रहने के लिए सब
5: 6 5 4 3

0: समझे बिल्लू, नया कुरकुरे है।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: सारे लिसनर्स साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूरे दिल से। और कुछ अच्छे गानों के बाद आपका स्वागत करते हैं, एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हो गया है 8:37, 3 अगस्त की ब्रांड न्यू मॉर्निंग है। हर हर महादेव कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुबह से मंदिरों में बोल बम और ओम नमः शिवाय की गूंज लगातार जारी है। मैं भी 5:30 मंदिर पहुंच गया था, और जब मैं शिव वाले पहुंचा उस टाइम पे भी जो है श्रद्धालु भक्त लेकर आ रहे थे और भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे थे। और अभी भी जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो मैंने देखा चारों तरफ सिर्फ बोल बम भगवान शिव के जय जयकारों से जो है पूरा आसपास का माहौल एकदम पॉजिटिविटी से भरपूर हो गया था। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई मुझे भी। एंड आप में से कई लोग मंदिर जा रहे होंगे, कुछ लोग आ चुके होंगे, कुछ लोगों का आज फास्ट भी होगा। तो आपने जिस तरीके से भगवान शिव की पूजा की है, बस वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण जो आप चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा हैं। और आप चाहे व्रत करें या करें, बस अपने मन को अच्छा रखें। श्रोताओं, ढेर सारे साथी मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त और तमाम सारे संदेश लगातार पहुंच रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मिस भी किया है, तो कुछ लोगों ने जो है हमसे अपनी प्यारी प्यारी मैसेजेस में अच्छी पॉजिटिव बातें शेयर की हैं और सावन की शुभकामनाएं भी मुझ तक पहुंचाई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने खूबसूरत मैसेज पहुँचाने के लिए। मैं ज़रूर अभी लौट कर आऊँगा तो बताऊँगा आज के दिन के बारे में, आज का दिन क्यों खास है, क्या स्पेशल है, इस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन एक अच्छा गाना भी होगा आपके लिए। आज का मौसम क्या कहता है जरा फटाफट से उसके बारे में बात कर लेते हैं। मौसम के हालचाल जरा फटाक से जानते हैं जी। 29 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जहां जम बारिश होने की पूरी संभावना है। और ऑफ कोर्स सावन का पहला सोमवार है तो बारिश होने की डेफिनेटली संभावना है। 3 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, ह्यूमिडिटी मतलब ठीक ठाक रहने वाली है। एंड बात करें टेम्परेचर लो एंड हाइस्ट की, तो ये हाइस्ट जाएगा 33 एंड लोएस्ट की बात करें तो 27 पहुंच सकता है। अभी करंट 29 है तो मौसम रहेगा ऑसम। प्लीज हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, और हाँ कोशिश करिए कि भैया साथ ही साथ जो है अपने आप को गर्मी से बचाइए। मतलब हालांकि मौसम ऐसा बाहर हो नहीं रहा है बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छा और वंडरफुल मौसम हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको पानी पीते रहना और अपना खासम खास ख्याल रखना है। आने वाला गाना
1: मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं,
0: फाल्गुनी पाठक। सावन शुरू हो गया है यार, गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। सोमवार की सुबह है, आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है जी। जो लोग मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने जस्ट अभी रेडियो ट्यून इन किया है, उनको भी बहुत बहुत उनका वेलकम है, उनका स्वागत है, और उनको एक प्यारा वड्डा वाला गुड मॉर्निंग है यार। फिलहाल सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। I'll be right back, बताता हूँ आज का दिन क्यों खास है।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

जी हाँ, वेलकम बैक एक बार फिर से मंडे मॉर्निंग में। आप सुन रहे हैं आनंद को, यह है बिंदास मॉर्निंग ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। आप जुड़ते हैं, यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:53। चलिए जी, बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। क्यों खास है 3 अगस्त की तारीख? चलिए दोस्तों, आपको बताते चलें। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हर दिन का इतिहास बेहद ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं हर दिन के इतिहास के पन्नों में, वैसे ही आज का दिन भी बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो सन 2000 में ब्रिटेन की क्वीन मदर द्वारा अपनी 100वीं वर्षगांठ जो है वो आज मनाई गई थी। श्रोताओं, आज ही के दिन, और आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ था सन 2004 में, आज ही के दिन 3 अगस्त को। हां जी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुई रूसी अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस M-61 सफलतापूर्वक अपने कक्ष में पहुंचा। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में हुई एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी श्रोताओं, जिसमें 100 लोगों की जान चली गई थी, और ये सुनकर बड़ा दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं। लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो एक और चीज़ आज के दिन को और ज़्यादा कहीं ना कहीं अलग बना देती है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसी पर्सनालिटी की जो भारत की महिला होने के साथ साथ जो है बॉल टीम खिलाड़ी भी हैं। हाँ जी, लॉन बॉल टीम खिलाड़ी, इनका नाम है लवी चौबे। इनका जन्म हुआ था सन 1980 में, आज ही के दिन। अगर बात करें वहीं शकीला जी की, जो भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध खलनायकों में से एक थी, उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था सन 1933 को। अपूर्व सेन गुप्ता भारतीय क्रिकेटर हैं, 1939 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। एंड बलविंदर सिंधु जी का जन्म हुआ, जो भारतीय क्रिकेटर हैं। गोपाल शर्मा, ये भी भारतीय क्रिकेटर हैं, सन 1960 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। श्रोताओं, आज ही का दिन मुझे लगता है सब खिलाड़ियों को समर्पित है, क्योंकि इतने सारे फुटबॉल, चाहे क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, सबका जन्म मुझे लगता है आज ही के दिन हुआ। लेकिन आज का दिन बहुत ही खास है। बाबा हरभजन सिंह का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था 1941 में, भारतीय सेना के एक सैनिक रहे श्रोताओं, इनका भी जन्म हुआ आज के दिन। जयदेव भारतीय संगीतकार तथा बाल अभिनेता रहे, सन 1919 में जन्म हुआ था आज के दिन। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह मनाया जाता है, इसके अलावा हृदय प्रत्यारोपण दिवस भी आज सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके साथ मैं साझा कर रहा था इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एंड आगे और भी तमाम सारी बातें जो हैं जारी रहेंगी। मुरादाबाद में क्या स्पेशल हो रहा है, सावन में क्या स्पेशल शुरू किया गया है, ढेर सारी जो जानकारी है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आप बिल्कुल कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। तमाम सारे गाने और तमाम सारी बातें जो हैं वो ऑफकोर्स आपके लिए आती रहेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस आप ऐसे ही जुड़े रहिए, आरजे आनंद को सुनते रहिए, और तमाम सारी चीज़ें हैं जो आगे आगे आपको पता चलेंगी इसी चैनल पे। और अगर आप मेरे साथ कुछ और प्यारी बातें साझा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और अपनी प्यारी प्यारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल एक प्यारा गाना मैं आप तक पहुंचाता हूं जल्दी से, एंड लौट कर आता हूं। उसके बाद आपके साथ एक छोटा सा सेगमेंट करना है, चेक योर लक विद डॉक्टर राखी। अगर आप अपने करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, लव लाइफ के बारे में कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ। जरा सी देर में आपका सवाल मैं पहुंचाऊंगा एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी तक। कुछ भी आपको पूछना है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपना लव लाइफ, फ्यूचर, करियर, जो भी आपको जानना है अपने फाइनेंस के बारे में, आपके पास एक गोल्डन चांस है मंडे की मॉर्निंग। आने वाला गाना एंजॉय कीजिए, वॉल्यूम बढ़ा के सुनते रहिए आनंद को। यह है मंडे की सुबह, गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

फटाफट से आपको हेलो हेलो वेलकम बैक है। फटाफट से आपको जरा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भाई साहब। अभी जस्ट मुझे एक कड़क अपडेट आई है कि स्कूल्स की जो है छुट्टी अनाउंस कर दी गई है आज। हाँ जी, आपको बता दें नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चों का अवकाश जो है आज घोषित कर दिया गया है, यानी कि उनकी छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं। तो आज की छुट्टी स्पेशली अनाउंस हो गई है मंडे की। तो अगर आपके बच्चे स्कूल जाने का प्लान कर रहे थे या अगर आज वो नहीं गए हैं, आपको लग रहा है कि यार चलो ठीक है आज बच्चे नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन फटाफट से दे रहा हूँ कि भैया जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंशा जी द्वारा श्रवण मास के प्रथम सोमवार को जो है ध्यान में रखते हुए समस्त बोर्ड नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के समस्त विद्यालयों में आज के दिन जो विद्यालय हैं आज के दिन यानी 3 अगस्त 2026 की सुबह अवकाश घोषित कर दिया गया है, यानी कि आज बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। कल मैं देख रहा था ब्रज घाट की तरफ, जब मैं दिल्ली से आ रहा था, एक्चुअली मैं दिल्ली गया था किसी काम से, जब मैं वहां से वापस मुरादाबाद की तरफ आया तो मैंने देखा पूरा जो दिल्ली रोड है बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है सजा हुआ है और पुलिस प्रशासन की तैयारी बहुत ही अच्छे से है और चारों तरफ जो है खूबसूरती का जो नजारा था वो देखने लायक था कल। और ब्रज घाट की तरफ तो अलग ही धूम मची हुई थी, तो मतलब चारों तरफ जो है माहौल बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देखिए नगर निगम का ऑफकोर्स है ही, लेकिन पुलिस प्रशासन भी लगातार जो है अपनी 24/7 प्रस्तुति अपनी हाजिरी दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी प्रेजेंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो जिस तरीके से चीज़ें मेंटेन की गई हैं पूरे शहर के अंदर वो भी मतलब अनक्रेडिबल है यार, मैं बता ही नहीं सकता हूँ, अनबिलीवेबल, इतनी अच्छी से चीज़ें की गई हैं। तो भाई हमारी तो जो है बेस्ट विशेज हैं और हमेशा अच्छी चीज़ें होती रहनी चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत वैन तैयार की गई है कांवड़ियों के लिए, इसका नाम है कांवड़ मोबाइल वैन। इसके बारे में मैं डेफिनेटली अभी बात करने वाला हूँ। ये इस वैन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगा ना मुरादाबाद की में क्या स्पेशल हो रहा है और वो सारी चीजें तो आपको पता लगती है मेरे साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रांड न्यू मंडे मॉर्निंग 3 अगस्त की सुबह। हाँ जी, तो और भी ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो आपको लगातार बताता रहूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अच्छे अच्छे गाने भी आएंगे और साथ ही साथ जानकारियां भी आएंगी। सोमवार की प्यारी सी सुबह है, आप सभी का स्वागत करते हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बिकॉज आप आनंद के साथ हैं तो अच्छे गाने तो बजना बनता है। आई मीन टू से मैं ये कहना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर में लेकर आऊंगा डॉक्टर वाई राखी को अपने साथ, जो बताएंगी आपका फ्यूचर। कुछ जानना चाहते हो तो इमीडिएटली मुझे मैसेज करो अपने नाम के साथ, अपना डेट ऑफ बर्थ, आपको कुछ भी जानना है, अपना लव लाइफ, फ्यूचर लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी आपको लगता है, अपने करियर को कैसे इन्हांस कर सकते हो, अपनी स्टडी को कैसे और ज्यादा अच्छा बना सकते हो, जो भी आप चाहते हो, अगर कुछ भी आपने पूछना है तो एक गोल्डन चांस है आज की सुबह। आप मुझे व्हाट्सएप करें अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी। सेगमेंट होगा चेक योर लक विद डॉक्टर राखी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
2: लेकिन सोनिया
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
2: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
3: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

कसम से यार, ऐसे गाने सुन के मजा आ जाता है। इतने प्यारे गाने जो है ना, एकदम सुबह सुबह ताजा तरीन कर देते हैं यार। मतलब अंदर से एक फुल ऑन वाइब आती है कि यार क्या पॉजिटिव और बढ़िया मस्त वाले गाने चल रहे हैं यार। ऑफ कोर्स यार, मस्त गाने तो आपके लिए चलेंगे ना, क्योंकि आप सुन रहे हैं मस्त मस्त वाला शो जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद। ये ब्लैक कॉफ़ी जो होती है ना, वो बहुत ही बढ़िया होती है हमारी हेल्थ के लिए, है ना। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसे आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिशियल हो सकती है, किस तरीके से आपको ये हेल्प कर सकती है, इसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे थोड़ी सी देर के बाद। एंड अभी फिलहाल बात कर लेते हैं मुरादाबाद के बारे में। तो देखिए, मुरादाबाद में एक बहुत ही खूबसूरत जो है बैन जो है चलाई जा रही, जिसके बारे में भी तो आपको बता रहा था। इसके अलावा जो मुरादाबाद की सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मुरादाबाद में जो कांवड़ यात्री हैं उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम और ज्यादा कड़क कर दिए गए हैं, एंड इसमें काफी सारी चीजों की हेल्प ली जा रही है। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है।

0: जो है माहौल बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। तो मैं तो बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको समय मिले आप भी जरूर, जहां भी आपको मौका लगे आप भी सेवा में लग जाइए। बहुत ही खूबसूरत टाइम है, बहुत ही पॉजिटिव टाइम है और तमाम सारे श्रोता मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। मैं आपसे जरूर बात करूंगा एंड पहले आपके वॉइस नोट सुन लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि ढेर सारे वॉइस नोट मेरे पास पहुंच चुके हैं आज की मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे संदेश पहुंचाने के लिए।
1: नमस्कार, आज है सावन का पहला सोमवार। सभी लिसनर को और सभी आरजेस को मेरी तरफ से पहले सोमवार की शुभकामनाएं। ऐसे ही भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, बजाने वाले बजाते रहें और सुनने वाले सुनते रहें, ये रेडियो हमेशा यूं ही चलता रहे। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। नमस्कार, मैं भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 में कहोस। प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग और आरजे हैं आनंद। नमस्कार, राधे राधे।
0: थैंक यू भूपी जी, राधे राधे। आपको भी बहुत बहुत सावन की इस पवित्र माह की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और भी मैसेज हमारे पास पहुंच चुके हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शिखानंद। जय भोलेनाथ, आपको भी जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम वेरी गुड। ललिता कश्यप मेरे साथ नवीन नगर से जुड़ी हैं, लिखती हैं, हर हर महादेव, आज पहला सावन का व्रत है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। जय भोलेनाथ, आपको भी जय भोलेनाथ जी। गुड मॉर्निंग, मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। मैंने आपसे कहा था ना, अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ आप मुझे भेजो अगर आपको कुछ भी पूछना है अपने फ्यूचर के बारे में, लव लाइफ के बारे में। तो इतने सारे व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचे हैं, थैंक यू वेरी मच। हेलो हाय, जिंदगी में एक बात याद रखना आनंद जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? अगर रोते रोते हंसी आ जाए तो समझ लो कि भैया वाईफाई कनेक्ट हो गया है। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत बधाइयां इस पावन महीने की। गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, मौसी अंसारी बनारस से मेरे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? दुर्गेश जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड यस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे फ्रेंडशिप डे, तो आप सभी को वंस अगेन ब्लीटेड हैप्पी वाला फ्रेंडशिप डे। और ऐसा नहीं है कोई भी चीज़, मुझे लगता है कि जब आप सेलिब्रेट करो तभी उसका माहौल बन जाता है। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जुड़े हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, सभी श्रोताओं को सावन के पहले सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पास पवित्रा का मैसेज आया है। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? हाउ यू? आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। इन्होंने लिखा है कि सावन बहुत ही खूबसूरत सा जो है शुरू हो गया है और ऐसे में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और साथ ही साथ हम हरी हरी चीजें देखकर हमारा मन भी बहुत प्रसन्न होता है। तो आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आपको ढेरों शुभकामनाएं सावन की। थैंक यू। एक मैसेज और आ गया है, जय भोलेनाथ, आपको भी जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग सर, बहुत सारी अपडेट आपके शो से मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
3: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
7: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
8: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
9: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
10: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम, दिस इज द अमेजिंग मॉर्निंग मैगजीन शो। ऑफ कोर्स आपको नाम पता है एंड बंदे का नाम आनंद है। अच्छे गाने ऑफ कोर्स आपके लिए लेकर आता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है तो एक अच्छी किक स्टार्ट होनी चाहिए ना यार, अच्छे गानों के साथ। एक अच्छा सा गाना प्ले कर रहा हूँ जो थोड़ा सा आपको फ्लैश बैक में ले जा सकता है, शायद आपको नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग भी आ जाए। चलिए इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। आप जहां भी जा रहे हैं विश यू ऑल द

0: सचिन और अमेजिंग सॉन्ग यार, इतने प्यारे गाने। और ये वो गाने होते हैं जिनको सुन के शायद थोड़ा सा हमारी मेमोरी एकदम हमें फ्लैश बैक में ले जाए। कुछ ऐसे गाने जिनको सुन के सच में यार मजा आ जाता है। और मेरी कोशिश होती है कि एवरी मॉर्निंग जब हमारी किक स्टार्ट हो तो कुछ ऐसे गाने जरूर हो जो आपने बहुत टाइम के बाद सुने हो।
1: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
2: नलायक बेटा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
0: नौ बज के 25 मिनट हो गए, यानी कि 5 हो रहे हैं स्टेशन की घड़ी में, और वक्त बहुत तेजी से निकलता जा रहा है यार, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सहभागिता निभाई है, ढेर सारे संदेश हम तक पहुंचाए हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू वेरी मच। अभी बात कर लेते हैं भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की, इसका रिजल्ट घोषित हुआ है। 76,000 से भी ज्यादा जो स्टूडेंट है वो सफल रहे, मतलब उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। एंड आपको बता दें 76,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं, और जिन्हें अब भर्ती की जो प्रक्रिया उसके नेक्स्ट वाले चरण में जो है उनको अब शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो जिन लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम्स दिए थे तो 2025 में उनका रिजल्ट घोषित हुआ है। 76,000 स्टूडेंट जो है इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं, अपने आप में एक बहुत ही अच्छी ग्रेट जो है जीत, सक्सेस हासिल की है स्टूडेंट ने आज। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और जब ऐसी अच्छी चीजें होती है तो मन अंदर से खुश होता है यार। फटाफट से आपको एक और लेटेस्ट खबर बताते चलें इमीडिएटली, और मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें जो है बतानी बहुत जरूरी होती हैं, और ये चीजें जो है कभी ना कभी हमारी लाइफ में हमें काम आ ही जाती हैं यार, है ना, बहुत जरूरी है। एक और बड़ी अच्छी खबर है जो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली बता देनी चाहिए, एंड वो यू है भैया, मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा देर के बाद बताते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको थोड़ा सा ना वैसे सेव करके रखते हैं पटारे में, थोड़ी देर के बाद बताएंगे कुछ चीजें, मतलब अभी सारी चीजें जान लोगे यार, थोड़ी सी देर के बाद भी तो बताना है ना। कहाँ जा रहे हो आप, आपको कहीं नहीं जाना है। एक काम करते हैं, थोड़े से आपके मैसेज पढ़ते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ यू आनंद, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और सोमवार में जब आप आते हो तो एक नई एनर्जी महसूस होती है, और आपको सुन के बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। थैंक यू सो मच यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो और इतनी प्यारी प्यारी बातें शेयर करते हो, तो जेन्युइनली बता रहा हूँ मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है, फीलिंग सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अभी आपको 6 टिप्स देने वाला हूँ जिनको फॉलो करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा आप हैप्पी बना सकते हो। सबसे पहले छोटी छोटी चीजें अगर आप इनको अपनी लाइफ में चेंज करोगे तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ अच्छा तो डेफिनेटली होगा आपकी लाइफ में। पहली चीज क्या है कि भैया कभी भी किसी से आप अपने मन में कोई ईर्ष्या ना रखें, कोई नफरत ना रखें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। जितना आप सिंपल लाइफ जियोगे, जितना आप दिखावे से दूर रहोगे, उतना ही आप बहुत ही बढ़िया और अंदर से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, शायद वो आपको शब्दों में ना बता पाऊं। तो जितना आप सिंपल रहोगे ना उतना बेस्ट रहेगा यार, क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया की होड़ में ये कर रहा है, मुझे भी करना है, ये दिखा रहे हैं, भाई जरूरी नहीं है कि जो दूसरा कर रहा है हम पे भी अच्छा लगे, है ना। तो अपनी अपनी चीजों को, अपने कंडीशन को, अपने हिसाब से चीजों को रखते हुए आप करें तो आप लाइफ में ज्यादा हैप्पी रहोगे। तीसरी अमेजिंग चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि भैया कभी भी किसी भी चीज की ना फालतू की टेंशन ना लें। हमें कभी कभी क्या होता है ना, हम इंडियंस की आदत है बहुत ज्यादा हम सोचने लगते हैं, इवन मैं खुद भी बहुत ज्यादा कभी कभी सोचने लगता हूं, तो इसे थोड़ा सा अवॉइड करना है। आज में प्रेजेंट में जीना है, आज के दिन को सेलिब्रेट करना है, जो आज की ये प्यारी सी वाइब है इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। और हर एक जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपको उसमें सफलता मिल रही है, उसके लिए खुद को जरूर क्रेडिट देना है, खुद को थैंक यू बोलना है, अपनी पीठ को थपथपाना है, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम खुद से प्यार करना और खुद को क्रेडिट देना भूल जाते हैं, है ना। और अपने हर काम को जो है खुशी के साथ करें, इंजॉय करते हुए करें। जैसे मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत हैप्पीनेस के साथ करता हूँ, और मुझे उस काम को करने में और ज्यादा मजा आता है। जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी अंदर की एनर्जी है, वो डबल हो जाती है, क्योंकि वो जब आप उसको आप हैप्पीनेस के साथ करते हो तो और मजा आता है। और कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, देखिए लाइफ है तो ऑफकोर्स अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, कभी हम लो जाएंगे, कभी डाउन जाएंगे, तो ये चीजें चलती रहेंगी, अप डाउन मतलब होते रहेंगे ना, लाइफ है तो ये चीजें आना मतलब बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, नॉर्मल है। तो इसको लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, खुद से प्यार करना है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी है, सेलिब्रेट करना है, और खुश रहने की देखिए बहाने ना बहुत कम होते हैं लोगों के पास, तो उनको ढूंढना शुरू कीजिए। लाइफ बहुत प्यारी है, इससे प्यार कीजिए। बाकी आप जो है रेडियो से भी प्यार जरूर करें, रेडियो पे आपको अच्छी चीजें जानने को मिलती हैं, अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं, है ना। तो रेडियो भी बहुत ही कमाल की चीज है। बाकी अभी एक बहुत ही कमाल का गाना निकल गया है आपके रेडियो सेट पे, आप ऐसे ही इंजॉय करते रहिए अच्छे अच्छे गाने। कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। जो ये गाड़ी है, जो वैन है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आने वाला गाना जो और भी खूबसूरत है आज की सुबह, इसको सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे ड्रॉप 9837896896 पे। अभी गाना ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: गाना मुझे भी सूट सूट करता है, बहुत बढ़िया है। गुरु रंधावा की आवाज है, ऑफ कोर्स ये गाना आप तक पहुंचेगा। मैं थोड़ा सा बीच में इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं बिकॉज़ अभी एक छोटे से एड ब्रेक का टाइम है, अंदर से आवाज आ रही है, डैड अभी चलाओ ना रेडियो पर एड।
1: हे, यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: मंडी की सुबह है,
2: हर शिक्षा के क्षेत्र में
1: हर हर महादेव आपको बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं कि यार मतलब हम जो चीज सोचते हैं ना वो हो नहीं पाती, और जो नहीं सोचते वो हो जाती है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हो जाती है ना। अभी मेरे पास ढेर सारे मैसेज पहुंच रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश पहुंचाए हैं, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा डेफिनेटली करूंगा। लेकिन अभी काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए एक अच्छा सा गाना और निकाल दिया मैंने, और मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। उस ट्रैक से मैं थोड़ा नीचे आ गया हूँ, कभी कभी होता है ना आपके दिमाग में कुछ होता है, जुबान में कुछ होता है, और वो अक्सर मेरे साथ हो जाता है यार। चलो कोई बात नहीं, अभी बैक टू पॉइंट, मैं आपको दो लेटेस्ट खबरें और बताने वाला हूँ अपने शहर से जुड़ी, बस अभी लौट कर आ रहा हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। कहीं ट्रैफिक है, कहीं पे कोई अपडेट है तो प्लीज आप मुझे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप वो अपडेट मुझे नहीं कर रहे हैं, अपने मुरादाबाद को कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे स्लो ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, कुछ भी आपको दिख रहा है, सो प्लीज अपडेट कीजिए 9837896896 पर।

बात है यार, सच में ये गाने सुन के ना वाइब फुल ऑन वाली हैपनिंग हो जाती है। मतलब ये जो हरियाणवी गाने होते हैं इनकी फील ही अलग होती है, इनकी बात ही अलग होती है। फिलहाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। ढेर सारी अपडेट लगातार आप तक पहुंच रही है और मेरे पास ढेर सारे मैसेज और ढेर सारे क्वेश्चंस आ गए हैं कि भैया हमें एस्ट्रोलॉजर से ये पूछना है, एस्ट्रोलॉजर से वो पूछना है। इतने सारे मैसेज मेरे पास आए हैं, थैंक यू वेरी मच इतने सारे मैसेजेस करने के लिए, इतने सारे व्हाट्सएप करने के लिए। आई एम सो हैप्पी। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद जी। सुबह सुबह आज तो सिर्फ हमें कांवड़िए नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है चारों तरफ। आपको भी आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हर हर महादेव। और काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियां आप लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। हाय, मेरा नाम तनु है। थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लगता है हमारा प्रोग्राम।

0: चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने कहा था हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राखी जी। आपने बहुत सारे मैसेज किए हैं मंडे की सुबह, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। और बिना किसी देरी के चलिए अब हम जुड़ जाते हैं अपने ब्यूटिफुल सेशन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आई मीन जो हमारा चेक योर लक विद डॉक्टर राखी है उसमें हमारे साथ मैम जुड़ चुके हैं और हमने दो लकी कॉलर को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। बहुत देर से आपके मैसेज आ रहे थे मेरे पास, तो बिना किसी देरी के आइए राखी मैम का वेलकम करते हैं अपने शो में। मंडे की सुबह है और उनका करेंगे। जय माता दी, कैसे हैं राखी माँ? हर हर महादेव।
1: हर हर महादेव।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टेशन में। सोमवार की सुबह ढेर सारे मैसेज हमारे पास आपके लिए आ जाते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सावन की शुभकामनाएं।
1: आपको भी हरियाली सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच। और अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव दिन है। वैसे तो जब मंडे आता है तो कहते हैं मंडे हमारी दाल रोटी का दिन होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं पूरा हफ्ता अच्छा हो जाता है, लेकिन जब बात सावन के सोमवार की हो तो और भी खूबसूरत हो जाता है ये मन भी और दिन भी।
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो राखी माँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कॉलर मेरे साथ जुड़ी है, बड़ी देर से आपका वेट कर रही थी। हेलो, अपना नाम बताएं।
2: राधे
1: राधे जय माता दी। नाम बताओ बेटा अपना।
2: अर्चना माँ, अर्चना बोल रहे हैं।
1: अर्चना से मेष राशि बनती है और मेष राशि पे शनि की सारस्वती चल रही है, बताओ क्या सवाल है?
2: माँ मेरी बेटी अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाना चाह रही है, ये तस्वीर नाम है, तो क्या मैं आपकी मर्जी के बिना नहीं भेजू, क्या मैं जा सकती हूँ?
1: देखो बेटा, मैं ना जानती हूँ उसे, ना मुझे उसकी उम्र पता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अपने बच्चों पर विश्वास रखो। अगर तुम नहीं भी चाहोगी तो तुम्हारे वो जाएगी जाएगी। तुम्हें मालूम है कि बच्चों का क्या हाल है आज की तारीख में, तो अपने बच्चे पर विश्वास।
2: मैंने आप बताया कि अगर माँ बोलेंगी तभी आप जाओगी, नहीं चली जाएगी।
1: कितने साल की है तुम्हारी बेटी?
2: जी 18 साल की है, 2007 का जन्म है, 3 दिसंबर 2007।
1: और कहाँ जा रही है घूमने?
2: उदयपुर।
1: हाँ जी,
0: उदयपुर जाना चाहती है, उदयपुर राजस्थान।
1: उदयपुर जाना चाहती है। और उनके साथ कोई बड़ा नहीं जा रहा?
2: नहीं, उनका फ्रेंड नयन है, वो जाएगा, काफी टेंशन में जाती है।
1: बेटा देखो, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि ये लड़की का मामला, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि आप उसे अकेले भेजो। आप जानो किसके साथ जा रही है, क्या है, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है और मंगल ने दंगल मचा रखा है। तो मेरी सलाह यही है कि आप जब तक जाने नहीं वो किनके साथ उठ बैठ रही है, आपने केतन चेतन और सिया वाली कहानी भी देख ली, तो अपनी बच्ची को ऐसे किसी के साथ भेजना नहीं चाहिए। आगे ये आपका खुद का डिसीजन है, क्योंकि इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने बच्चों को किसके साथ छोड़ना है, मैं आपकी बेटी की कुंडली से नहीं बता सकती ना वो किनके साथ जा रही है, क्या माहौल है, लेकिन ये माहौल बच्चों को अकेले छोड़ने का नहीं है। ठीक है बेटा, राधे राधे।
0: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ी लखनऊ से। और इसी बीच मेरे पास एक क्वेश्चन और पहुंचा है राखी माँ यहाँ पर। इनका नाम लता सब्रवाल है, ये मुझे मैसेज कर रही हैं और इन्होंने मेरे को बोला है कि
1: आपकी आवाज नहीं आ रही।
0: एक सेकंड रुकिएगा, मैं वापस से लाइन पे कनेक्ट होता हूँ। हाँ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो।
1: जी,
0: हाँ जी, मेरे पास लता सब्रवाल जी ने मैसेज किया है, सावन का महीना है और क्या हम प्रदोष काल में भी जल चढ़ा सकते हैं, प्लीज ये पूछिएगा राखी माँ से।
1: 100% चढ़ा सकते हैं प्रदोष काल में, तो आज के दिन पर महादेव का रुद्राभिषेक करने का महत्व ही कई गुना है, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच। और ये एक मैसेज आया है कि मेरे बेटे का जन्म 3 मई 2016 को हुआ था, 12:15 पे इन्होंने लिखा है कि उसके बाद जो है वो ठीक से चल नहीं पाता है, चलते चलते गिर जाता है और उसको चोट भी लग जाती है कई बारी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है।
1: देखिए ऐसा है, इसके लिए डॉक्टरी जानकारी की जरूरत है और हो सकता है कि बच्चा अपनी कुंडली के मुताबिक मांगलिक हो या वो मूलों में पैदा हुआ हो, तो उसकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा। इनकी मम्मी से कहिए कि पूरा प्रॉपर तरीके से टाइम लेकर कुंडली दिखाएं तो वो बेहतर होगा, और अगर कोई पैदा होने से पहले मन्नतें मांग रखी थी वो पूरी नहीं करिए तो मन्नतें भी पूरी करें, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं।
0: वेरी नाइस। एक उमेश जी का मेरे पास क्वेश्चन आया है, मैंने MBA किया हुआ है सर, बट मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है जो मैं पाना चाहता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1995।
1: देखिए इनसे सिर्फ मेरी तरफ से एक ही बात कही, अगर ये चाहते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आज का दिन बहुत खास है, इन्हें महादेव की पूजा करनी चाहिए और महादेव के मंदिर में गन्ने का रस और शहद चढ़ाना चाहिए।
0: वेरी नाइस। और एक मेरे पास ये क्वेश्चन आया है, इन्होंने अपना नाम लिखा है, ओके, सपना मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त मुरादाबाद से, और ये लिखती है कि मैं एस्ट्रोलॉजर में थोड़ा सा कम बिलीव करती हूँ, लेकिन जब से मैं आपका शो सुनती हूँ मुझे बिलीव हो रहा है, और मैं स्टोरीज भी देखती हूँ मैम की, तो मुझे क्या एस्ट्रोलॉजी में जो उपाय बताते हैं मुझे करने चाहिए, बट मुझे मन में ये आता कि करूँ ना करूँ।
1: एस्ट्रोलॉजी के कोई भी उपाय तभी करने चाहिए जब एस्ट्रोलॉजी में बिलीव हो। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, और एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, आपको उसको जरूर मानना चाहिए।
0: ऑलराइट, एक लास्ट क्वेश्चन हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम सेशन एंड करेंगे। राखी माँ, ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पर आया है श्वेता जी का, ये मुझे कानपुर से मैसेज करती है, और इन्होंने लिखा है कि आनंद जी क्या आप पूछ सकते हैं राखी जी से कि वो जो पोटली बता रही थी वो कैसे हम ले सकते हैं और उसको कैसे अपने घर मंगवा सकते हैं।
1: पोटली के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पोटली साक्षात महालक्ष्मी का रूप है, जिनका अपना घर नहीं बन रहा, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनको पैसे की दिक्कत है, जिनको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है, और गरीबी ने उनके घर में वास कर रखा है। लेकिन इसकी पहली कंडीशन ये है कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप सोचो पोटली रख लो और बाकी सब काम सब पोटली कर लेगी, मेहनत खूब करो और इस पोटली को अपने घर में रखो। कैसे लेना है तो आनंद लगातार अपने स्टोरी पर ये बात शेयर करते हैं, मेरे नंबर शेयर करते हैं, मेरी पूरी की पूरी टीम के नंबर शेयर करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पोटली का ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन एक बात मुरादाबाद आपको भी बता दूं कि आपके आरजी आनंद आपको नहीं बताएंगे, आरजी आनंद 2 दिन पहले दिल्ली में थे और इन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि मुरादाबाद के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट और इज्जत की बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आनंद आपको, और आप अपनी तारीफ खुद भी किया करो।
0: ये तो मैंने बिल्कुल नहीं बताया था, ये तो एकदम सरप्राइज था, अभी तक मैंने इंस्टाग्राम पे भी नहीं डाला है, आपने तो थैंक यू सो मच, ये आपने बताकर मेरा जो है डबल मेरे को खुश कर दिया।
1: खूब खुश रहो, खूब सुखी रहो और ऐसे अवार्ड मिलते रहे। तुम्हें एक दिन नरेंद्र मोदी जी से अवार्ड मिले, मेरी तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच। जाते जाते बस एक छोटा सा उपाय बता दो जो आज सारे लोग कर सकते हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, बस एक कोई रेमेडी।
1: नमः शिवाय का जाप करना ही है, आज के दिन इस मंत्र को इतना जाप करना कि मंत्र सिद्ध हो जाए, क्योंकि आज जो एनर्जीज पूरी के पूरी यूनिवर्स में है वो आपके किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।
0: क्या बात है, जय माता दी, इसी बात के साथ आपको भी
1: जय माता दी।
0: बाय बाय, थैंक यू राखी माँ, बाय बाय बाय बाय बाय, थैंक यू।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: हाँ मेरी कसम.
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा. 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार. आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद. कॉल 7055011681.
6: कोई मिल गया,
7: कोई मिल गया.
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6. ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने. बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा. मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा. सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.

बात है यार, इस गाने को सुन के मैं बड़ा एनर्जेटिक हो गया हूँ। मतलब इतना मजा आया मुझे ये गाना सुन के, एंड बहुत अच्छा गाना था। और सच बताऊँ, इतने बढ़िया गाने सुन के सबको मजा आ जाता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी शिद्दत के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, फिलहाल ढेर सारे मैसेज अभी भी मेरे पास आ रहे हैं, अभी के लिए मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा क्योंकि अब हमारा स्लॉट बंद हो गया है चेक योर लक। अगर आपको बात करनी है, कोई भी क्वेश्चन करना है, तो आप उन्हें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर वायरा की ऑफिशियल के नाम से, या आप जो है नेक्स्ट मंडे का वेट करें। फिलहाल अभी यहां पर तो सेगमेंट एंड हो गया है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बता रहा था ना कि मुरादाबाद में एक वैन तैयार की गई है, मुरादाबाद पुलिस कावड़ मोबाइल वैन जो है वो रेडी की गई है मुरादाबाद में, और ये वैन बहुत ही स्पेशल है। सुरक्षा आपका संकल्प हमारा, इस उद्देश्य के साथ जो है मुरादाबाद पुलिस की तरफ से, मुरादाबाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से ये बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव जो है तैयार किया गया है। जी हाँ, तो आपको बता दें, मुरादाबाद पुलिस ने तैयार किया है कावड़ मोबाइल वैन, 24 घंटे करेगी ये, आप मतलब जो है उन कावड़ियों की लिया 24/7 अवेलेबल होगी। जी हाँ, आपको बताया, सावन में कावड़ यात्री को सुरक्षित, सुगम और स्पेशल बनाने के लिए, थोड़ा व्यवस्थित बनाने के लिए जो है मुरादाबाद पुलिस ने विशेष कावड़ मोबाइल वैन शुरू की है। भगवान शिव के चित्र और त्रिशूल से सजी ये वैन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। 24/7 कावड़ मार्ग पर जो है एक्टिव रहेगी। वैन में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे जो सुरक्षा के साथ साथ जरूरत पड़ने पर शिव भक्तों को तत्काल सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आप कोई कहीं वैन दिखे तो डेफिनेटली आप इसको, इसका पिक्चर जरूर क्लिक करें, उन लोगों को जरूर बताएं जो सच में, जिनको नहीं पता है। और अगर आपको ये वैन देखना है, इसका पिक्चर देखना है, सो फटाफट से आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। एफ एम मुरादाबाद को ऑफिशियल आईडी इसी नाम से मिलेगा, एफ एम मुरादाबाद 89.6 का, और मेरा आईडी मिलेगा रेडियो वाला आनंद के नाम से। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है मुरादाबाद पुलिस प्रशासन की ओर से, एक बार जोरदार तालियां हैं। वेरी वेरी नाइस इनिशिएटिव, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें बैक टू बैक चल रही हैं। और अभी आगे बढ़ते हैं, कड़क क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ आज की मॉर्निंग। आइडेंटिफाई करना है कौन सा गाना है। व्हाट्सएप करके मुझे आपने बताना है जो अभी म्यूजिक चल रहा है, ये कौन से गाने का है।

अगर आपको समझ में आ गया है कौन सा गाना है आपने पकड़ लिया है, तो बस आपने अपना फोन उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9837896896 पे। इस नंबर पे आप मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप कर देंगे अपने नाम के साथ अपना जवाब। अगर आप जल्दी से व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी चांसेस होंगे आपके, मेरे शो पे विनर बनने के। तो अगर आप मेरे शो में आज की मॉर्निंग विनर बनना चाहते हैं तो ये ब्यूटीफुल मौका आपके पास है आज की मॉर्निंग। अगेन रिपीट कर रहा हूँ आज का मेरा क्वेश्चन, लेडीज एंड जेंटलमैन, मंडे की सुबह जो गाना चल रहा है वो कौन सा है?

बहुत प्यारा ट्रैक है, ऑफ कोर्स आप पहचान जाओगे। पहचान लिया आपने? व्हाट्सएप करो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, उसको सेंड करो मेरे नंबर पे 9837 8986 8986 पे। राइट ही एक अमेजिंग गाना आनंद के साथ सुन रहे हैं आप बिंदास मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
8: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी।
9: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
1: एक लेटेस्ट खबर आपको देनी है, सुबह के 10:02 हो रहे हैं।

मंडे की सुबह है, बेहतरीन गाने आप सुन रहे हैं जो आपको रिचार्ज कर रहे हैं। प्यारा ट्रैक, क्या बात है, नज्म नज्म सा एंजॉय कर लिया अभी आपने, बहुत ही प्यारा ट्रैक। बरेली की बर्फी से गाना सुन रहे थे, आनंद के साथ हैं आप। ये मंडे की सुबह है, आज बहुत ही प्यारी 3 अगस्त की मॉर्निंग, सोमवार है, सावन का पहला, हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी बात के साथ आपके चरणों में बस इतना ही कहना चाहते हैं कि भैया हर हर महादेव के साथ, कि आप जो भी चाह रहे हैं ना वो सब कुछ आपको मिल जाए। हाँ जी, मैं आपको कहना चाह रहा था भैया, देखिए सावन माह का पहला सोमवार है, और इसी बीच मैं आपको बता दूं अपना जो लाइन पार में प्राचीन दुर्गा मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर, वहाँ पर भोलेनाथ का जल अभिषेक जो है बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ वहाँ पे श्रद्धालुओं का जो सैलाब था वो उमड़ पड़ा है। मतलब मैं सुबह मैंने देखा, जब मैं स्टूडियो आया तब मैंने देखा बहुत लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई हैं, और सुबह सवेरे ही जो है कपाट खोल दिए थे वहाँ पर, ताकि श्रद्धालु जो है वो टाइम से पूजा अर्चना अच्छे से कर सके। और बड़ी लंबी लंबी कतारें जो है लगी हुई हैं, और अगर अभी भी आप मंदिर रहे हैं तो भैया आपको कतारें तो आज मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ महादेव बोल बम के जो जयकारे हैं वो लगातार पूरे मंदिर परिसर में जो है गूंज ही रहे हैं, पूरा माहौल शिवमय हो गया है। तो जो भी श्रद्धालु आज व्रत कर रहे हैं उनको बहुत बहुत सावन के इस खूबसूरत सोमवार की बधाइयां। आज गंगा जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, फूल, फल, पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, विधि विधान से लोग जल अभिषेक कर रहे हैं, और मतलब पूरे अच्छे से जो है भगवान शिव को मनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं भी बनाकर आ गया हूं। चलिए, फिलहाल थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था आज की मॉर्निंग, मैंने कहा था ये गाना कौन सा है आइडेंटिफाई करो। ला, ला, ला।

0: Yes, बहुत ही प्यारा गाना था ऐश्वर्या राय बच्चन पर पिक्चराइजेशन था। पूरी स्टोरी अब मैं आपको बताता हूँ। शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय बच्चन पर पिक्चराइजेशन गाना बहुत ही प्यारा था। ढेर सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। इतने प्यारे मैसेज, थैंक यू सो मच। कोई एक ही होता है जो हमारे शो का लकी विनर बनता है। बनारस से मोहसिन अंसारी साहब ने दिया है सबसे पहले राइट आंसर, कंग्रेचुलेशन। हमको हमी से चुरा लो, दिस इज द राइट आंसर। इस गाने का जो मेन लाइन है वो यही है। का पार्ट मैंने प्ले किया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे इस गाने को लेकर, बट एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर। हमको हमी से चुरा लो। एंड साथ ही साथ मेरे पास एक वॉइस नोट आया हमारी प्यारी लिसनर अलका वर्मा जी का, तो इमीडिएटली जरा इनको भी सुन लेते हैं क्या कह रही है।
1: राधे राधे,
0: राधे राधे राधे।
1: और आप कैसे हो?
0: मैं बहुत बढ़िया।
1: सावन की सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: आपको
1: सभी एफएम सुनने वालों को, और मेरे तरफ से आपको कांग्रेचुलेट जो भी अवार्ड आपको दिल्ली में मिला है।
0: क्या बात है।
1: और आगे खूब तरक्की करिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: और जो म्यूजिक आपने चलाया है,
0: हाँ जी,
1: वो गाना है हमको हमीर से चुरा लो, मोहब्बती मूवी की गाना है।
0: अरे वाह।
1: और आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चलता है, इससे हमें तरह तरह की जानकारी मिल जाती है कि हमारे मुरादाबाद में क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा है हमारे देश में और विदेश में।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
1: गुड जॉब।
0: थैंक यू सो मच अलका मैम, थैंक यू सो मच। आप इतना अप्रिशिएट करते हैं ना, ये आप लोगों की वजह से ही हमें इतना कॉन्फिडेंस मिल पाता है। थैंक यू सो मच, आपके लिए जोरदार तालियां। एक बारी मैं यहाँ पे अगेन प्ले करूंगा। इतनी प्यारी बातें करके बच्चे को रुला ही दोगे आप लोग? हाँ, एक तो वैसे कुछ खा पी के नहीं आते, ऊपर से इतनी प्यारी बातें करते हो, भूख डबल हो जाती है मेरी यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आनंद आपको अवार्ड मिला है, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की ब्लेसिंग से अच्छा काम करते जाएंगे, और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लाइफ में और ज़्यादा अचीव करनी। मैं तो आपको भी कहता हूँ ना भाई, कर दिखाओ कुछ ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लाइफ एक बार मिली है तो उसको अच्छे से इंजॉय करो। देखिए नेगेटिविटी तो हर कोई करता है ना, आप पॉजिटिव करो, आप डिफरेंट करो, जो आप करोगे ना उसकी बात ही अलग होगी, और जो चीज़ आप कर सकते हो ना वो कोई और कर ही नहीं सकता है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हर इंसान के अंदर एक खास स्पेशलिटी होती है, हर इंसान की अपनी एक यूएसपी होती है, शायद वो यूएसपी आपके अंदर हो, कुछ ना कुछ डिफरेंट तो आप में भी होगा, राइट? तो बस अच्छी चीजें करते रहो यार, अच्छे कर्म करते रहो, लाइफ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगी, लाइफ आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देगी, मतलब आप अपना सही दिशा में अपना 100% देते जाओ। ये नहीं करना है आपने। रेस 2 का गाना, इसी के साथ मैं भी आपको छोड़ के जाऊंगा, बेनी दयाल की आवाज।
2: मेरी ना एक माता,
0: मैं इस गाने पास डांस ही नहीं कर पाया। हाय हाय, चलो फटाफट आपके मैसेज पढ़ता हूँ इमीडिएटली।
2: मुझे तो
0: ये मैसेज मेरे पास पहुंचा है, जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्त, अगर रोते रोते हंसी आ जाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अरे वाह क्या बात है। हमको हमी से चुरा लो। गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, हाउ यू? मैं बहुत अच्छा हूँ यार, आई होप आप भी अच्छे होंगे। मेरा नाम तरुण है। हाय तरुण, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं आपके? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। हाय लक्ष्मी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं आज की सुबह। प्रकाश नगर से मेरे पास मनमोहन जी जुड़ चुके थे। गौरव टीलर जी नवीन नगर से जुड़े हैं, लिखते हैं आनंद भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, जानकारियाँ बहुत अच्छी लेकर आते हो, सावन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्पण जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दर्पण जी लिखते हैं आनंद जी कंग्रेचुलेशन एंड की प्रोसेसिंग, थैंक यू सो मच, सही जवाब भी दिया है, और कुछ वो टाइप कर रहे हैं, जब तक वो टाइप कर रहे हैं मैं किसी और का मैसेज को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज साक्षी, आनंद कंग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड मिला है, आपने डाला नहीं इंस्टाग्राम पे, मैं कब से स्टोरी देख रही हूँ, आप कहीं तो गए थे बट आपका ड्रेसिंग बहुत अच्छा था। ओ थैंक यू सो मच यार। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? सपना शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से जुड़ी है, लिखती है मन में आने वाले विचार की आयु मात्र एक क्षण की होती है, परंतु उससे होने वाले प्रभाव अनंत समय तक वो अनुभव कराते हैं। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, दैट्स राइट। हेलो हाय नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? कंग्रेचुलेशन आनंद जी, गुड मॉर्निंग। ईदगाह से शफी अहमद अंसारी, रईस दुल अंसारी लिखते हैं गुड मॉर्निंग, शो बहुत ही अच्छा लगता है, गाने अमेजिंग होते हैं। हर हर महादेव कैसे हैं? बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं। राजा कश्यप गली चौराहा से जुड़ चुके हैं। बबली अंजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी भाभी एंड संतोष भाभी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ शो में। रिहाना जुड़ी हैं, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। टाइम बहुत कम है यार, 10:12 हो रहे हैं, आई होप तुम समझने की कोशिश कर रहे हो ना मुझे, तो अभी मैं यहाँ से लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त, और कुछ भी अगर ऐसा रह गया हो जो शायद मैं आप तक ना बता पाया हूँ जल्दी जल्दी तो उसके लिए सॉरी। एंड बाकी बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज आए, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ यू, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आपका शो बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन इट इज़ रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। इस टाइम पे मैं दिल्ली रोड पे निकल रहा हूँ। कांट रोड की तरफ से मुझे मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी वाइब है, चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के भक्त नजर आ रहे हैं। थैंक यू जी। एक मैसेज मेरे पास आया है प्रिया सक्सेना का, लिखती है, आनंद जी ऑल द वे बेस्ट, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग पर्सन, अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम। दर्पण भैया ने लिखा है ऑल द वे बेस्ट, विश यू वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज आ गया, हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही कामयाब हो। इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपकी मिल गई है, जोरदार तालियां, एंड आप सभी को भी वंस अगेन ऑल द वे बेस्ट। बस अच्छा काम करते रहो, लाइफ में सब अच्छा होगा। आप हमारी फैमिली हो, हम आपकी फैमिली का हिस्सा है, तो एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, लाइफ में सब अच्छा होगा। चलो बाय, कल मिलते हैं, टिल देन टुमारो मॉर्निंग, वंस अगेन हैप्पी मंडे, और ये सावन का सोमवार है तो अच्छे से सेलिब्रेट करो और खुश रहो, और को भी भैया खुश रखने की कोशिश करो, जितना हो सकता है अपनी तरफ से अच्छा दो, राइट। चलो मैं जाता हूँ, कल मिलते हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अगर आपने व्रत रखा है तो ऑल द वे बेस्ट आपके फास्ट के लिए, बाकी आप जहाँ भी जा रहे हैं पहुँच जाइए ऐसे ही मस्त वाले गानों के साथ। ट्यून इन रही एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आरजे आनंद कहता है बाय बाय, साइनिंग ऑफ।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों देखिए, सावन का पहला सोमवार है, मंडे है और तारीख है 3 अक्टूबर की। जी हाँ, 3 अगस्त है, अक्टूबर में पहुंच गए हम, अभी तो अगस्त ही चल रहा है। और सुबह सुबह इतने, मतलब जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा काफ़ी श्रद्धालु मंदिर अभी जा रहे थे। और जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में मंदिर पहुँचे 6 बजे के समथिंग, तो तभी मंदिर में इतने ज़्यादा श्रद्धालु थे, इतना रश था भक्तों का, देखकर चारों तरफ वातावरण बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। हाथों में जल का लोटा, बेलपत्र और मन में भोलेनाथ के प्रति आस्था के लिए श्रद्धालु मंदिरों की ओर आगे बढ़ रहे थे। और कहते हैं ना दोस्तों कि सच्ची श्रद्धा से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो आज भोलेनाथ जी के चरणों में अपनी एक छोटी सी प्रार्थना ज़रूर कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और हर उस इंसान के लिए जिसे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और आज का पॉजिटिव थॉट कि मन में विश्वास हो, माथे पर भोलेनाथ का नाम हो। जी हाँ दोस्तों, मन में विश्वास हो, माथे पर भोलेनाथ का नाम हो, मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं, मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। तो करते हैं अपने शो की शुरुआत। अब इतना खूबसूरत वातावरण है, इतना खूबसूरत दिन है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। हाँ श्रोताओं, चलिए सुनते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी केदारनाथ से। और इसी से करते हैं अपने शो की शुरुआत। आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा दीजिएगा, नंबर हमारा है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज हमारी जो फीमेल्स हैं बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ एंड रेड कलर की साड़ी, माथे पे बिंदी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको देखकर। सर संवर कर शिव जी को मनाने के लिए आई हैं, तो चलिए हम भी शिव जी का ध्यान कर लेते हैं।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। और अभी आपने पहला सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी केदारनाथ से, अमित त्रिवेदी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ पर बहुत सारे आपके मैसेज आ गए हैं तो मैं जल्दी से इनको शामिल कर लेती हूँ क्योंकि सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और एवरीवन, वक्त हुआ है अभी 10:33। बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आप तक शेयर करनी है, आप तक पहुँचानी है। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है, ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान जी। एंड कहते हैं गुड मॉर्निंग आरजी जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है दुर्गेश सैनी जी का, पीतल नगरी से ये अपना मैसेज पहुँचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से। कहते हैं खुशी जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं, इनका नाम हमें शो कर गया है, ये गौरव टेलर जी का मैसेज हमारे पास आया नवीन नगर मुरादाबाद से। कहते हैं आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, आपको भी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम हमारी ओर से। और सर ने पहले से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है तो इस गाने को भी सुनवाएंगे, लेकिन श्रोताओं आप भी मुझे अपने मैसेज पहुँचाएगा बिना किसी देरी के, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और बाहर का मौसम बहुत सुहाना है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी उमस भी है मौसम में, लेकिन धूप नहीं है। तो इस सावन के पावन महीने में चारों तरफ हरियाली है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, तो ये गाना तो बनता है ना, फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुमसे।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। एवरीवन, वक्त मैं आपको बता देती हूँ, समय हुआ है अभी 10:46 स्टूडियो की घड़ी में। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज़। और इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी गौरव जी ने नवीनगर मुरादाबाद से। एंड दोस्तों, हम आपसे एक सवाल आज की सुबह मालूम करना चाहते हैं। और दोस्तों ज़रा बताइए तो सही, आप अपने शहर मुरादाबाद को अच्छी तरह से जानते ही होंगे। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुरादाबाद में भगवान शिव की एक बहुत ही भव्य और विशाल प्रतिमा है, आपको मुझे बताना है कि वो मुरादाबाद में किस रोड पर है। जी हाँ, हम भी तो देखें हमारे कितने श्रोता इसका सही जवाब जानते हैं। बताइएगा दोस्तों, मुरादाबाद में भगवान शिव की एक बहुत ही भव्य और विशाल प्रतिमा है, तो आप मुझे बताइए कि वो किस रोड पर है। हिंट मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन आपको अभी मुझे बताना है अगर आप उस रोड पर हैं और उस प्रतिमा के अगर आसपास हैं तो एक फोटो भी क्लिक करके हमें सेंड कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। चलिए अगेन मैं बता देती हूँ आपको दोस्तों, अपने शहर मुरादाबाद में ना भगवान शिव की बहुत ही भव्य और विशाल प्रतिमा है, आप मुझे बताइए कि वो किस रोड पर है। जल्दी से अपने जवाब पहुंचाइए, नंबर है 9837896896। और तब तक यहाँ पर जो मैसेज आए हैं मैं उनको जल्दी से रीड कर लेती हूँ। एंड हमारे पास एक वॉइस नोट भी आया है तो उसको भी हम क्विकली प्ले करते हैं एंड सुनते हैं मैम ने आज की सुबह क्या पहुँचाया है।
1: राधे राधे, खुशी खुशी सावन की पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, FM सभी सुनने वाले श्रोताओं को। और मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हो? प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है आपका। खुशी, याराना मूवी से ये वाला सॉन्ग सुनवा देना, भोले ओ भोले, क्योंकि भोले का दिन आजकल चल रहा है तो ये गाना तो बनता ही है। हर हर महादेव।
0: आपको भी सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं मैम, और सुनने वाले तमाम श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना प्यारा सा वॉइस नोट पहुंचाया है। दोस्तों आप भी अपनी आवाज़, इतनी प्यारी सी आपकी वॉइस है मधुर मधुर, तो इस प्यारी सी वॉइस में आप भी अपना वॉइस नोट हमें पहुँचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है, ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से। कहते हैं हर हर महादेव। खुशी जी कैसी हैं आप? आपको महादेव जी आपको हमेशा खुश रखें एंड सावन के पहले सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सिम टू यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमने आपसे जानना चाहा है कि आप मुझे बताइए मुरादाबाद में भगवान शिव की विशाल भव्य प्रतिमा किस रोड पर है, आपको बताना है। अगर आप उसके आसपास हैं तो आप एक फ़ोटो भी क्लिक कर आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम भी तो जानना चाहते हैं आज की सुबह हमारे श्रोता कहाँ कहाँ घूम रहे हैं मॉर्निंग में, अच्छा लगता है। एंड ये भी बताइएगा एवरीवन कि अभी मुरादाबाद में कावड़ती चल रहे हैं और अभी बहुत रोड पर ऐसा होगा कि ट्रैफिक भी है, तो आप मुझे ट्रैफिक अपडेट भी दे सकते हैं ताकि और श्रोताओं को भी आसानी हो जाए। एक्चुअली अगर वो उस रूट से जा रहे हो तो उनको पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पर ट्रैफिक है, क्योंकि आपका एक मैसेज न जाने कितनों की हेल्प कर सकता है। तो फटाफट से अपना मैसेज हमें पहुँचा दीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे बातचीत। आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइए जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे हैं।

0: 9 questions
1: जरा कोई मिल गया
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। और दोस्तों, अभी आपने ट्रैक सुना आया सावन झूम के। और जब सावन आता है ना, तो मतलब एक अलग ही वाइब होती है, पॉजिटिविटी इतनी आती है। और चारों तरफ का वातावरण, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन हरियाली देखकर कितना खूबसूरत लगता है ना। और दोस्तों, वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 11:01। और अब वक्त हो गया है एक सुपर अपडेट का। जी हाँ दोस्तों, आपको एक अपडेट भी देनी है। और अब एक ऐसी खास खबर जो वाकई हैरान करने वाली है। और खास बात यह है कि ये कहानी बिहार के आरा से सामने आई है। आरा के महादेवा रोड वार्ड नंबर 21 के रहने वाले रवि कुमार जी ने अपनी खास प्रतिभा से एक नया कीर्तिमान बनाया है। रवि कुमार जी ने अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को महज 9 सेकंड 15 सेंटीसेकंड में लिखकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। रिपोर्ट के मुताबिक रवि कुमार जी अभी पेशे से शिक्षक हैं और फिलहाल अभी वो स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड 26 मई 2026 को दर्ज किया। इसके बाद विभिन्न स्तरों पर जांच और प्रस्तुति की गई एंड साक्ष्यों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। और उनका ये रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सोचिए दोस्तों, अंग्रेजी के पूरे 26 अक्षर और वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड में। वाकई हुनर जब मेहनत और अभ्यास से जुड़ता है ना, तो कमाल कर दिखाता है। रवि कुमार जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयां। और कहते हैं ना दोस्तों कि रफ्तार वही मायने रखती है जिसके पीछे हुनर और मेहनत दोनों ही हो। तो हमारी तरफ से रवि कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम क्लैपिंग करना चाहेंगे उनके लिए। कमाल कर दिया यार। और आज की सुबह हमने बहुत सिंपल सा आपसे सवाल पूछा है, दोस्तों जरा बताइएगा, आप अपने मुरादाबाद शहर को अच्छी तरह से जानते ही होंगे, है ना। सिंपल सी बात है, मुरादाबाद में रहते हैं तो मुरादाबाद के बारे में तो जानते ही होंगे। एंड आप मुझे बताएं कि मुरादाबाद में भगवान शिव की एक बहुत ही भव्य और विशाल प्रतिमा आपने किस रोड पर देखी है, कार्ट रोड पर या फिर दिल्ली रोड पर। आपको सही जवाब पहुंचाना है। और अगर आप उनके आसपास हैं, आप वहीं पर हैं, तो आप एक फोटो भी क्लिक कर मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और कुछ मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास सही जवाब आ रहे हैं बैक टू बैक, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे और श्रोता भी, लिसनर्स जो सुन रहे हैं इस समय, वो भी पार्टिसिपेट करें। और अभी हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं। ये हमें मैसेज पहुंचाती है रानी नांगल से रिहाना जी। कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसी हैं आप। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, हम बहुत अच्छे हैं। और ये ट्रैक सुनना चाहती हैं फ्रॉम द मूवी दिल का रिश्ता। बिल्कुल प्रयास करेंगे हम सुनवाने का, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में रईस दुल्ला अंसारी जी हैं। कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू। आई एम फाइन सर, आप बताइएगा आपके हाल चाल कैसे हैं। और आपने गाना एंजॉय कर ही लिया होगा सर, आया सावन झूम की। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका मॉर्निंग शो अच्छा लग रहा है, मॉर्निंग मसाला। और गाने भी काफ़ी अच्छे प्ले कर रहे हैं आप। और सर ने गाने की रिक्वेस्ट भेजी है लाल दुपट्टा मलमल का, सुनवाएंगे बिल्कुल। एंड उसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है विशाल जी का, भगवान शिव की वो प्रतिमा कार्ट रोड पर स्थित है। सही जवाब के साथ जुड़ चुके हैं विशाल सिंह पागवाड़ा से।
उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है हर हर महादेव कार रोड पर है। विनायक कोटीवाल जी का मैसेज आया है सिविल लाइन्स मुरादाबाद से। बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं सर आपको, आप सही जवाब के साथ जुड़े हैं। हम मैंने कहा था ना दोस्तों कि हमारे जो लिस्टनर है ना बहुत एक्टिव हैं और अच्छा लगता है जब आप ऐसे फटाक से अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। थैंक यू सो मच, आपने सही जवाब पहुंचाया एंड बहुत बहुत बधाइयां कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए दोस्तों एक शानदार से गाना सुनते हैं दर्शन रावल की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में, प्यारा सा ट्रैक। बाहर का मौसम कैसा है ये भी मुझे बताइएगा अभी।

0: तुम फिर यहाँ क्यों आए हो?
1: अपने गुनाह का कफारा अदा करने।
0: चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती।
1: आइंदा मैं खुद अपनी सूरत छुपाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त खुदा के लिए मेरे साथ चली चलो। मैंने तुम्हें इस्फहान पहुंचाने का इंतजाम किया।

रहते रहें, अपने अपनों के साथ रहें और जो भी लाइफ में वो चाहते हैं सब उनको मिल जाए, लेकिन उसके लिए उनको मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, ऊपर वाले भी तभी साथ देते हैं जब हम अपना साथ स्वयं देते हैं। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो मेहनत करते रहिए कंटिन्यू, एंड ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, सब कुछ जो आप चाहते हैं फिर वैसा ही होगा। और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है जिला मुरादाबाद से। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं, इनका नाम रोहन हमें गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी रोहन। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं जय जय शिव शंकर, पूरा प्रयास करेंगे सर हम इस ट्रैक को प्ले करने की। एंड धन्यवाद आपने अपने मैसेज पहुंचाया। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है गुड मॉर्निंग आरजी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ये अपना मैसेज हमें पहुंचाते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पुरवली सी। धन्यवाद आपने अपना मैसेज हमें पहुंचाया है सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं बबली अनजान जी का, गीता कश्यप जी का, लक्ष्मी कश्यप जी का, संतोष कश्यप जी का। कहती हैं खुशी मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छी हूँ। और इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है रोटी कपड़ा और मकान से। हाय हाय ये मजबूरी। ओके, वैसे आपके पास कोई मजबूरी नहीं है तो आप मुझे मैसेज पहुंचा सकते हैं, ठीक है? तो फटाफट से मैसेज पहुंचाइए, कोई भी कंजूसी मत कीजिए। और हाँ, अपना ख्याल भी अच्छे से रखिएगा। बहुत सारे श्रोताओं का तो आज उपवास भी होगा ना, क्योंकि सावन का पहला मंडे है।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है RJ खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद RJ खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर शो में मॉर्निंग मसाला, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। देखिए श्रोताओं, अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक, और वक्त मैं आपको बता देती हूँ 11:30 हो गए हैं, एंड मुरादाबाद के कांवड़ यात्रियों के लिए खास खबर सामने आई है। दोस्तों, सावन में कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए मुरादाबाद पुलिस ने कांवड़ मोबाइल बैन शुरू की है। भगवान मोबाइल टू लाइक अभी बैन उन्होंने स्टार्ट किए शुरू किए भगवान शिव और त्रिशूल से सजी ये वैन पूरी सावन 24/7 कांवड़ मार्ग पर गश्त करेगी एंड रहेगी। वैन में तैनात पुलिसकर्मी सुरक्षा पर नजर रखने के लिए साथ साथ जरूरत पड़ने पर कांवड़ियों को तत्काल मदद भी उपलब्ध कराएंगी। तो भोले की भक्ति में जो भक्त इस समय झूम रहे हैं, जो अभी कांवड़ लेकर जा रहे हैं, तो सभी को हम हर हर महादेव कहना चाहेंगे। और दोस्तों कहते हैं ना, तो भोले के जो भक्त होते हैं, आप श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी यात्रा जारी रखिए और सुरक्षा नियमों का पालन ज़रूर कीजिए। आपकी सुरक्षा के लिए मुरादाबाद पुलिस हमेशा तैयार है। और एवरीवन, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं आप सभी श्रोताओं के। मेरा दिल खुश हो जाता है जब आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज मैं देखती हूँ यहाँ पर। और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं मंझोली से, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बस अपना गुड मॉर्निंग हमें विश किया है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप जब भी मैसेज पहुँचाएं ना, तो प्लीज़ अपना नाम भी ज़रूर मेंशन करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा जब आपके साथ आपके नाम के साथ आपका मैसेज हम पढ़ेंगे।

0: एंड उसके अलावा हमारे पास अगला मैसेज यहाँ पर आया है। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं उमेश कुमार प्रजापति जी लोधीपुर मुरादाबाद से। कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, हर हर महादेव, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है एंड ये वॉइस नोट आया है, बड़ा प्यारा सा है, तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं प्यारी सी हमारी लिसनर की आवाज़ क्या पहुँचाती है अपनी स्वीट सी वॉइस में।
1: हाय मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई होप आप बहुत अच्छी होंगी और हम दुआ करते हैं आप हमेशा अच्छी रहें। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे मैम और सावन के पहले सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम सुहानी है, मैं सिपरी जिला मुरादाबाद से हूँ। मैम, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, इसलिए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे।

0: जब हम जवान होंगे। थैंक यू सो मच मैम।
1: मोस्ट वेलकम डियर, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है और आपने गाना भी बहुत ही प्यारा गुनगुनाया है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है एंड कुछ थॉट हैं जो आप तमाम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है। आप अपना मैसेज मुझे पहुंचाइएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड जो अभी प्यारी सी हमारी लिस्टर गुनगुना रही थी।

0: don't hide your headache.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

और दोस्तों अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना एंड इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी ललिता कश्यप जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से। थैंक यू पहुंचाती हैं पिंक दिल के साथ। मोस्ट वेलकम मैम, आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करना खुशी का काम है ना, और अच्छा लगता है जब आप सब मुस्कुराते हैं। कहती हैं आज सावन का पहला सोमवार है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। सेम टू यू। एंड उसके अलावा हमारी पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है, ये हमें हर हर महादेव पहुँचाती हैं कोमल शर्मा जी। आपको भी हर हर महादेव, सावन की सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं मैम। और आप बहुत ज्यादा यू नो ब्यूटीफुल लग रहे हैं, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लगाकर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया है आरजे खुशी जी को, नमस्कार। आपको भी नमस्कार। और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, लदावली जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है पाकिस्तान कराची से, ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं राशिद नाथ जी। गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज मुझे मिला है यहाँ पर, मैम गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा लगता है जब इतने श्रोता हमें मैसेज करते हैं आज की मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर सनी जी का आया है और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं हम। और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं नईमूल अकरम जी सिरसवा दोराहा से।

और मेरी हम सभी भोले भक्तों से एक छोटी सी अपील है। कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, इसीलिए अपनी भक्ति के साथ साथ अपने सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। यात्रा के दौरान भीड़ में धक्का मुक्की से बचें, सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें और निर्धारित कांवड़ मार्ग का ही हिस्सा इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा थकान हो तो थोड़ा आराम ज़रूर करें, पानी पीते रहें और अपने साथ साथ ज़रूरी जो सामान है वो भी आप रख सकते हैं अपने पास। और उसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे अभी आप तक पहुंचानी है, लेकिन श्रोताओं उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक और यहाँ पर और भी जो मैसेज आए हैं मैं उनको भी आकर शामिल करूंगी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आप कहीं मचाइए यूं ही मुस्कुराइए। मिलती हूँ मैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक लता मंगेशकर जी और साथ में मुकेश कुमार जी की खूबसूरत सी आवाज़, सावन का पावन महीना। और जब हम सावन के गीत सुनते हैं तो अलग ही माहौल हो जाते हैं ना एवरीवन। तो दोस्तों, अब मुझे और बात करने की मेरे पास अनुमति नहीं है क्योंकि जाने का टाइम हो गया है। लेकिन जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दिन चाहे कितना भी व्यस्त, आप दिन में कितने भी क्यों ना व्यस्त हों, लेकिन अपनों के लिए ज़रूर वक्त निकालिए, थोड़ा ही सही लेकिन ज़रूर निकालिए। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए और दिल में उम्मीद रखिए। और हाँ, हर दिन को खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें और यूं ही अपना प्यार एफएम मुरादाबाद के साथ बनाए रखिएगा।

तो एवरीवन, आई होप आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज हमें पहुंचाए हैं आज की मॉर्निंग. एंड उसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज आया है, हर हर महादेव. कैसी हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर. तो चलिए दोस्तों, अब मेरी जाने का समय हो गया है, लेकिन मैं मिलूंगी आपको सी यू सून 3 से 5. तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल. एंड वंस अगेन, सावन के सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से

0: रोक दिया।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम है कालाजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहती हूँ। टीकन देवी जी, आप तो गांव-गांव में जाती हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई मामला देखा है?
1: अरे आरजे खुशी, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था। लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ। उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई शाये है। महीने तक इलाज नहीं हुआ। जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ, जान तो बच गई, लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, कालाजार की बीमारी। आज भी वो घर से कम निकलती हैं। लोग देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजे बहन, अगर समय पर इलाज हो जाता तो ये सब नहीं होता।
0: ये तो बहुत दर्दनाक है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कालाजार क्या है, कैसा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। टीकन देवी जी, सबसे पहले ये बताइए ये कालाजार होता क्या है?
1: देखिए आरजे खुशी, कालाजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसे हम आम भाषा में भले ही कालाजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीसमेनियासिस है। यह बीमारी एक बहुत ही छोटे से कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या सेडफ्लाइड कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात यह है कि यह ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब यह रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, पीलिया यानी तिल्ली, और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में यह बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन देवी जी, इसके लक्षण कैसे पहचाने, लोगों को कैसे पता चले कि ये कालाजार हो सकता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे खुशी। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वह पहले जैसा काम नहीं कर पाता। धीरे धीरे पेट भी फूलने लग जाता है, क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है और व्यक्ति बहुत कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
0: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अंदर से बहुत खतरनाक बीमारी होती है।
1: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में यह जानलेवा साबित हो जाती है। इसीलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: यह बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
1: भारत में यह बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
0: इतने सारे लोग जोखिम में हैं, ये तो सच में चिंता की बात है।
1: हाँ आरजे खुशी, और खास बात यह है कि यह बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहां साफ सफाई की कमी होती है और जहां पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहां यह रेत मक्खी

0: पैसों की वजह से इलाज से वंचित ना रहे।
1: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है।
0: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्द असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
1: टीकन देवी जी, आपने अभी बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत समय लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
0: नहीं नहीं आरजे खुशी, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही है। पहले के समय में जरूर जांच में समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी है कि गांव के पास ही सब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्द काला अजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसमे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा खून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
1: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो बहुत ही आसान हो गया है।
0: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में इलाज करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध है।
1: लेकिन टीकन देवी जी, क्या ये टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद होता है?
0: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देता है और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को और पुष्टि की जरूरत लगे तो वे आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्द शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
1: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रहे हो, तो बिना सोचे समझे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाए और टेस्ट कराए। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
1: और क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वे लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वे आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी है।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों एक ही गांव के पास उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
1: सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या कर रही है?
0: सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है, एक बड़ा कार्यक्रम चला रहा है जिनका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और यह NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्षण यह है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि बहुत ही उपलब्धि है।
1: ये तो सच में गर्व की बात है।
0: हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाए, अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है, करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिसमें रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।

0: आम लोग खुद क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए?
1: बहुत आसान उपाय है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि मक्खियाँ इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचे। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसे बीमारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: टीकन देवी जी, एक बात बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलतफहमियां रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर उसके बारे में सुनी सुनाई बातों से जताते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे खुशी, और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। हमारे गाँव में आज भी बहुत लोग काला आजार को भूत प्रेत साया या किसी की बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूक या ओझ गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
0: हाँ, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
1: बिल्कुल, और एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि यह बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग मरीज को तो अलग कमरे में रखने लगते हैं या उसे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसीलिए मरीज से डरे या उसे अलग कमरे की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
0: और क्या क्या गलत धारणाएं होती हैं लोगों में?
1: कई लोग यह भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो या तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है या और जटिल हो सकती है। और एक बात, और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियाँ पनप रही है तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
0: तो इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से कैसे बाहर आए?
1: समाधान बहुत साफ है आरजे खुशी। सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाइए, किसी भी तरह का झाड़ फूक या देरी से बचे। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितनी भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई रखे, दीवारों की दरारें भरे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करे, और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दे, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दे।
0: बहुत ही जरूरी बातें आपने बताई, लेकिन टीकन देवी जी, आपने शुरुआत में एक दुखदायी कहानी सुनाई थी, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी है?
1: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के गांव में मेरी एक सहेली है रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे जिससे गांव पूरा डरा हुआ था, लेकिन रीना ने डरने के बाद समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक कराया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू किया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया। एक दिन उसे भी हल्का बुखार आया। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई तो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने वाली नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं बल्कि समय पर कदम उठाना है।
0: सच में ये तो असली बदलाव है जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
1: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान ले और इलाज करा ले तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
0: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम, समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचा सकता है।
1: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत फहमियों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
0: तो दोस्तों, आज से ही एक कदम बढ़ाइए, अपने और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए।
1: जागरूक बने,
0: सुरक्षित रहें और कालाजार को मिलकर हराएं। तो इसी के साथ आज का शो समाप्त होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज ये शपथ कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार श्रोताओं।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रीना। सेहत से लाभ कई के श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं। हम आज बहुत खास प्रोग्राम को लेकर आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं? इस सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में सेहत की बात पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
1: धन्यवाद अर्जुनीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब आपके साथ मिलकर समझना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
1: देखिए अर्जुनीना, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। अब आप सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और ये समझें कि हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
0: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
1: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल की दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ स्ट्रेंथ विद साइंस और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
0: भाभी, ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अरे, इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्ट्रेंथ विद साइंस तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लेते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है ये घरेलू नुस्खा अपना लो, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
0: अरे भाभी, स्मार्ट स्वास्थ्य दिल्ली के 100 झंडे से चलाए जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाए और लोगों की जेबों पर से स्वास्थ्य का खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरत के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी, आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
1: ये बहुत ही जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास का वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा हो, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा, इसीलिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा।
0: भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आज जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं। कई बार छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं गए। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसे वैक्सीन से नुकसान होता है या कुछ बीमारियों का इलाज घर में ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
0: भाभी, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जांच, इलाज और बाद की देखभाल, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोग उन सेवाओं पर भरोसा करें।
0: आज के समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कौन कौन सी है?
1: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम सही खानपान और व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस बात पर ध्यान नहीं करते थे, लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
0: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जब मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है, तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
1: भारत ने बहुत प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीवी जैसी बीमारियां भारत में बहुत ज्यादा हैं। और जीवन शैली की बीमारियां तो 60% मौत का कारण बन रही हैं। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सुधार हुआ है, लेकिन हर राज्य में समान नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।
0: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
1: बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गाँव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहाँ मुफ्त जाँच होती है, टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, रक्त शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इन सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
0: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या भूमिका होती है?
1: सबसे अहम भूमिका होती है। हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, जहां HO होते हैं, जहां रोज मर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त जाता है, बहुत सी दवाइयाँ मिल जाती हैं और बहुत सी जांच हो जाती हैं। इसके बाद प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहाँ अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ और जांच की सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा होगा तभी वो समय पर इलाज करा पाएंगे।
0: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे सच पाए?
1: RJ रीना, ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होती है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र। यही वो जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहां ANM, आशा कार्यकर्ता और कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयां देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर करते हैं। इसके बाद आती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां थोड़ी ज्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहां भीड़ बढ़ेगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की जरूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएंगी।
0: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की?
1: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगहों पर अभी भी डॉक्टर की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती, यहाँ जांच की सुविधाएं सीमित नहीं होती, लेकिन सरकार लगातार इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों के मन में पहले से ही एक धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता और वे बिना कोशिश किए ही वहाँ जाना बंद कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन भरोसा करने की जरूरत है।
2: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुविधा कर रही है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
1: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, के तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है, वो भी बड़े अस्पताल में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है जिसे दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहाँ और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहाँ सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जांच और सलाहें भी मिलती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो इस आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
2: आजकल डिजिटल चीजों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
1: हाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब आभा ID बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इससे फायदे ये होते हैं कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराने इलाज और रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा UWIN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिससे टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोगों को समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगना है।
2: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारी बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
1: हाँ, और ये बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार ये अफवाह फैल जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे जमाने में तो टीका नहीं लगाया फिर भी हम ठीक हैं। इसलिए आज के बच्चों को भी जरूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोस की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
2: तो इन बातों का सच क्या है?
1: सच ये है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द हो सकता है लेकिन वह सामान्य है और ये दिखाता है कि शरीर अंदर मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है तो उस समय बहुत से लोग बीमारियों से मर भी जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था। हाँ, या हमें सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें ये ताकत दी है कि हम बीमारियों से पहले ही बचाव कर सकें।
2: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सके?
1: सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच न माने, पहले पूछें, समझें और फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति ही समझदारी पूरे गांव को सही दिशा दे सकती है।
2: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है अपने लिए, अपनों के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं और सबसे जरूरी है सही जानकारी पर ही भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना रहे होते हैं।
2: दोस्तों, आज की बात से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं तो सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत से लाभ गई और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। सुनना न भूले FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में।
2: बेमौसम बारिश
1: 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
1: रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सर ये बताइए आप मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
1: जी,
0: तो आपको हमारे रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
1: नहीं मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
0: अरे अरे क्या बात है।
1: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया आपने।
0: बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी सर,
1: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए, और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं आप।
0: बिल्कुल सर, तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है?
1: देखिए बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को निर्णय को कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ही अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी है, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
0: बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
1: देखिए जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को स्थायी रूप से रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
0: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
1: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है तो अदालत के समक्ष अपनी अपील एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
0: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
1: देखिए स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
1: देखिए जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है, और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है उस पर कुछ नहीं कर सकते।
0: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
1: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना आपको मानना भी है और बाध्यता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
1: नहीं देखिए इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
0: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
1: देखिए इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कोर्ट के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
0: बिल्कुल,
1: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल लगा सकती है, अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाई कोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
0: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
1: जी हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है, अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
0: क्या बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
1: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपनी लीगल राइट्स को जानें और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या राइट जो कानून तोड़ रहे होते हैं। तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
1: बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए, अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था।
1: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं उसको स्टडी करते हैं पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: बहुत बहुत

0: रेखा कुमारी 4000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक

0: पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
3: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
4: किसी भी सेना को

0: शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है, हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5,00,000 से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई ऐसे संगीतकार हुए जिन्होंने सुपरहिट गानों की झड़ी लगा दी, लेकिन कुछ ऐसे भी फनकार थे जिन्होंने गानों को सिर्फ हिट नहीं बनाया बल्कि अमर बना दिया। ऐसे ही एक खामोश, संजीदा और बेहद प्रतिभावान संगीतकार थे जयदेव जी। जयदेव जी का पूरा नाम जयदेव वर्मा था। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 1918 को अफ्रीका के नैरोबी में हुआ था। जयदेव जी एक ऐसे संगीतकार थे जिसने कभी लोकप्रियता की दौड़ नहीं लगाई है, लेकिन अपनी सादगी और सुरों की गहराई से संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लिया। अफ्रीका में जन्मे जयदेव

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: नमस्कार बहनों, मैं हूं आपके साथ आरजे रीना और आज हमारे लिए ना एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं महिला मंच, जहां पर हम खाने पीने की बातें करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए शो है बल्कि

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार बहनों, मैं हूं आपके साथ आरजे रीना और आज हमारे लिए ना एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं महिला मंच, जहां पर हम खाने पीने की बातें करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए शो है बल्कि पुरुष भी इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी के लाइफ में ना यानी कि खाने पीने के लेकर बहुत सी दिमाग में बातें चलती रहती है कि आखिरकार इस गर्मी के मौसम में हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमें आराम मिले, बॉडी को ठंडक मिले और हम भी आराम से रह पाए। और ऐसी ढेर सारी आपको टिप्स बताते रहेंगे, बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट। आपका अपना फेवरेट सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: एट दिस साइड आर्जेरीना एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि श्रोताओं, हम हर डेली आप सभी के लिए लेकर आते हैं महिला मंच शो, जहां हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। सो आज की हमारी बात उस लड़की के लिए है जिसने बचपन से लेकर संघर्ष करा है। एज में हम खेलते हैं, उस एज में उसने लकड़ियां उठाई है। कहते हैं सपने पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आंखों में सपने नहीं बल्कि संघर्ष लेकर पैदा होते हैं और उन्हीं संघर्षों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। ऐसी ही कहानी है भारत की शेरनी मीराबाई चानू की।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और एपीजे अब्दुल कलाम जी की बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें हैं कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी मीराबाई चानू। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची, किसी ने नहीं सोचा था कि यह बेटी एक दिन पूरे भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगी। घर के आर्थिक हालात इतने कमजोर थे कि कई बार दो वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। पिता लोक निर्माण विभाग में एक साधारण कर्मचारी थे और माँ छोटी सी चाय की दुकान चलाकर परिवार का खर्च उठाती थी।
0: बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब छोटी मीराबाई जंगल से लकड़ियां काटकर सिर पर उठाकर घर लाती। कई किलोमीटर पैदल ना उसकी मजबूरी थी। एक दिन उसके बड़े भाई जितनी लकड़ियां नहीं उठा पाए, लेकिन छोटी सी मीराबाई ने मुस्कुराते हुए उसे भी ज्यादा वजन उठाकर ले आई। उसी दिन परिवार को एहसास हुआ कि इस बेटी में कुछ खास बात तो है। मीराबाई का सपना पहले तीरंदाज बनने का था, लेकिन 8वीं कक्षा की किताब में भारत की मशहूर वेट लिफ्टिंग कुंज रानी देवी के बारे में पढ़ा तो उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें भी देश के लिए पदक जीतना है।
1: लेकिन सपना देख लेना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। घर में पैसे नहीं थे, वेट लिफ्टिंग के उपकरण खरीदना तो दूर, ट्रेनिंग सेंटर तक जाने का किराया भी नहीं होता था। कई बार वह बालू और पत्थर ढोने वाले ट्रकों से लिफ्ट लेकर अभ्यास करने पहुंचती थी। सही उपकरण नहीं मिले तो बांस के तनों से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। सालों की मेहनत के बाद भारतीय टीम में जगह मिली, लेकिन 2016 का रियो ओलंपिक उनके जीवन का सबसे दर्दनाक पल बन गया। करोड़ों भारतीयों की उम्मीद थी, लेकिन वह अपना प्रदर्शन पूरा नहीं कर सकी। बिना पदक लौटना पड़ा। लोग सवाल उठाने लगे, आलोचना होने लगी। कई रातें ऐसी थी जब वह रोते रोते सो जाती थी।
0: लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को कहा, अगर गिर गई हूँ तो उठकर पहले से ज्यादा मजबूत बनूंगी। और फिर आया 2017 में विश्व भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप। वही मीराबाई जिन पर सवाल उठा रहे थे विश्व चैंपियन बन गई। पूरी दुनिया ने उनकी ताकत को सलाम किया।
1: फिर आया टोक्यो ओलंपिक। इस बार मीराबाई ने सिर्फ वजन नहीं उठाया बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद को भी अपने कंधे पर उठाया। महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने ऐतिहासिक रजत पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। पदक जीतने के बाद जब उनके चेहरे पर खुशी के आंसू थे तब पूरे देश की आंखें नम थी।
0: इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने लगातार स्वर्ण पदक जीतकर साबित कर दिया कि असली चैंपियन वही होता है जो हर बार खुद को बेहतर बनाता है। मीराबाई चानू की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी आपकी पहचान नहीं होती, आपकी मेहनत आपकी पहचान बनती है। हालात चाहे कितने भी कठिन हो मगर इरादे मजबूत हो तो जंगल से लकड़ियां ढोने वाली बेटी भी एक दिन ओलंपिक के मंच पर तिरंगा लहरा सकती है।
1: याद रखिए, सफलता कभी आसान रास्तों से नहीं मिलती, वह उन्हीं के कदम चूमती है जो हर दर्द सहकर भी अपने सपनों का हाथ नहीं छोड़ते, और मीराबाई चानू इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है।
0: तो श्रोताओं, हम उन लड़कियों को यही मैसेज देना चाहते हैं जो खुद को हार मान लेती है। यानी कि मीराबाई चानू ने 2017 में गोल्ड मेडल जीता, फिर दूसरा दौर आया 2022 जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, फिर यानी कि 2026 यानी कि भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली पहली विमेन बन गई। तो श्रोताओं देखिए, इरादे मजबूत होना चाहिए। आप कोई भी काम कर सकते हो, चाहे आप कितने भी गरीब फैमिली से क्यों ना हो। और बहुत से लड़कियां हैं जो काम करती हैं, हार मान लेती है। हालांकि मीरा बाई को भी ये कहा गया था 2016 में, जब ये हार गई थी तो इनको भी यही कहा गया था कि छोड़ दो, मत करो इस काम को, तुम आगे बढ़ो। लेकिन इनकी जो मम्मी है वो उनके साथ रही, उनकी मम्मी को विश्वास था कि एक न एक दिन मीरा बाई देश का नाम जरूर रोशन करेगी। और इन्होंने किया। जब फैमिली साथ होती है ना तो आधी जीत तो आपकी वहीं तय हो जाती है। कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना आए, उसको भी आप आसानी से क्रॉस कर लेते हो। तो खुशी, तुम उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगी जो सपने तो देखते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मार्ग आ जाते हैं बीच में जिनसे वो हार मान लेती है, तो उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी, मीरा बाई के थ्रू क्या उदाहरण देना चाहोगी तुम उनको?
1: तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, स्टडी कर रही हैं, लाइफ में उनके भी ड्रीम्स हैं, वो भी बड़े बड़े सपने देख रही हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि राहों में मुश्किलें आती हैं, लेकिन आपको उस मुश्किलों से घबराना नहीं है, उनका सामना करना है, अपनों के साथ आगे बढ़ना है। और जब आप खुद पर विश्वास रखती हैं ना, तो आपकी जीत वहीं पर निश्चिंत हो जाती है। पहली जीत आपको तभी मिलती है जब आप खुद पर विश्वास रखती हैं। और कहते हैं ना, बड़ी खूबसूरत सी लाइनें हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, अभी हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर मिलेंगे आपको एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए ईकेसीसी पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: मैं मुंडा
7: ते फिर तू कह दे
6: की कह के दिखावा दस।

0: नमस्कार एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप थे फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और एवरीवन, वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 3:06 का फेवरेट शो शुरू हो चुका है, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी बातें आपसे एंड सुनवाएंगे आपके पसंद के गाने। तैयार है ना? वेरी गुड। आप तैयार है तो चलिए नंबर लगाइएगा जल्दी से। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और सावन का आज पहला सोमवार है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सावन के पहले सोमवार की। एंड बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, मतलब फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार। अच्छा ठीक है सर, अपना नाम तो बताइएगा।
1: नाम नरेंद्र सिंह नाम है, एक ही बार लगाते हैं हफ्ते में कॉल हम बस।
0: वेरी गुड। कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइएगा।
1: संतोषपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, तो सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए सर। ठीक है,
1: ठीक है जी।
0: तो चलिए अभी फर्स्ट सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और इस खूबसूरत गीत को गाया है मोहम्मद रफी साहब जी ने। तो मिलकर सुनते हैं सब इस शानदार गाने को। और इस ट्रैक से ना बहुत सारे जो श्रोता हैं हमारे, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं उस शादी वाला मेमोरेबल टाइम, या किसी शादी में गए हो, या खुद की शादी में ही गाना प्ले किया हुआ हो। जयमाला के टाइम पर होता है ना, जो वरमाला होती है, तभी ये ट्रैक चलता है। तो

0: देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने फ्लैशबैक में चले जाएंगे इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनकर, और चले गए थे ना आप, लेकिन हम आपको फिर से वापस ले आए हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ, और गाना अभी आपने सुना मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज़ में। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं कि उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार मैडम जी, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलंदरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे मैडम जी।
0: मोहन सिंह ठाकुर जी बात कर रहे हैं, बताइएगा सर कैसे हैं आप और महाराष्ट्र का मौसम कैसा है?
1: बहुत बहुत अच्छा है मैडम जी, मौसम 2-3 दिन पहले बहुत बारिश हो गई, अभी भी इधर उधर से बदली है, शायद हो सकती है शाम तक रात तक।
0: ओके,
1: अभी हम खेत में हैं मैडम जी।
0: अच्छा,
1: हमारा
0: तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: फिल्म है बॉर्डर 2, उसमें गीत है संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं।
0: अच्छा,
1: सुन लेगा मैडम।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं मोहन जी की रिक्वेस्ट पर ये शानदार सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी बॉर्डर 2। और आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं ना, तो बिना किसी देरी के मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। समय हुआ है 3:13। तो सुनते हैं शानदार गाना।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते और कुछ गाने ना सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, महसूस किए जाते हैं, संदेश आते हैं भी। ऐसा ही एक गीत है जो हर उस दिल को छू जाता है जिसे किसी अपने की याद सताती है। कभी कभी दूरी इंसान को दूर कर देती है, लेकिन यादें हमेशा पास रखती हैं। तो आज ये गीत उन सभी अपनों के नाम जिसने हम मतलब वो अपने से, अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं दूर हैं, लेकिन दिल के रिश्ते होते हैं तो दूरियों का फर्क नहीं पड़ता है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका?
1: सतीश वर्मा बोल रहा हूँ मैं, विकास नगर।
0: सतीश वर्मा जी विकास नगर से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा कैसे हैं आप सर?
1: बढ़िया है मैडम जी, आप बताइए कैसे हैं, अपने परिवार में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी, सब बहुत अच्छे हैं। आपको सावन की सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं सर।
1: आपको मैडम जी, आपको पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं
0: जी। तो बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: सुनेंगे मैम जी, पुराना सॉन्ग है, मोहम्मद रफी की आवाज में है, गाने के बोले हैं, इसको पुकारे मेरा प्यार।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना। शुक्रिया कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। एंड अभी मुझे कॉल लगाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आप कॉल लगाने में व्यस्त हैं।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी नील कमल से मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में, और म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि जी। एंड बहुत ही खूबसूरत गीत, कुछ पुरानी यादों में हम लोग चले जाते हैं जब इस तरह के गाने सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स भी थे। एंड हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हमें सुन रहे हैं इस वक्त, तो उनकी पसंद के गाने भी यहाँ पर प्ले हो ही जाते हैं और उनको भी अच्छा लगता है कि अरे वाह, ये गाना तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि कुछ ट्रैक जो होते हैं वो दिल को एकदम टच कर जाते हैं, छू जाते हैं। तो सबकी पसंद यहाँ पर प्ले करना खुशी का काम है, बाकी कॉल करना आपका काम है। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, आप नंबर है 9837896896। और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी, हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम आतिफ
0: है। जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब? हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी? हाँ जी ऑल गुड, सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा सर, आज क्या फरमाइश है आपने कॉल किया हमें?
1: हमारी फरमाइश है मूवी है कातिल ओ कातिल मोहम्मद रफी की आवाज में। ये तो अल्लाह को खबर।
0: ओके, तो सुनवाते हैं ये गीत। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये ट्रैक। एंड आप भी मुझे कॉल कीजिएगा बिना किसी देरी के। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896 98 378 96 896। 9837896896 अब तो आप नंबर लगा ही पाएंगे ना, बहुत इजी है, जल्दी से कॉल कीजिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, मंडे टू सैटरडे आप यहां पर कॉल कर सकते हैं एंड अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, या फिर आप किसी अपने को कोई भी गाना स्पेशल डेडिकेट करना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी कातिलों की कातिल से, जो 1981 में आई थी। और चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी मुरादाबाद की क्या हाल है?
0: जी सब बहुत अच्छे हैं, आपके ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं सर। आप बताइएगा क्या कर रहे हैं इस वक्त आप?
1: आपको कॉल लगा रहा है तो लग गए।
0: अरे वाह, आप बहुत लकी हैं, कॉल लगाते हैं फटाक से लग जाती है।
1: जी लेकिन आपको लग जाती है और रामपुर में बड़ी मुश्किल से लगती है।
0: अच्छा, लगता है यहाँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं आप एफएम मुरादाबाद से।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी, बताइएगा आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: मूवी का नाम है क्या कहना।
0: अच्छा,
1: और गाने के बोल हैं ये दिल लाया है बाहर, कुछ सुनने वालों के नाम।
0: जी बताइएगा,
1: सुनने वालों के नाम है।
0: जी सर बताइए।
1: राधिया खान है, सिमरन खान है, शनाज बाबू अंसारी है, मिराज अंसारी, शफी अहमद अंसारी, रही अंसारी, तानवीर अंसारी, मसूद हुसैन, रजा हुसैन,
0: ओके,
1: शारिक अली, इरशाद अली, यही सब सुनना चाहेंगे, सभी मुरादाबाद के दोस्त हैं।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं शानदार सा गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं सर की पसंद का ये शानदार सा ट्रैक, ये दिल लाया है बाहर, अपनों का प्यार। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, कविता कृष्णमूर्ति जी की बड़ी खूबसूरत आवाज में प्यारा सा गाना है। और आपसे भी करेंगे बातचीत, लेकिन ये गाना सुन लेते हैं उसके बाद।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी, और वक्त हुआ है अभी 3:42। सुनते हैं अभी अपने अगले कॉलर्स की बातचीत, उनसे करते हैं और जानेंगे उनका फेवरेट गाना। आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं ना, तो तुरंत कॉल लगाइएगा बिना किसी देरी के। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: तलाश करोगे तो मिल ही जाएगा, तलाश करोगे तो मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुम्हें चाहेगा, वो जरूर तुम्हें चाहते से देखेगा और वो आके हमारी कहाँ सुलाएगा। मैडम जी नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, इतना शायराना अंदाज है आपका, नाम भी तो बताइएगा।
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है मैम, आप बताएं कैसी है? काफी समय के बाद आज आपसे बात हो रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बरेली में आज इस समय बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा मौसम है। इस समय भी बारिश हो रही है, सुबह से तो रुक रुक के हो रही थी, और बहुत सुकून के पलों में बैठ के आपका कार्यक्रम को सुन रहा है तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर। बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे आज इस रिमझिम बारिश में?
1: जी बारिश का मौसम है तो एक रोमांटिक गीत सुनना चाहूंगा। फिल्म का नाम है जीना सिर्फ मेरे लिए, फिल्म का एक टाइटल सॉन्ग है, वो सुनवा दीजिए। लेकिन इससे पहले चार महीने अंत करूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: जी जी जी इरशाद।
1: तुम्हारी जुदाई हम सह ना सकेंगे, तुम्हारी जुदाई हम सह ना सकेंगे, अपना हाल दिल कह ना सकेंगे, जानते हैं ये मिलन संभव नहीं है, पर तुम्हारे बिना हम रह ना सकेंगे।
0: बहुत खूब, बहुत प्यारी लाइन है आपकी सर, मोस्ट वेलकम। तो सुनवाते हैं शानदार से गाना आपको, अभी की पसंद का एंजॉय कीजिएगा जी। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर आएंगे हम। आप भी हमें कॉल लगाना ना भूलिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपने सुना, टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए। और दोस्तों इस खूबसूरत गीत को गाया था अलका याग्निक जी साथ में बबलू सुपुरियो जी ने। और अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश क्या है और कहां से वो बात कर रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो,
1: हेलो बहन जी नमस्कार।
0: हाँ जी आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: बहन जी मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जगदीश जी बात कर रहे हैं, पंजाब आएगा, कैसा मौसम है पंजाब का?
1: बहन जी मौसम तो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है।
0: अच्छा?
1: पूरी गर्मी पड़ रही है जोर से।
0: ओके, सावन के महीने में भी गर्मी हो रही है वहाँ पर, कोई बात नहीं बारिश भी आ जाएगी।
1: आएगी आएगी बहन जी, बरसात भी आएगी
0: जी।
1: अभी थोड़ी सी देर हो गई है, इंतजार ज्यादा लंबा हो गया है।
0: हाँ इंतजार ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं सर, देर से ही सही लेकिन आ तो जाए।
1: आएगी आएगी ऐसे तो है।
0: हाँ जी बताएगा क्या सुनेंगे आज आप?
1: बहन जी आज मैं फिल्म शहजादा का गीत है और किशोर जी और लता जी की आवाज में है
0: जी, बताएगा
1: तो मैं उसको तरन्नम में बताता हूँ बहन जी।
0: ठीक है सर।
1: रिम झिम देखो बरस रही है रात, प्यार से जो थामा है तुमने मेरा हाथ रे। रिम झिम देखो बरस रही है रात, प्यार से जो थामा है तुमने मेरा हाथ रे। प्यासी प्यासी कब से तरस रही थी रात, आज कही है जो कहनी थी बरसों पहले बात रे। रिम झिम देखो।
0: बहुत ही खूबसूरत आपने गुनगुनाया है सर, बहुत प्यारी आवाज है आपकी और मोस्ट वेलकम सर। सुनवाते हैं ये प्यारा से गाना आपकी पसंद का।
1: शुक्रिया बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक, लता मंगेशकर जी और साथ में किशोर कुमार जी की बहुत ही शानदार आवाज। आप भी कॉल लगाइएगा, मुझे तो लगता है कि आप अभी कॉल ट्राई करने में बिजी हैं, चलिए ऐसे ही बिजी रहिएगा।

0: देखिए दोस्तों, बहुत सारे शहरों में ना रिमझिम बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, एंड कहीं नहीं, सिटीज में नहीं हो रही है, लेकिन काफी सिटी में हो रही है। जैसे अभी हमारे पास एक कॉल आया था लिस्नर का बरेली से, वो बता रहे थे कि आज बरेली में बारिश हो रही है और मुरादाबाद में भी कई इलाकों में ऐसा हो सकता है कि बारिश हो, क्योंकि मुरादाबाद के कहीं कहीं एरियोज में बारिश होती है, कहीं होती है कहीं नहीं होती है। और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्ते। क्या नाम है आपका सर?
1: मैं ना उमेश कुमार प्रजापति है, मैं लोधीपुर मुरादाबाद से हूँ
0: जी। बताइएगा उमेश जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो मैम?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप? अच्छा ठीक है उमेश जी, सुनवा देते हैं ये प्यारा सा आपको। हाँ हाँ बताइए।
1: आपका तो व्रत होगा।
0: हाँ जी मेरा व्रत है।
1: मैं सोच रही था आज मैम का व्रत होगा।
0: अच्छा आप सोच रहे थे। ओके हाँ, आपने सही सोचा, आज हमारा उपवास है। आपने नहीं रखा?
1: मैं ये वाले रखता हूँ, उसमें रखू मैं।
0: अच्छा अच्छा ओके, विंटर्स में रखते हैं आप। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है सर। तो सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपको, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, उनके पीछे उनके साथी भी हंस रहे थे उनकी बातें सुनकर। एक्चुअली ना ये दोस्ती बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है दोस्ती का, एंड कुछ दोस्त होते हैं जो खिंचाई करते हैं और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। और सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक लता मंगेशकर जी साथ में किशोर कुमार जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में, ये प्यारा सा गाना।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शुक नाम है हेलो फरमाइश। और अभी आपने जो गाना सुना है ना, उस फिल्म का नाम है आपकी कसम। ये फिल्म का नाम है, मैं कोई कसम नहीं दे रही हूँ आपको, ठीक है, जो 1974 में आई थी। और इस खूबसूरत गीत को गाया था किशोर कुमार जी ने साथ में लता मंगेशकर जी, और ये ट्रैक फिल्माया गया था राजेश खन्ना साथ में मुमताज जी पर। बहुत ही प्यारा गाना। और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर? हाँ जी, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, बरेली में बारिश हो रही है?
1: बिल्कुल हो रही है मैम।
0: अच्छा, तेज हो रही है या धीमी धीमी बारिश हो रही है?
1: हल्की हल्की हो रही है, अभी बारिश सही से हो नहीं पा रही है।
0: अच्छा, हल्की बूंदाबांदी है जी। बताइएगा सर, एफ एम मुरादाबाद सुनते हैं कैसा लगता है आपको?
1: मुझे तो बहुत पहले से सही लगता है, और ज्यादा जो रात के 9 बजे से 10 बजे तक आता है, यही मतलब फरमाइश, ये भी सही लगता है।
0: अच्छा,
1: 3 से 5 बजे तक आता है, ये भी बढ़िया लगता है। इसमें सारे लोग मतलब अपना फोन लगा लेते हैं।
0: तो आपको फोन इन कार्यक्रम ज्यादा पसंद है? हाँ
1: बिल्कुल
0: जी। तो बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: जिनका नाम है जानवर, उसमें कोई सा गीत सुनवा दीजिए। और मैम मैं कुछ लोगों का नाम ले सकता हूँ?
0: जी बस दो ही लोगों का नाम ले सकते हैं आप, ज्यादा नहीं।
1: मेरे साथ हैं हासिम भाई, साहिब भाई, साहिम भाई और अनिल भाई, आरिफ भाई।
0: ओके।
1: और सिकंदर भाई।
0: अच्छा, दो नाम लेने के लिए बोला था आपने, 4-5 नाम ले लिए, चीटिंग के लिए आपने? हाँ
1: एक के साथ भी ले दिए मैम मैंने।
0: ओके चलिए, शुक्रिया सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी जानवर से, मौसम की तरह। बहुत ही प्यारा ट्रैक है, तो मैंने कहा चलो अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं इस खूबसूरत गीत को, उसके बाद आपसे भी करेंगे गुफ्तगू। दुनिया

0: देखिए दोस्तों, मौसम तो बदलता रहेगा लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम आपसे रेगुलर मुलाकात करेंगे मंडे टू फ्राइडे। और अभी आपका फेवरेट शो चल ही रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे अभी लाइव कॉल कर सकते हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। एंड आप कोई भी गाना, कोई भी ट्रैक सुनना चाहते हैं तो फटाफट से कॉल कीजिए। देखिए बेस्ट फ्रेंड में ना हमारी सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकते हैं, अपना नो भाई भी हो सकता है, एंड इवन मॉम भी हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं हमारे। तो आप किसी को भी गाना कोई भी डेडिकेट कर सकते हैं, फटाफट से कॉल कीजिए। इतना आलस मत करो, थोड़ा सा काम भी लग जाओ, ठीक है। नंबर हमारा है 9837896896। और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम जी, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्ते। क्या नाम है आपका?
1: मैम मैं जिला मरोहा ज्ञान के चमन से नेहा बात कर रही हूँ।
0: नेहा जी बताइए, कैसे हाल चाल है आपके?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा क्या कर रही थी मोहतरमा आप?
1: मैम अभी तो बैठे हैं, आपको प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: अच्छा, शो सुन रहे हैं। ओके, तो कॉल लगाने का कब से प्रयास कर रहे हैं आप?
1: प्रयास तो बस 15-20 मिनट हो गए।
0: अच्छा ओके, तो 15-20 मिनट के बाद आपका कॉल लगा है, कैसा लग रहा है नेहा बताइएगा?
1: मैम बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है ना, मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है।
1: बहुत खुशी होती है, हमारी पहली सिस्टर है वो सुनती है ना
0: जी,
1: तो आज बोल रही थी मेरी पसंद का सॉन्ग सुन लेना।
0: अच्छा तो बताइएगा कौन सा गाना है आपकी कजन सिस्टर की पसंद का?
1: मूवी का नाम है डार्लिंग और उसका सॉन्ग है जिया ना जाए तेरे भी।
0: अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं फिर ये गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: आपके लिए मैम कुछ लाइन है।
0: ओके इरशाद।
1: नजरें मिलते ही दिल लगाया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल लगाया नहीं जाता, हर मिलने वालों को अपना बनाया नहीं जाता, और जो दिल में बस जाए एक बार उन्हें उम्र भर बुलाया नहीं जाता।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं नेहा जी आपकी, कमाल ही कर दिया आपने। हाँ
1: ओके मैम,
0: आप पहले से तैयार करके रखती हैं क्या?
1: शायरी आती है, शायरी करने का।
0: अच्छा मतलब आप सोचती हैं कि चलिए आज कॉल लगाएंगे तो आज ये वाली शायरी सुनाएंगे, है ना ऐसा? ओके चलिए, बहुत अच्छी थी आपकी शायरी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको नेहा, एंजॉय कीजिएगा।
1: बाय
0: बाय। तो चलिए एवरीवन, नेहा एंड उनकी सिस्टर की पसंद का ये गाना है और सुन लेते हैं बिना किसी देरी के, एंड उसके बाद करेंगे आपसे भी बातें। तब तक आप कहीं मत जाइए, हमें कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर अकीन मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिसपे आपको कॉल लगाना है और खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। तो जल्दी जल्दी से कॉल लगाइएगा, और जो आंधवी कार में है मैं उन्हीं से कहूँगी कि आप बस केयरफुली ध्यान से ड्राइविंग कीजिएगा एंड मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जिंदगी में हो या फिर वो लाइक ऑफिशियल लाइफ हो, दोनों में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतने ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, टेंशन होती है, लेकिन उस बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा मुस्कुराना चाहिए, फिर वो जो टेंशन होती है ना थोड़ी दूर हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप तन्हा नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप अकेले कैसे हो सकते हैं, हाँ बताइएगा। आपकी दोस्त जी खुशी आपके साथ है और ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और शो चल रहा है हेलो फरमाइश लाइव फोन इन कार्यक्रम में। आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, चाहे आप घर में हो या आप शॉप पर बैठे हो या फिर आप कार में जो आपके बाजू वाले आपके पास में बैठे हैं, आप उनसे कॉल लगवा सकते हैं। आप सावधानी के साथ ड्राइविंग कीजिएगा और इस सफर को बनाइए और भी ज्यादा सुहाना खुशी के साथ। तो चलिए एवरीवन, अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: हाँ जी नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका?
1: मैं निशा की मम्मी बोल रही हूँ, शेरस
0: खेड़ा से। जी बताइएगा, कैसी हैं मैम आप?
1: बढ़िया हैं।
0: ओके, आपको सावन की सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं मैम।
1: आपको भी।
0: जी बताइएगा, क्या सुनना चाहती हैं आज आप?
1: सावन के झूलों में।
0: सावन के झूलों ने तुझको बुलाया। ओके, हाँ जी हाँ जी मैम, ठीक है, ये प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका। नमस्कार मैम आपको भी। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने इस सफर को सुहाना बनाते रहिए खुशी के साथ। और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, सावन का पावन महीना है।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: शहर का ये पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो आपके फेवरेट गाने तो प्ले करता ही है, लेकिन आपको बहुत सारी अपडेट भी यहाँ पर मिलती हैं। क्या हो रहा है अपने मुरादाबाद सिटी में एंड उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। और एवरीवन, अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी निगाहें से, जिसमें इस फिल्म ये जो आपने ट्रैक सुना है एंड ये फिल्माया गया था ट्रैक सनी देवल साथ में श्रीदेवी जी की खूबसूरती अदाए, ओहो हो, और ये फिल्म बहुत ही प्यारी थी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो
4: मैम, जय श्री महाकाल।
0: हाँ जी, जय श्री महाकाल, क्या नाम है आपका सर?
4: मैम शिवा लोहा, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ। मैम
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
4: मैम बहुत बढ़िया हूँ। मैम सभी सुनने वालों को और आपको और पूरी टीम को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताइएगा, आज का एमपी का वातावरण तो बहुत ही खूबसूरत होगा ना, आज शोभा यात्रा भी निकलने वाली है ना महाकाल जी की?
4: जी बिल्कुल मैम।
0: हाँ जी, तो बताइएगा आप क्या सुनना चाहती हैं आज सर?
4: मैम किशोर कुमार जी की आवाज में एक गाना है, दिल में आग लगाए सावन का महीना।
0: ओके चलिए सुनवा देते हैं आपको प्यारा सा गाना। शुक्रिया आपने कॉल किया, धन्यवाद सर।
4: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए शिवा की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक किशोर कुमार जी की आवाज में, लौट कर आते हैं हम। और आप भी कोई सावन का ट्रैक सुनना चाहते हैं इस सावन के खूबसूरत महीने में? दोस्तों सावन का महीना चारों तरफ हरियाली, पॉजिटिविटी एंड बहुत अच्छा माहौल होता है और बहुत अच्छा भी लगता है ना। तो हम आपसे अभी लौट कर आएंगे, तब करेंगे बहुत सारी बातें। सुनिएगा ये शानदार गाना।

0: वेलकम है आपके एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। और सच बताएं दोस्तों, हम भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं तो हम ऑन एयर आ जाते हैं और अपने श्रोताओं से बातचीत करने का जितना एक्साइटमेंट आपके अंदर होता है उतना ही हमारे अंदर होता है। और हमें भी इंतजार होता है अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं का कि जल्दी से वो भी हमें कॉल करें, हमसे बातचीत करें और हम उनके प्यारे गाने प्ले करें। तो अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी अलग अलग, राजेश खन्ना और साथ में टीना जी। इस गाने में इन्होंने नजर आए, फरमाया गए ट्रैक इनके ऊपर। एंड किशोर कुमार जी की खूबसूरत सी आवाज, म्यूजिक डायरेक्टर थे आर जी बर्मन जी और लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। तो एवरीवन, चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले फरमाइशकर्ता जी के साथ। कौन कहां से कनेक्ट हो रहे हैं वो हम उन्हीं से जानते हैं बात करके। हेलो फरमाइश। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपको बताइएगा?
1: मुरादाबाद यूपी से रणबीर सिंह जेठालाल
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: सही हैं आप? सुनाइए मैम।
0: हम भी ठीक हैं। क्या करते हैं आप सब?
1: ओपीओ काम करते हैं, 9 बजे हैं मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। तो बताइएगा, आज सावन का पहला सोमवार है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मोहरा फिल्म का गाना है मैम।
0: मोहरा मूवी का कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं सर, बताइएगा?
1: एक खास कहीं ऐसा होता, दो दिल होते, सीने में चोट भी जाता है तो।
0: ओके, तो सुनवाते हैं गाना आपको। धन्यवाद सर, आपने कॉल किया। सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपकी पसंद का। तो चलिए विवन, मोहरा मूवी का ये ट्रैक सुनते हैं। ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, अक्षय कुमार और साथ में रवीना टंडन जी नजर आई। एंड ये फिल्म आई थी 1994 में। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। आप भी मुझे कॉल लगाना बिल्कुल मत भूल जाना। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837 8968 96।

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये प्यारा सा गाना सुना, बहुत ही खूबसूरत, फ्रॉम द मूवी मोहरा। और इस ब्यूटीफुल ट्रैक को गाया था कुमार सानू जी ने। सोचिए दोस्तों, जब एक दिल है हमारे सीने में, इतना नटखट होता है, एक दिल से इंसान परेशान हो जाता है, और दो दिल होते तो क्या होता। लेकिन गाना बहुत खूबसूरत था। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: शाकिर बोल रहा हूँ, नगर ठहर से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप? सो
1: बढ़िया मैम, आप सुनाइए क्या हाल है?
0: हाँ जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: ये सुनना मैम, मिलन फिल्म पे बोल
0: है, सावन का महीना पवन करे शोर। ठीक है सर, सुनवा देते हैं ये खूबसूरत सा गीत आपको।
1: ये दो नाम बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी बताइएगा।
1: हाँ, एक मुस्कान एक आलिया।
0: ठीक है सर, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं लता मंगेशकर जी और साथ में मुकेश जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, सावन का महीना पवन करे शोर। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, और इस प्यारे से गाने में को ना हम सभी मिलकर लुत्फ उठाते हैं।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से गाना एंजॉय किया। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और आपस में गपशप कर रहे हैं कि यार बहुत टाइम हो गया है, मैम अभी तक बात नहीं कर रही है। तो चलिए उनसे डायरेक्टली बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
4: मैम मेरा नाम राजू।
3: राजू जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: ये पैरामाउंट एक्सपोर्ट है 24 के पास।
3: हाँ जी
4: जी मैम।
3: ओके, तो वहाँ से आप बात कर रहे हैं, बताइएगा सर क्या फरमाइश है आपकी?
4: आपके साथी थे, ये कह रहे हैं आप गाना नहीं आ रहा। मैंने आगा जरूर ध्यान रखू, मैंने कोशिश बेकार नहीं जाएगी।
3: बिल्कुल सर, आपने देखिए ये विश्वास रखा और
4: विश्वास रखा, लाइन तो बने रहे थे। मैंने मैम कभी तो गाना खत्म होने के बाद में बोलेंगी।
3: बिल्कुल, और कहते हैं ना सर कि उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है।
4: कायम है जी मैम। ठीक है
3: जी, बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे आज, क्या फरमाइश है आपकी?
4: याराना मूवी का वो बोले वो बोले।
3: अच्छा ठीक है,
4: पावन महीना मैम।
3: हाँ, सावन का पावन महीना चल रहा है और आज पहला सोमवार है।
4: पहला सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने दोस्तों के साथ सुनिएगा ये प्यारा सा गीत, अब उनको भी सुनाइए आप कि आप बहुत बोल रहे थे ना।
4: जी मैम, आपका व्रत होगा?
3: हाँ जी सर, आज हमारा उपवास है।
4: जी सर, अच्छी बात है जी मैम।
3: जी थैंक यू कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं राजू जी की पसंद पर ये शानदार सा गाना फ्रॉम द मूवी याराना से, किशोर कुमार जी की बहुत ही मधुर आवाज। तो सुनते हैं दोस्तों ये प्यारा सा गाना।

0: आप महादेव जी से रिक्वेस्ट करेंगे तो कैसे ना सुनेंगे। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो एवरीवन, अभी अपने लास्ट कॉलर से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी पसंद का गाना। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: बनने का हिसाब ना आया, सही
0: हेलो फरमाइश।
1: है ना? क्या
0: सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो
1: बनने? हेलो
0: हेलो फरमाइश।
1: फरमाइश जी,
0: हाँ जी सर, कहाँ बिजी हो गए थे आप?
1: मैं कहीं देख रहा था।
0: अच्छा जी, बताइएगा क्या नाम है आपका?
1: मैं जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से रजिया हुसैन बोल रहा हूँ। मैम,
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: हम बढ़िया हैं। और देखिए, मैं कहाँ देख रहा था, मैं सवारी को देख रहा था क्योंकि मैं इस टाइम ऑटो चला रहा ना।
0: अच्छा ओके, आप ऑटो रिक्शा चला रहे हैं?
1: अब मैं सेट से रोक लूँ तो बात करूँ आपसे। जी
0: ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, साइड में लगा लीजिएगा।
1: जी मैं इस टाइम रुक गया, सेट से लगा लिया।
0: जी सर,
1: और
0: ये बात
1: मैं
0: अच्छा किया आपने।
1: चौराहा गोविंदपुर खुर्द का जो मस्जिद है, मस्जिद के ठीक सामने हमारे ताऊ की दुकान है, वो रेडियो संभालते हैं मैम।
0: अच्छा अच्छा ओके
1: जी, हाँ रेडियो संभालते हैं चौराहा गोविंदपुर खुर्द का।
0: जी, बताइएगा क्या सुनेंगे आप सब?
1: तो आज मेरी कॉल लगी है काफी समय के बाद, तो गाने को इस तरह करेंगे, मेरे हमदम मेरे करीब आओ तो मेरे गीत बुलाते हैं। थैंक
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: यू मैम।
0: तो चलिए विफन, ये सुनते हैं रजा हुसैन जी की पसंद पर खूबसूरत सा गाना। और अभी हमारे भी जाने का वक्त हो गया है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम मिलेंगे आपको टुमारो मॉर्निंग 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए और इस सावन के पावन महीने में शिव जी की भक्ति कीजिए। क्योंकि दोस्तों, सेवा कीजिए एंड किसी के प्रति गलत भावनाएं मत रखिए, सबके प्रति प्रेम सम्मान अपने दिल में रखिएगा। और इसी खूबसूरत गीत के साथ मैं लेती हूँ जाने की अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत हासिल की है। श्री पटेल ने कांग्रेस के भिखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर 31 में से 24वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 13,800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से 12,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उज्बेकिस्तान के निवेश उद्योग और व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ 39 पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: जाया

0: थोड़ी पी लिया कर।
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग, गुड वाली इवनिंग है श्रोता हो। समय की बात करूं तो 5:09 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। और आप सभी को भाई, आज सावन का पहला सोमवार है, यानी कि ये सावन का जो मावन पावन पर्व यानी कि सोमवार का है, ये सिर्फ इसलिए जलाभिषेक के लिए यानी कि कांवड़ लेकर जाते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने यानी कि जब विष पिया था तो सभी देवताओं ने उनके लिए जल लेने के लिए जल लेकर आए थे, तभी से ये प्रथा शुरू हो गई है कि भगवान जी के जो विष पीने के बाद उनका गला जो जल रहा था, तभी से ये अमृत जल है जो ले आया जाता है और उनके ऊपर जलाभिषेक किया जाता है। तो आप सभी को हर हर महादेव, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपनी जिंदगी में यूं ही खुश रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा है, वो आपके ऊपर हमेशा यूं ही बनी रहे। और 2 घंटे आप सभी के साथ, देखो देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसकी तो हम बातें करेंगे ही श्रोताओं, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता ना। तो आप सभी से बस यही कहेंगे, कनेक्ट रहिए और एक महादेव का बढ़िया सा गाना सुनवाते हैं हम आपको, एंजॉय करिए।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 5:18 हो चुकी हैं। और आई नो कि इस टाइम भाई बाहर आप जब भी जाएंगे, ऑफिस से निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक जाम तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक तरफ कांवड़ियों के लिए और दूसरी तरफ जो जो बिना कांवड़ यात्रा है उनके लिए है। तो इस टाइम आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल सकता है अगर आप ऑन द वे हैं, ट्रैफिक में हैं और कहीं पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896। और मुरादाबाद में यानी कि कांवड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा सेवा उपलब्ध कराया गया है, यानी कि कांवड़ मोबाइल वैन उनके लिए चालू कर दी गई है, ताकि उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी आती है तो वो आराम से उसमें बैठकर जा सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने बहुत खासकर मतलब ध्यान रखना है, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप देखा भी होगा कि भाई कांवड़ जो डीजे, एक तो नॉर्मल वाला डीजे होता है भैया, और एक ऐसा डीजे जो आपके कान के पर्दे ना मतलब सुनने कम हो जाएंगे। एक्चुअली ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल मैं शाम को मैं माता मंदिर के साइड गई थी और वहाँ से डीजे वाले यानी कि जो कांवड़ यात्रा चल रही थी, लिटरली मतलब मेरे सामने से गुजर के गई है। मैं वहाँ खड़ी थी, मतलब मेरे कान अभी भी मतलब मैं अच्छे से ऐसा लग रहा है कि वो गूंज ही रही है मेरे कानों में, आवाज़ इतनी तेज गूंज रही है। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बस रीना तू तो गई, कान तेरे गए, मतलब खुद से कान बंद करने के बाद भी ये हाल थी। तो और पता नहीं लोग कैसे जब डीजे चलती रहे।

अभी लेकर जा रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ और ना ही उनके मैं खिलाफ हूँ। बस मैं ये कह, पहले के जो कावड़ यात्रा जो करते थे वो भगवा कलर में होते थे, कोई भी घर के कपड़े में नहीं होते थे, लेकिन अब घर के कपड़े में भी होते हैं। और साथ ही साथ पहले पैदल यात्री जाते थे, पहले भाव होता था, पहले बड़े बड़े जाते थे कावड़ यात्रा के लिए, अब बच्चे उच्चे सब जाते बाइक मोटरसाइकिल लेके। लेकिन मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े लाउड वाले डीजे, मतलब क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है। आप जाइए भाव के साथ, जाइए भगवान के पास, क्योंकि भोले भंडारी है वो सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप उनको भाव से पुकारिए, आप जहां हैं वो वहां से आपकी बात सुनते हैं। भगवान, पुराण में भी लिखा गया है कि भगवान की भक्ति आप कहीं से भी कर लो, किसी टाइम कर लो, भगवान सुनते ही सुनते हैं। तो इसीलिए सभी से विनम्र विनती है कि अगर आप कावड़ यात्रा निकलती है और डीजे वाले के आसपास, तो आप बिल्कुल ना जाए भैया, बहुत लाउड होता है। और ऑन द वे हैं आप, ट्रैफिक में हैं, तो मैसेज करके बिल्कुल बता सकते हैं, ताकि और जो ऑफिस से निकल चुके हैं उनको थोड़ा लेट ना हो और उस रूट से वो जाने से थोड़ा सा बचे। और शाम के टाइम अगर आप प्रकाश नगर चौराहे की तरफ से आ रहे हैं तो भैया मत ही आइए, मैं कहती हूँ मत आइए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। यानी कि सोचिए, पहले पैदल यात्री निकल जाते थे, अब उनके लिए भी परेशानी हो गई है। फिलहाल गाना सुनते हैं, क्योंकि जब बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मैं चुप ही नहीं होती हूँ। चलिए फिलहाल मैं अगला गाना आपको सुनाती हूँ, बहुत ही शानदार भोले बाबा का भजन है, उसके बाद और गाने सुनेंगे, क्योंकि ये गाना सच में बहुत शानदार है। और बने रही आरजे रीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: एक बार सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि पावन सावन का महीना शुरू हो गया है, यानी कि हम बात करेंगे योगी जी की पाती। सावन का महीना भी अद्भुत है। रिमझिम फुहारे, शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता, जहाँ नजर डालो हरियाली, प्रकृति की सुरमयता क्या होती, सावन में ही पता चलता है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सावन स्पेशल पाती में है विशेष संदेश। योगी जी कहते हैं, यहाँ पवित्र माह सेवा, प्राकृतिक और साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रतीक है। प्राकृतिक से जितना ले उतना ही उसे लौटाने का संकल्प भी होना चाहिए। सेवा वाटर, सेवा अर्थ, पानी की एक भी बूंद नहीं हो व्यर्थ। तो इस मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मैसेज के लिए आज जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, सभी मेरे साथ बोलिए थैंक यू योगी जी। और सुनते रहे एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: दिलेर मेहंदी जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत होता हो और मतलब इनके गाने होए होए बड़े ही लाजवाब होते हैं। ये इनके गाने जो भी प्ले होते हैं ना, हर कोई बस थिरकने लग जाए। और भाई थिरके क्यों ना, क्योंकि भाई धमाकेदार वाली गाने होते हैं इनके। आरजेडीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं। समय की बात करूं तो 5:39 हो चुके हैं और आप आरजेडीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और अब हम बात करने वाले हैं वेदर अपडेट की। हाँ जी, यानी कि आज देखा होगा सुबह जिस तरीके से मौसम था ना, लग नहीं रहा था कि आज धूप निकलेगी, लेकिन फिर भी कड़ाके वाली धूप निकली। लेकिन अब बाहर का जो मौसम है वो सही हो रहा है, यानी कि मुरादाबाद के आसपास एरिया में बारिश हो रही है। गाइस, जरूरी नहीं है कि यहाँ नहीं बारिश हो रही है तो आप सोच रहे होंगे कि बारिश हो ही नहीं रही है मुरादाबाद में। यानी कि बात करूँ तो संभल, अमरोहा और चांदपुर के साइड बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बिजनौर में भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वेदर है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर, यूपी के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में यानी कि 3 दिन तक मूसलाधार बारिश बता रखी है, यानी कि बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि सावन का पावन महीना है और सावन के महीने में भगवान इंद्रदेव, भगवान यानी कि महादेव के लिए प्रसन्न ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर, यूपी के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और फिलहाल कुछ मैसेज हैं तो चलिए उनको भी शामिल करते हैं कि किनका हमारे पास मैसेज आया है। ये मैसेज आते हैं हमारे पास, हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। आपने भोले जी की जो भजन आपने सुनवाई, धमाकेदार एंट्री करी आपने, दिल खुश हो गया। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, दिल खुश हो जाना जी। और आज बहुत से भाई बहनों का ना आज बर्थडे है, बहुत से भी मनिए का आज यानी कि फास्ट है, तो भोलेनाथ की कृपा तो आपके ऊपर बरसती रहे और आप यूं ही अपनी जिंदगी में खुश रहे। और आज इनका कहना है कि आज सावन का पहला उपवास है और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, एंड आपको भी थैंक यू सो मच जी। बम भोले जय हर हर महादेव। बिल्कुल जी, जयकारा लगनी चाहिए इसकी। और इनका कहना है कि मैम चाय पी लीजिए। बिल्कुल जी, अब शाम को ही फास्ट खोलेंगे तभी चाय पियेंगे। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, अच्छी बात है जी, मौसम अच्छा हो गया तो। और इनका कहना है कि बिल्कुल आपने सही कहा था, जो पहले की कांवड़ यात्रा थी बड़ी अच्छी लगती थी। सुबह सुबह भी 4 बजे जब उठ के हम उनके लिए पानी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कांवड़ियों के लिए पानी लेकर जाते थे घर से उनको पिलाने के लिए। तो मैंने लिटरली, मैं जब मैं छोटी थी तो जब कांवड़ यात्रा निकलती थी ना, तो मैं मेरी मम्मी 4 बजे उठा देती थी मेरे को और मेरे भाई को, कहती थी जाओ पानी लेकर जाओ, उनको पानी पिलाना, वो बहुत दूर दूर से भागते भागते आते हैं, उनको पानी पिलाओ अच्छा रहेगा। और मैं कम से कम 1 किलोमीटर तक दौड़ के गई थी उनके साथ पानी पिलाने के लिए, क्योंकि वो पानी रुकते नहीं है, पहले रुकते नहीं थे पानी, ये नहीं कि पानी पिल रहा तो रुक जाए, रुकते नहीं थे पहले, भागते रहते थे, भागते रहते थे, पानी भी भागते भागते पीते थे। तो मैं उनके साथ दौड़ती दौड़ती गई और फिर वापस रिटर्न आई थी। तो मतलब उस टाइम का जो क्रेज था ना, मतलब एक अलग ही, मतलब अभी भी फील करोगे ना तो बड़ा सुकून फील होता है, बहुत आनंद आता है। और इन्होंने कहा है कि अभी जो आपने यूपी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पाती आपने सुनाई, बहुत बहुत अच्छा लगा, और रेडियो बजाते रहे रीना मैम के साथ और गुनगुनाते रहे जी। बिल्कुल, और इनका कहना है कि मुरादाबाद में भगवान जी नाराज हैं। अरे नहीं नहीं, नाराज नहीं है, कल आ जाएंगे बारिश, डोंट वरी, ऐसे नाराज नहीं होते भगवान अपने बच्चों से। और अगले मैसेज की बात करूँ तो हर हर महादेव, रीना मैम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और गाने भी बहुत अच्छा प्ले कर रही हो आप, सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, सोनू सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। तो थैंक यू सो मच सर आपने मैसेज किया इतना प्यारा। और बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, फिर लौट कर आते हैं श्रोताओं। फिलहाल आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि रेडियो की सुई बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करनी, आपने आरजेडीना के साथ कनेक्ट रहना है। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल हम गाना सुनेंगे बदतमीज दिल, यानी कि बहुत ही शानदार वाला गाना है, जो आज के टाइम में अपने दिल को ना बच्चा बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि आप जितना सीरियस रहेंगे ना आपको टेंशन भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और जब टेंशन बढ़ती है तो सेहत भी खराब हो जाता है। इसीलिए हैप्पी रहिए और अपने आप को भी हैप्पी रखिए, सामने वालों को भी कोशिश करिए कि उनको भी आप हैप्पी रखें, उनको भी हंसाए, क्योंकि आज के टाइम में किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं,
1: उसके बाद धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में श्रोता। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, यानी कि देखिए पंजाबी गाने ना वैसे बड़े ही लाजवाब वाले होते हैं, उनको आप जितनी बार भी सुन लो ना दिल नहीं भरता है, बस ऐसा मन करता है कि बस सुनते जाओ। और जब पंजाबी और हरियाणवी गाने बजते हैं ना तो बिल्कुल भी पैर आपका रुकने का नाम ही नहीं लेता, बस पैर थिरकने लग जाते। लेकिन फिलहाल अभी मैं बात करने वाली हूँ, आप सभी को लेकर चलने वाली हूँ बॉलीवुड की गलियों में, है ना। हम सभी इंतजार करते रहते हैं कि यार आखिरकार कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है अब की बार, क्योंकि दोस्तों के साथ भी थोड़ा एंजॉय करने का हमें मौका मिल जाता है। वैसे तो घर वाले भेजते नहीं है, कभी कभी पूछने लग जाते हैं, सवाल पूछने लग जाते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, मतलब आप डेली नहीं जा सकते हो। लेकिन एक ऐसा दिन होता है कि जब आप दोस्तों के साथ मिलो, इनफैक्ट दोस्तों के साथ क्या, फैमिली मेंबर के साथ जा सकते हो एंजॉय करने के लिए, मूवी देखने के लिए। तो यानी कि 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है सनी देओल जी की और प्रीति जेंटा की फिल्म आ रही है, यानी कि बंटवारा 1947। तो ये मूवी यानी कि देखिए सनी पाल जी की जितनी भी मूवी है ना भैया, बड़े ही फैंटास्टिक वाली, बड़े ही लाजवाब वाली। अपने गदर देखी होगी, गदर 2 देखी होगी, और भी इनकी बहुत सारी मूवी है जो कि सुपर डुपर रही है, और ये वाली जो मूवी है और भी शानदार होने वाली है। यानी कि ये 1947 के टाइम, यानी कि क्या हुआ था बंटवारे के समय, पूरी आपको इसमें हिस्ट्री देखने को मिलेगी। कहते हैं ना कभी कभी आप रीड करते हो बुक, कुछ पढ़ते हो, लेकिन वहां से वो चीजें समझ नहीं आती, लेकिन कुछ चीजें आप वीडियो देखते हो, मूवीज देखते हो, वहां से आपको मतलब एकदम आपके दिमाग में वो मेमोरी वो सेट हो जाती है, आपको हमेशा याद रहता है कि अच्छा ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो ये मूवी देखिए हर किसी को देखना चाहिए, बच्चे बच्चे को देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि यानी कि बंटवारे के समय 1947 में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। यानी कि 15 अगस्त से पहले, यानी कि 14 अगस्त को ये मूवी रिलीज हो रही है, इसीलिए रिलीज हो रही है कि ताकि आप देखें, तभी आपको 15 अगस्त यानी कि कैसे, यानी कि हमारे देशवासियों ने जान गंवाने के बाद हमें आजादी मिली थी। तो ये मूवीज डेफिनेटली देखने चाहिए श्रोताओ। अभी फिलहाल के लिए एक और गाना आप सभी के बीच, ये भी गाना भैया दिलजीत सिंह का ये गाना होने वाला है, दिलजीत दुसांझ जी का, बहुत ही शानदार गाना, इसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद लौटते हैं। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है जी, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है, ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो, ठीक है जी।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

क्या बात है जी। धुरंधर मूवी से आपने गाना एंजॉय किया श्रोता। और समय की बात करूं तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:07 दिस साइड आर्जेरीना, और आप सुन रहे हैं इवनिंग मस्ती शो। तो बिंदास वाला शो है श्रोताओ, बस आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। और आज का डे हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज है 3 अगस्त। देखिए सावन का पहला यानी कि व्रत, और साथ ही साथ आज मनाया जाता है, यानी कि गर्मियों का मौसम हो और तरबूज की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। आज मनाया जाता है नेशनल वाटरमेलन डे, यानी कि राष्ट्रीय तरबूज दिवस। तरबूज सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें लगभग यानी कि 90% से ज्यादा अधिक यानी कि पानी पाई जाती है इसमें, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है तेज गर्मी में, या फिर शरीर को ठंडक देता है, पानी की कमी बॉडी में नहीं होने देता है। तरबूज में यानी कि विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम, और साथ ही साथ लाइकोपिन भी इसमें पाया जाता है, जो कि इसमें भरपूर पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। ये हमारी त्वचा, आंखें और दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है, इसीलिए इसे वजन यानी कि जो आपका वेट है उसको संतुलित रखता है। तो आप सोच रहे हैं कि थोड़ा वेट कम करना है, लेकिन वेट कम करने में ऐसा क्या खाए क्या नहीं खाए, तो वाटरमेलन हमारे लिए बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, जो कि आप डाइट पे भी हैं और अपने डाइट में शामिल करें वाटरमेलन। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि आपके अंदर से, आपकी बॉडी के अंदर से पानी की कमी नहीं होने देगा। और देखिए जब भी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है ना, तो गर्मी भी हमें उतना ही लगता है। तो सिर्फ वाटरमेलन ही नहीं बल्कि वाटर भी आपने पीना ही पीना है। दिन में कम से कम 2 बोतल तो ऐसा है कि भाई खाली कर दीजिए उसको। बहुत से ऐसे हैं कि दिन भर में यानी कि 2 गिलास पीते ठीक है यार चल जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जितना आप कम पानी पियेंगे आपके सर में पेन होना शुरू हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि यार एसिडिटी हो रहा है, ये हो रहा है। हमारी बॉडी में अगर चीजें जब कमी होगी तो दर्द बीमारियां तो शुरू होंगी। जितना आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे आप उतना ही आपका सेहत सही रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो अगर आपने आज तक अभी तरबूजा नहीं खाया तो ये मौका मत गवाइए, जरूर खाइए, मीठा तरबूजा खाइए और खुद को हाइड्रेट रखिए। और इसके लिए मतलब जब आप खाएंगे ना आनंद की अनुभूति होती है। आई नो कि उसमें बीज बहुत ज्यादा होता है, मतलब मेरे को भी बीज निकालने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं यार ये स्किन के लिए अच्छा होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो इसके लिए इसको हमें खाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आजकल के जो बच्चे हैं जेंजी हैं उनको तो ये जरूर देना चाहिए। आप लंच में दीजिए, सुबह के नाश्ते में दीजिए, लेकिन उनको खाने के लिए जरूर दीजिए। और यानी कि जो बुजुर्ग है उनके लिए नहीं, कि कहते हैं बिना दांत वाला यानी कि जो फ्रूट है, तो दांत ना भी होना तब भी आप आराम से खा सकते हैं, बस बीज ही निकालना होता है इसमें से। चलिए श्रोता लौट कर आते हैं और मैसेज भी आए उनको भी शामिल करते हैं। ये मैसेज आता है हमारे पास बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप, और इनका कहने कि हम आपके प्रोग्राम में शामिल है। थैंक यू जी, शामिल रहिए। और फिलहाल अगला गाना भी बहुत ही शानदार होने वाला है, सो इस गाने को सुनते हैं, यानी कि संस्कारी तुलसी कुमारी मूवी से ये गाना।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हेलो जी, कट वाली इवनिंग है आज रीना के साथ। और समय की बात करो श्रोताओं, तो समय हो चुका है यानी कि 6:17। और आई होप कि अब किचन की जो तैयारियां है वो शुरू हो गई है, क्योंकि भैया आज बहुतों का फास्ट भी है, तो पेट में ओहो चूहे कूद रहे होंगे तो इसीलिए सोच रहे भाई चलो यार बस किचन में चलते हैं, कुछ पकवान बनाते हैं और भोग लगाने के बाद खुद भी ग्रहण करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अब मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी कहानी की जिसे सच में सुनने के बाद लगेगा आपको कि नहीं यार ये चीज होना चाहिए। कहते हैं सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसे पूरा करने का जो हौसला है बहुत कम लोगों में होता है। जब और साथ ही साथ जब बेटियां ठान लेती है ना कि भाई मुझे अपने देश का नाम तो रोशन करना ही करना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो वो अपने देश का नाम रोशन भी करती है और चाहे राह में कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए उसको भी वो पार करने का हुनर हिम्मत रखती है। आज एक ऐसी ही खिलाड़ी की कहानी हम आप सभी को बताने वाले हैं, यानी कि चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो लेकिन परिवार वालों ने उनको साथ दिया। माँ ने गहने बेचे तो पिता ने ताने सुने सबके कि क्या करा रहे हो बेटी को, उनका उम्र है शादी करने का तो उनको शादी मत करो, मतलब उनको देश के लिए मतलब उनको आगे मत बढ़ने दो, बस शादी कर दो। हमारे देश में यही तो है, हम बेटियों को यानी कि जब देखते वो 20-25 साल की हो गई तो शादी कर दो यार, क्या ही करना है, अगले घर ही जाना है, यहाँ भी खाना पकाना है वहां भी खाना पकाना है। अरे देखिए बेटियां सिर्फ खाना पकाने किचन तक ही सीमित नहीं है आजकल, वो आगे भी बढ़ रही है, किचन से आगे भी निकल रही है, अपने देश का नाम रोशन भी कर रही है। आज के आप टाइम में देख लीजिए, सर्च करके देख लीजिए, पहले के टाइम में क्या था, विमेन क्रिकेटर कोई नहीं देखता था, क्रिकेट कहता था नहीं यार लड़कियां खेल रही है, लड़कों का कौन मैच देखेगा यार। जब उन्होंने बाजी मारी तो हर किसी के तालियां बजने लगे। तो इसीलिए पहले आप उनको आगे तो बढ़ाइए, मतलब आप अपने मेंटेलिटी आपने ये बना रखी है कि नहीं यार शादी कर देंगे, शादी करने बच्चे पैदा करने घर का खाना बनाना है, वो उससे आगे भी कर सकती है, उसे आगे बढ़ाइए। आज के टाइम में बेटियां कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। तो आज एक ऐसी कहानी जो हर किसी को भाई करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना आज के टाइम में ना देखो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैं बात कर रही हूँ यामिनी मौर्य की, जिन्होंने इस टाइम इतिहास रचा है, अपने देश के लिए काम किया है और आगे बढ़ी है, और अपने नाम उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम।

कोई भी गेम हो, बस अपने लड़के को आगे बढ़े, यानी कि CWSG में यानी कि उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो लड़की को बस पुश करिए। ये नहीं कि आप उसको पुश भी कर रहे हैं, ऊपर से आप गिराने का भी, मतलब आप ही कह रहे कि ताने दे रहे कि ये नहीं करना वो नहीं करना। तो सबसे बड़ी मैटर होता है कि आपकी फैमिली कितना आपके साथ है। अगर आपकी फैमिली साथ है तो फर्क नहीं पड़ता यार दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। तो बस मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए उनको,

हाँ जी, क्या बात है जी। जैश में है ना, यह इनके गाने तो सच बताऊं बड़े ही फैंटास्टिक वाले होते भैया। और समय की बात करूं तो 6:28 हो चुके श्रोताओं, और इसी बीच लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल। लेकिन कड़क सवाल शामिल करने से पहले दो मैसेज हैं, उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद सारिक अली जी, गुड इवनिंग। रीना जी, वेरी गुड इवनिंग। सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। आपका शो इवनिंग में स्टेज सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो। थैंक यू सो मच। अगले मैसेज की बात करूँ तो हर हर महादेव। रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे है सर, हर हर महादेव। महादेव आपको हमेशा खुश रखे, आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे। हर हर महादेव। सर, आपकी भी जिंदगी में महादेव की कृपा है, वो हमेशा यूं ही बरसती रहे। आपके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, ढेरों सारी खुशियां हो, और जो आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ आपको हर वो चीज दे। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी, मुंबई महाराष्ट्र से आपको सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। चलिए, फिलहाल आज का कड़क सवाल भी भैया बहुत ही शानदार है, जो कि हमारे सामने होता है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, है ना। इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हमारी आंखों के सामने होते भी हमें कैसे नहीं दिख पाता है वो, है ना। तो चलिए आज देखते हैं कौन है हमारी आंखों के सामने जिसको हम देख नहीं पाते हैं। तो आपने नाम बताना है, यानी कि सो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज जो दिमाग की बत्ती है ना, वो अच्छे से जल नहीं पाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, जो आपके सामने है पर कभी दिखाई नहीं देता है, आखिरकार क्या आपके सामने होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, बट हम सोचते जरूर है उसके बारे में। जब भी सुबह की शुरुआत होती है तो दिमाग में यही आता है, यार क्या होएगा क्या नहीं। तो आखिरकार क्या है वो चीजें जो आपके सामने होती हैं लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं। सोचिए और मैसेज करिए। दिलजीत सिंह की आवाज में एक और शानदार गाना, और उसके बाद और भी ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं। लेकिन गाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

एक बार सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि पावन सावन का महीना शुरू हो गया है, यानी कि हम बात करेंगे योगी जी की पाती। सावन का महीना भी अद्भुत है। रिमझिम फुहारे, शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता, जहाँ नजर डालो हरियाली, प्रकृति की सुरमयता क्या होती, सावन में ही पता चलता है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सावन स्पेशल पाती में है विशेष संदेश। योगी जी कहते हैं, यहाँ पवित्र माह सेवा, प्राकृतिक और साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रतीक है। प्राकृतिक से जितना ले उतना ही उसे लौटाने का संकल्प भी होना चाहिए। सेवा वाटर, सेवा अर्थ, पानी की एक भी बूंद नहीं हो व्यर्थ। तो इस मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मैसेज के लिए आज जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, सभी मेरे साथ बोलिए थैंक यू योगी जी। और सुनते रहे एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

क्या बात है जी, बम भोले हर हर महादेव। गुड वाली इवनिंग है जी, आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो समय यानी कि 6:39 हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले, यानी कि आज तो मुरादाबाद के बच्चे हैं ना, उनके आज तो बल्ले बल्ले हो गए हैं ना, यानी कि 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी आज छुट्टियां जो पड़ गई है, यानी कि सावन का पहला सोमवार और उनकी छुट्टियां पड़ गई है। और बहुत जगह जगह जैसे कि हरिद्वार, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, यानी कि बच्चों की जो छुट्टियां पड़ चुकी है वो भी 14 अगस्त तक। तो उनके भी मजे मजे हो गए ना, यानी कि भगवान भोले जी ने कहा कि चलिए मैं आ रहा हूँ यानी कि धरती पर, तो आप भी बच्चे आनंद लो, एंजॉय करो और कांवर यात्रा को देखते रहो। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जहां बहुत लाउड वाले जो डीजे हैं उसके आगे आपने नहीं जाना, क्योंकि उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि आपके कान को, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे भैया कि क्या ही हालत हो जाएगी। तो इसीलिए आप जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सावधान रखिए और ज्यादा लाउड वाले डीजे के पास ना जाइए। अदरवाइज जैसे मेरे कान की अभी हालत है कि मेरे को बहुत अजीब फील हो रहा है कान में, असल मैं ज्यादा लाउड वाले कुछ चीजें सुन ही नहीं पा रही हूँ, कल रात से जो ऐसी हालत हो गई है मेरे कान की। तो इसीलिए अपना भी ध्यान रखिए, बच्चों का खासकर ध्यान रख लिए, इसीलिए बच्चों की छुट्टियां पड़ी है ताकि बच्चे उनके कान पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और ट्रैफिक तो इस टाइम बहुत ज्यादा होती है भैया, अगर आप हमारे प्रकाश नगर चौराहे की तरफ से आएंगे शाम को तो रोना पड़ जाएगा आपको, सच बता रही हूँ। जहां जहां से कांवड़ यात्राएं हैं, यानी कि एक तरफ की रास्ता चालू है, एक तरफ यानी कि हम सभी के लिए हैं जो ऑफिस से जा रहे हैं, और एक तरफ यानी कि कांवड़ियों के लिए, तो मतलब इंसान रोने लग जा रहा है कि भाई क्या किया जाए, किस टाइम निकले, यानी कि जो सफर आपका 2 घंटे का है वो ना 6 घंटे लग रहे हैं इस टाइम। तो इसीलिए सोच समझ कर बाहर निकलिए, निकल भी रहे हैं तो लॉन्ग सफर पर, तो भैया सोचिए ही मत जाने के लिए, उसके बाद ही जाइएगा। और साथ ही साथ आज का कड़क सवाल भी मैंने आप सभी से पूछा है कि ऐसा क्या है, मतलब जो आपके सामने भी होता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, क्या हो सकता है इसका आंसर, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही बता पाएंगे। नंबर है 9823789689। चलिए फिलहाल हम सुनते हैं गाना, बहुत ही शानदार।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

बिल्कुल जी, अब सपनों में नहीं हकीकत में हो गया है। आप सोच रहे होंगे नहीं भैया, जिनके घर में एलपीजी सिलेंडर है उनके लिए अब राहत वाले दिन है वो आ गए हैं। यानी कि 1 अगस्त से, यानी कि जो कटौती की बात करूं तो 202 रुपए की कटौती हुई है। साथ ही साथ अगर 19 किलोग्राम के अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो वो सिलेंडर आपको मिलेगी यानी कि 385 रुपए में। तो भैया जिनके घर में भी एलपीजी सिलेंडर है, जो रेस्टोरेंट में है, घर में है या फिर बाहर होटल खोल के रखे हैं, उनके लिए थोड़ी राहत वाले दिन आ गए हैं। तो आप बिंदास रहिए और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। और आज का कड़क सवाल भी बहुत ही धाकड़ वाला पूछा है मैंने। बस ऐसी कौन सा ऐसा क्या चीज है जो आपके सामने होती है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है, बल्कि आपको सामने वाला बताता है यार ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते। तो आप बताइए सोच के, समझ कर, दिमाग की बत्ती जलाकर कि आपके सामने ऐसी कौन सी चीज होती है जो आप देख नहीं पाते हैं। सोचिए, अगली बारी सिर्फ आपकी ही है, आपकी मैसेज की ही बारी है।

बिल्कुल राम जी तो नैया पार लगा ही देते, लेकिन आपको बस विश्वास होना चाहिए। और आर्चरी ने आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। श्रोताओं, समय की बात करूँ तो 6:50 हो चुके हैं और अब रीना लेने वाली यहाँ से फुर होने की इजाजत। लेकिन फुर होने से पहले आप सभी के जो इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ गए ना भैया, उनको भी तो शामिल करना है कि किनका हमारे पास राइट आंसर आया है और कौन है जो थोड़ा कंफ्यूज है अभी भी। आरजे रीना सिस्टर जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अजीत कशाना जी, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कशाना लदावली मुरादाबाद से। ये हमारे साथ अगले श्रोता कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद यूपी से, रणवीर सिंह जेठालाल जी। और इनका कहना है कि हम आपके साथ यानी कि 5,600 से जुड़े हुए हैं। क्या बात है सर। सर मुझे लगता है कि मैं उस टाइम तो पैदा हो गई थी या नहीं हुई थी। रिसर्च करना पड़ेगा। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो ईदगाह मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं सैफी अहमद अंसारी जी, रईस दुला इनके जो दोस्त है वो कनेक्ट होते हैं इन्हीं के साथ और गुड इवनिंग पहुंचाते हैं। रीना मैम आपको, और कैसे हैं आप, बहुत आपके हाल चाल कैसे हैं जी? बहुत अच्छे हैं। और आपका शो लाजवाब आप पेश करती हैं, इवनिंग मस्ती शो सुनकर मजा आ जाता है, बेस्ट ऑफ द शो। और गाने आपके बड़े फैंटास्टिक वाले होते हैं, थैंक यू सो मच। लाल और आगे बढ़ू तो हमारे पास ये कनेक्ट होते हैं इरशाद हुसैन जी, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से। और इनका कहना है कि राइट आंसर है फ्यूचर जी, जो हमारे सामने होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। अच्छा जी, मतलब दिखाई नहीं देते है। मुझे लगता है कि मुझे दूरबीन लगा के देखना। अगले मैसेज की बात, ललिता जी का कहना है कि भगवान है, विश्वास है, भविष्य है। ओके चलिए, इन्होंने दूसरी बार आंसर मतलब सही दिया है नहीं दिया वो तो अभी नहीं मैं रिवील कर सकती, लेकिन ये पहले कंफ्यूज थी, फिर इनके जो दिमाग की बत्ती वो जली है तो इन्होंने बताया कि भविष्य है। और इनका कहना है कि भैया बारिश आ चुकी है। ओ माय गॉड, बारिश आ चुकी है तो कोई बात नहीं, रीना टेंशन नहीं लेती है। यानी कि देखिये सावन का पहला सोमवार है और बारिश ना है ऐसा हो ही नहीं सकता, इंद्र देव भगवान प्रसन्न ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और आगे मैसेज की बात करूँ तो दीपक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनका कहना है कि जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर होता है भविष्य। आगे अगर मैं बात करूँ तो शालिनी जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, इनका कहना है कि राइट आंसर होता है भविष्य। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये पिंटू जी कनेक्ट हो गए हैं मुरादाबाद, यानी कि ये बुद्ध विहार से कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है भगवान जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ कनेक्ट हो गई है पूनम जी, इनका कहना है कि राइट आंसर होता है हवा, जो हमारे सामने होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, पता चले कि हम उड़ भी जाए तब भी हमें दिखाई नहीं देगा, है ना जी। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे पास राहुल जी कनेक्ट हो गए हैं, इनका कहना है कि मैडम हवा है जो हमारे सामने से गुजर जाती है पता नहीं चलता है, लेकिन सर आपके बाल तो जरूर हिल जाते होंगे ना तो पता चल ही जाता है कि हवा आई है या नहीं आई है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हमारे पास पहुंचाया है सबसे पहले यानी कि मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी ने राइट आंसर पहुंचाया है। भैया इन्होंने सोचा है फिर मैसेज किया है और इनका आंसर राइट होता है, यानी कि हमारे सामने फ्यूचर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट आपके दूसरे इंसान जो होते हैं ना रहते वो गैस कर लेते बहुत जल्दी कि आप फ्यूचर में ये बनोगी, आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप इस फील्ड में जाओ आप और अच्छा कर पाओगी, लेकिन वो चीज हमें नहीं दिखाई देता है, मतलब बोल ही नहीं पाते हम कि हाँ यार ये भी हो सकता है। तो मतलब बहुत सी चीजें जो हम समझ नहीं पाते लेकिन दूसरे इंसान जल्दी से गैस कर पाते हैं। और इसी के साथ रीना लेती हैं यानी कि आप हो चुके हैं विनर इरशाद हुसैन अंसारी जी, तो अब आप इंजॉय करिए, जो आपको पसंद है वो खाइए, लेकिन पेमेंट आपको अपनी जेब से करने पड़ेंगे। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह एक और महादेव का भजन, और इसी के साथ बाय बाय।

0: 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भिखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा से के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड।

0: लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिक करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले अपना नाम बता देता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन, मेरी प्यारी दोस्त
1: आरजे रीना।
0: यस आरजे रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है और सबसे मजेदार बात, स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहे है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए आखिर यह योजना कैसे काम करेगी।
1: जरूर, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
0: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
0: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
1: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
0: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
1: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
0: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
1: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
0: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
1: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
0: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
1: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
0: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
1: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
0: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों
1: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
0: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार होंगे
1: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
0: दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गांव या शहर तक सीमित था अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
1: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
0: सही कहा आपने आरजी रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा
1: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करे, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखे और कैसे ब्रांडिंग करे और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाए।
0: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
1: बिल्कुल, कल्पना कीजिए किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाइयां, स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
0: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
1: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
0: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
1: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
0: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
1: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
0: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
1: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
0: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
1: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए।
0: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे तभी सच मायनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।
1: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
0: तो मैं हूँ आरजे आनंद
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना।
0: फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार और आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अदाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा दादा।
1: कहते हैं कि ये दुनिया के सारे रंग हमारी आंखों से ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर यही नजरें धीरे धीरे धुंधली होने लगे और हमें इसका पता भी ना चले तो क्या होगा। डायबिटीज यानी शुगर सिर्फ दिल, किडनी या शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आंखों की रोशनी पर भी गहरा असर डालती है। आज हम इसी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद। प्रोग्राम में आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और आज आपकी आंख के पर्दे के विषय में तमाम छोटी छोटी बातों पर आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू FM मुरादाबाद। जोरदार तालियां। हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं।
2: थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इस चीज के लिए, और आई थिंक ये बहुत जरूरी है हमारे सारे
1: जितने भी लिसनर्स हैं, भी ऑडियंस है, बिल्कुल
2: लिसनर्स है, हाँ जी, हाँ उन लोग के लिए बहुत जरूरी ये मुद्दा है जो कि पता होना चाहिए।
1: क्योंकि मैम होता क्या है ना ईशा मैम, मैं आप सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि आंखों को सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि आंखें जो हैं सिर्फ उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, काला मोतिया और मोतिया बिंद सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें पता होती है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिन पे हमें बात करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम बात करने वाले आंख के पर्दे के बारे में जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी आंखों का। तो आज इस पर ही बात करने के लिए डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में है। सो मैम मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा आपको हमारे FM स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है।
2: बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है।
1: पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लिसनर्स को अपने बारे में बताएं।
2: तो मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ और CL गुप्ता में काम करती हूँ मुरादाबाद। और इसमें बेसिकली रेटिना के बारे में लोगों को पता नहीं होता, रेटिना होता है आंख का पर्दा। तो पर्दा सबसे जरूरी अंग इसलिए है क्योंकि जो भी दिखाई देता है वो उसी के वजह से दिखाई देता है। अगर पर्दा सही नहीं रहेगा तो शायद लोग कुछ ना देख पाए। तो इसलिए पर्दे के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। कोई भी आंख के बारे में सोचता है तो हर कोई सबसे पहले मोतियाबिंद ही सोचता है। सिर्फ मोतिया ही आंख का भाग नहीं होता है, और भी जरूरी हिस्से होते हैं जिसमें से सबसे जरूरी अंग जो है वो है पर्दा। और इसमें काफी सारी बीमारियां होते हैं। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर है, पर इसमें और भी बीमारियां होती है जो कि हम वो वक्त के साथ पता लगता है।
1: बिल्कुल। अच्छा मैम सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जरा हमारे लिसनर को।
2: हाँ जी, तो बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम में ही लिखा है कि डायबिटिक मतलब जो भी लोगों को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो

0: होती है, बीमारी होती है, वो चीज पर्दे में भी असर करने लग जाती है। तो इसको देखने के लिए हमें पर्दे का ही चेकअप कराते रहना चाहिए। तो ये पर्दा क्या है इसको समझाने के लिए मैं यही कहूंगी कि जैसे मान लीजिए एक कैमरा होता है, कैमरा का जो आगे का शीशा होता है वो तो हो गया आपका लेंस, जिसको हम मोतिये के लिए बोलते हैं। पर उसके बाद भी जब हम फोटो खींचते हैं तो जो फिल्म में सब कुछ कैप्चर होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर फिल्म ही नहीं हुई तो आगे फोटो भी नहीं निकलेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो फिल्म है यही हमारा पर्दा होता है, यही हमारा रेटिना होता है। तो अगर यही नहीं रहेगा तो आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें डायबिटीज में सबसे जरूरी चीज जो है वो है पर्दा, वही अफेक्ट होने लग जाती है। इसलिए हमें पर्दे का चेकअप कराते रहना चाहिए और उसी से ही हम डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियों को पकड़ सकते हैं।
1: सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज आपका साथ निभा रहे आरजे आनंद और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे एक और सवाल के लिए, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
2: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
3: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स। तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: ब्रेक के बाद वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आनंद है, शो का नाम है हेलो डॉक्टर और आज हमारे साथ सील गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज हम। डॉक्टर साहब, मुझे तो सिर्फ अभी तक यही पता था कि आंखों में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आंखों का एक ही डॉक्टर होता है, एक ही स्पेशलिस्ट होता है और आज भी बहुत सारे लोगों को यही पता है। तो क्या जैसे आपने अभी आंख के पर्दे के बारे में बात करी, क्या इसका कोई अलग स्पेशलिस्ट होता है?
0: हां जी बिल्कुल। तो बेसिकली पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं कि मैंने MBBS और अपना MD दोनों ही दिल्ली से करा है। तो MBBS तक तो हम लोग डॉक्टर हो गए, लेकिन MD में हम बनते स्पेशलिस्ट। जब मैं बनी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, जिसे हम बोलते हैं आंखों की डॉक्टर, पर उसके बाद भी एक सुपर स्पेशलिटी होती है जिसका हम फेलोशिप करते हैं, वो मैंने नारायण नेत्रालय बैंगलोर से किया है। वहाँ पे मैंने पर्दे का पूरा स्पेशलाइजेशन अपना करा, जो कि 2 साल की और होती है स्पेशलाइजेशन।
1: ओके, तो मैम मेरा यही क्वेश्चन था आपसे अभी, आपने बहुत अच्छे से अपने बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा ये बताइए मैम कि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आईज के बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, क्या मुझे तो नहीं पता था, आप जैसे आंखों के पर्दे की स्पेशलिस्ट हैं अलग से, तो हमारे लिसनर्स को तो ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था अभी तक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या सच में अलग अलग आंखों में जो समस्याएं होती हैं उसके अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं?
0: हाँ जी,
1: जैसे कॉर्निया के अलग हो गए, मोतिया बन के इस तरीके से?
0: हाँ जी बिल्कुल। तो जो मैं ये फेलोशिप की बात कर रही थी, यहीं पर ही आके हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, जहाँ पे बेसिकली कॉर्निया होता है जिसको हम पुतली के डॉक्टर बोलते हैं, बाकी मोतिया का तो होता ही है, उसके अलावा काले मोतिये का अलग होता है, और फिर हम पर्दे के डॉक्टर हो गए, ऐसे और भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं जिसमें लोग करते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आंख का डॉक्टर होने से कंप्लीट हो गया, आंख का डॉक्टर मतलब वो सिर्फ MD है, पर उसके बाद जिसने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है वो जाके फाइनली एक सुपर स्पेशलिस्ट बनता है, जैसे मैं पर्दे की डॉक्टर।
1: ओके, सो लिसनर्स आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आंख में कोई भी समस्या है तो उसका एक डॉक्टर नहीं है, हमारी आंखों में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अलग अलग स्पेशलिस्ट है, जैसे आंख का पर्दा, अभी उसकी स्पेशलिस्ट हमारे बीच में मैम मौजूद है। मैम, क्या हर डायबिटीज के मरीज को ये बीमारी हो सकती है और या फिर कुछ लोगों में इसका खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है?
0: तो ये जरूरी नहीं है कि हर डायबिटीज के मरीज को ही ये बीमारी हो, पर हर डायबिटीज का मरीज बिल्कुल एक रिस्क में जरूर होता है, उसको ये डायबिटिक रेटिनोपैथी बनने का रिस्क जरूर हो सकता है।
1: ठीक है,
0: पर जो कुछ मरीज जिनमें ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है वो तब जब या तो उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहे, सही ना रहे, बहुत लंबे समय तक उनको शुगर रहे, और उसके अलावा उनको अगर BP की भी दिक्कत रहती है, साथ में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, और भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है।
1: ओके, तो मैम इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे किसी को कैसे पता चले, या ये बिना लक्षण के भी बीमारी बढ़ सकती है?
0: हाँ जी बिल्कुल बढ़ सकती है। एक्चुअली इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, ये शुरुआत होती है माइल्ड और मॉडरेट से, धीरे धीरे वो सीवियर पे पहुंचती है, और फिर उसके बाद सीवियर के बाद की भी कहानी होती है। जो माइल्ड मॉडरेट स्टेज है, हो सकता है ये पेशेंट को पता ही ना लगे, कोई लक्षण ही ना हो, पर इसके बाद जो स्टेजेस पहुंचते हैं वो ज्यादा सिवियर होने लग जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि मरीज सीधा हमारे पास तब पहुंचे जब उसको लक्षण आए और उसकी सिवियरिटी बहुत बढ़ चुकी हो, तो इसीलिए उसको साल में एक बार न एक बार कराना चाहिए पर्दे का चेकअप, क्योंकि ये सारी चीजें पर्दे के चेकअप में ही पकड़ में आती है। शुरुआत लक्षण से नहीं होते, शुरुआत साइंस से होते हैं जो कि हम पकड़ते हैं। वो जरूरी
1: ओके। अच्छा मैम, अक्सर कुछ लोग कहते हैं भाई शुगर कंट्रोल है तो इसलिए आंखें भी सुरक्षित होंगी, तो क्या ये पूरी तरीके से सही है?
0: नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत बार मरीज तो अपना शुगर नाप रहा है लेकिन उसको नहीं पता उसके पूरे दिन भर में कितना वेरिएशन हो रहा है। दूसरी चीज, कुछ कुछ टेस्ट भी होते हैं जो ये बताते हैं एवरेज शुगर कंट्रोल कितना है, वो भी कराते रहना चाहिए लोगों को। पर उसके बावजूद भी अगर सब कुछ सही भी चल रहा है, अगर मरीज को बहुत लंबे समय से शुगर है और साथ में जैसे मैंने बताया बीपी और इन सब की भी दिक्कत है, तो भी पर्दे में दिक्कत आना शुरू हो सकती है। इसलिए सिर्फ शुगर कंट्रोल रहने से ही वो चेकअप ना कराए ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, उनको हमेशा साल में एक बार चेकअप कराते रहना चाहिए।
1: ओके, अच्छा मैम अगर बात करें इनकी डाइट की, इनके खान पान की, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए?
0: देखिए, शुगर के मरीज को ऑब्वियसली शुगर कंट्रोल तो रखना ही है, तो उनको अपने शुगर और कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है उसको कम करके रखना होगा। जितना हो सकता है अगर वो प्रोटीन्स बढ़ाए और गुड लो कार्ब में रहते हैं तो ही उनको फायदा देगा। बाकी उनको डेफिनेटली एक न्यूट्रिशनिस्ट और अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहना चाहिए अपने डाइट के लिए, और जितना हो सके अपना शुगर कंट्रोल में रखें।
1: ओके, सो आई होप लिसनर्स आज आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी जो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल 9837896896, हमारे स्टूडियो का नंबर है। अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना सवाल हमें जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करते हैं तो हमें भी फॉलो कीजिए। हमारा ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के नाम से। आनंद के साथ है प्रोग्राम में आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर ईशा आचार्य जी, आज उनसे ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं, आंख के पर्दे के ऊपर तमाम सारी बातें हो रही है। और मैम इसी बीच में आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको अपनी आंखों की जांच कब और कितने समय में करानी चाहिए और ये कितनी इंपॉर्टेंट है?
0: हाँ जी, तो ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डायबिटीज सबको लगता है शायद एक उम्र के बाद आती है।
1: हाँ जी मैम, और ये जरूरी है जानना कि किस एज में यू नो ये हो सकती है, ये प्लीज आप बताइए।
0: तो मेनली सबको यही लगता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, एक एज के बाद जाके आएगी। वो जो हम बोल रहे हैं वो होता है टाइप 2 डायबिटीज,
1: ठीक है।
0: पर अभी ये भी है कि टाइप 1 डायबिटीज भी एक चीज होती है, जिसमें जो बच्चा होता है, बल्कि शुरुआत में ही ये डिटेक्ट हो जाता है कि उसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा होता है, तो शुगर अपने आप ही बढ़ता रहता है इन बच्चों का। तो इन लोग को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला जाता है, क्योंकि वो इंसुलिन उनको बाहर से देना पड़ता है तब जाके उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे बच्चों को भी डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। अब कब कब चेकअप होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि वो टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 है। टाइप 2 जैसे कि मैंने कहा, एक उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ के आती रहती है। टाइप 2 डायबिटीज वालों को तो जैसे ही डिटेक्ट हुआ उसी टाइम एक बार पर्दे का चेकअप करा लेना चाहिए। जबकि टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उनके शुरुआत के 5 साल में वो डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क इतना नहीं होता है, तो उनको शुरू के 5 साल के बाद जाके एक चेकअप करा लेना चाहिए, भले उसके बाद हर साल एक एक बार चेकअप कराते रहना चाहिए। फर्क क्या है, जो ये यंग लोग हैं जिनमें टाइप 1 डायबिटीज होती है काफी हद तक सिवियर हो सकती है वक्त के साथ, तो उनको भी एक टाइम के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 5 साल के बाद से उनको रेगुलर चेकअप शुरू करवा देना चाहिए, क्योंकि वो भी उतने ही रिस्क में होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के जितना एक टाइप 2 डायबिटिक होगा। तो इसीलिए उम्र की बात की जाए तो दोनों ही यंग या फिर जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं उन दोनों में ही हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग करती रहनी चाहिए।
1: ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, जैसे कुछ ग्रामीण इलाके में लोग होते हैं, शहरी लोग या गांव के लोग, अक्सर जांच को टाल देते हैं कि अभी नहीं, फिर करा लेंगे, बाद में करा लेंगे, तो इस तरीके के जो लोग टाल मटोल करते हैं और ये रिस्क लेते हैं अपनी आंखों के प्रति, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए?
0: ये
1: आप क्या
0: बहुत बने? बड़ा रिस्क है, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो मैं बोल रही हूँ ये अंधेपन तक मरीज को ले जा सकती है। इसलिए इतना इंतजार ना करे कि अंधापन पहुंच जाए और हम उसके आगे जाके कोई ट्रीटमेंट ना कर पाए। इसलिए उसको उसी स्टेज पे पकड़ना है जब वो ट्रीटेबल हो, जब उसका हम इलाज कर सके, तो इसलिए उनको रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराना ही चाहिए, टालने से कोई फायदा होना नहीं।
1: मैम अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए तो क्या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है?
0: हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि इसके स्टेजेस होते हैं, सही स्टेज पे सही इलाज किया जाएगा तो रोशनी आ सकती है। एंड स्टेज तक नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि तब आंख की रोशनी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी आंखों से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कोई भी आप अगर सवाल करना चाहते हैं, तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो के नंबर के जरिए 9837896896 पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैम एक और सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्या मोबाइल, लैपटॉप या लंबे समय तक जो स्क्रीन देखते हैं, क्या उनको ये समस्या और ज्यादा गंभीर उनको हो सकती है?
0: नहीं, इसका रिलेशन लंबे टाइम या स्क्रीन यूसेज से नहीं होता। होता है, इसका प्योर रिलेशन होता है शुगर की वजह से। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब ब्लड शुगर पूरे टाइम तक लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो आंखों की जो रक्त की नसें होती है उसमें सूजन आ जाती है। उसकी वजह से कभी कभी या तो सूजन पर्दे में बहुत ज्यादा आ सकती है, या ये नसें अगर फट जाए तो आंख के अंदर अचानक से ब्लड भी आ सकता है। तो ये सारी वजह होती है जिससे रोशनी अचानक से गिर सकती है। तो इसीलिए हमें चेकअप कराते ही रहना चाहिए, क्योंकि एक बार वही जैसे मैंने बताया, अगर बहुत ज्यादा ब्लड आ जाए और धीरे धीरे पर्दा उखड़ने लगे, वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मुश्किलें बढ़ जाती हैं और रोशनी आने की संभावना भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है।
1: ओके मैम, क्या धुंधलापन भी इन सब चीजों से कनेक्ट है क्या, आंखों में अगर हल्का हल्का सा धुंधलापन आने लगे?
0: तो आंखों का धुंधलापन इसी सबसे होता है। अगर पर्दे में सूजन आ जाए या पर्दे में ब्लड आ जाता है या खून आ जाता है तो धुंधलापन इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके अलग अलग इलाज होते हैं जो हम करते हैं।
1: ओके अच्छा मैम, सपोज किसी को ये प्रॉब्लम है और उसको ये पता कैसे चले कि उसको ये समस्या हो रही है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं?
0: तो जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत स्टेज में तो हो सकता है सिम्टम्स हो भी नहीं पेशेंट को, और धीरे धीरे सिम्टम्स आना शुरू होता है मतलब ऑलरेडी बात बिगड़ चुकी है। तो धुंधलापन से ही शुरुआत होती है। कभी कभी काले तिलमिले जैसे अचानक से दिखने लग जाए तो इसका मतलब आपकी आंख में ब्लड आ रहा है, ये शिकायत हो सकती है। धुंधलापन, काले तिलमिले दिखना, ये सारी चीजें असर करा सकती है।
1: डॉक्टर साहब, एक तो हमारे भारत में मैं कहूंगा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी आंखों में कुछ भी होता है ना, हम तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम कोई भी एक ड्रॉप खरीदते हैं, आई ड्रॉप, और उसको अपनी आंखों में डाल लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना पूछे। तो क्या ये करना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है और देखा भी है कि मरीज जाके बस फार्मेसिस्ट से पूछ लेते हैं और दवा डालने लग जाते हैं। वो नहीं जानते किस दवा का अपना खुद का साइड इफेक्ट होता है। वो तो लंबे समय तक डालते रहते हैं, अपना चेकअप डालते रहते हैं, पर तब तक में वो जो दवा है वो अपना साइड इफेक्ट कर चुका होता है। और जब वो हमारे पास आते हैं, बहुत बार उन्हें काले मोतिया की शिकायत या उनकी पुतली खराब होने की शिकायत, ये सारी चीजें भी हो सकती। तो ये चीज बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। उनको कुछ भी दिक्कत हो सबसे पहले किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए और उस हिसाब से ही दवा चलानी चाहिए।
1: ओके मैम, सो दोस्तों अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम में आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर।
2: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
3: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे एफएम मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहां आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप जुड़े हुए हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के साथ। गाड़ी अगर चला रहे हैं तो आराम से चलाइए, ध्यान सड़क पे और कान रेडियो स्टेशन पे लगाइए। हाँ जी, फिलहाल शो चल रहा है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इसमें हम ढेर सारी बातें कर रहे थे आंखों के पर्दे के बारे में, और अब जाने का समय हो गया है, बहुत सारी नॉलेज वॉलेज हमने शेयर कर दी। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, आपने बीच में गाने भी सुने मुझे पता है। वेल वेलकम बैक है मैम, आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, हमने आपसे ज्यादा सवाल तो नहीं पूछ लिए ना? हमारे लिसनर कह रहे होंगे ईशा जी को परेशान कर दिया आज आनंद ने, इतने सारे सवाल पूछ डाले। वेल मैम, सारे क्वेश्चन वो हैं जो हमारी ऑडियंस से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा क्योंकि अब चलने का समय हो रहा है। फिर जाने से पहले मैं चाहूंगा जितनी भी डिस्कशन हमने की अगर इनमें से कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में आप बताना चाहें।
0: हाँ जी बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में या तो सूजन बन सकती है या ब्लड आ सकता है या पर्दा उखड़ भी सकता है, तो इनके अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर पर्दे में सूजन वगैरह आता है तो डॉक्टर आपको आंख में इंजेक्शन लगाने के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। जो ब्लड और ये सब आता है कभी कभी उसमें हमें आंख में लेजर भी करना पड़ता है, पर कभी अगर एंड स्टेज तक पहुंच रहा है और पर्दा उखड़ने की स्थिति आ रही है या जो ब्लड आया है वो साफ हो नहीं रहा है तो हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है जिसे हम विट्रेक्टमी ऑपरेशन कहते हैं। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली ब्लड शुगर कंट्रोल और ये सब आपको ध्यान देना ही है, तो ये हमारा फुल ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं।
1: ओके, और मैम चलते चलते कोई एक संदेश जो आप देना चाहें हमारे तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त आपको मुरादाबाद में सुन रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों को जो डायबिटीज से पीड़ित हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी जांच नहीं कराई, उनको आप क्या संदेश देंगे?
0: देखिए, अभी सारी जनता के लिए आंखों का चेकअप का मतलब होता है कि बस चश्मे का नंबर ले ले और उनका काम हो गया। तो यही मैंने आज पूरे टॉक में अपना बताया है कि सिर्फ चश्मे का नंबर या सिर्फ मोतियाबिंद, यही दो चीजों से आंख की बीमारियां नहीं होती है, और पर्दे की प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी प्रॉब्लम भी होती है मरीजों को। तो इसलिए साल में एक बार चेकअप होते रहना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपकी शुगर की दिक्कत बढ़ गई है तो कुछ डॉक्टर आपको 3 से 6 महीने महीने पे भी बुला सकते हैं, और अगर आपका इलाज भी शुरू हो गया है तो हो सकता है आपको हर महीने भी बुलाया जाए। तो इसलिए इस चीज को नजरअंदाज नहीं करनी है, आपको चेकअप कराते रहना है। और जब भी आप किसी जनरल ऑप्थल्मोलॉजिस्ट पे भी जाएं जो सिर्फ जनरल चेकअप कर रहे हैं, उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है। पर्दे के चेकअप के लिए एक बहुत जरूरी संदेश ये है कि वो हम पुतली फैला के करते हैं, एक ड्रॉप डाला जाता है जिससे थोड़ा धुंधलापन रहता है कुछ समय तक, और वो पुतली फैला के ही हमें पर्दा ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो कभी भी कहीं जाए सिर्फ चश्मे का नंबर लेके ना आए, और अगर आप जा रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है, तो आपकी पुतली फैला के प्रॉपर चेकअप की जाए। ये सब चीजें अगर आप भी इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो अगर आपको कोई और डॉक्टर देख रहा है जिसने चेकअप नहीं कर रखा या किसी तरह से मिस हो गया है, आप उनको ये चीज बोल सकते हैं और आपका प्रॉपर थरो चेकअप हो सकता है।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में थी एंड इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से आज हम ढेर सारी बातचीत कर रहे थे मैम आंखों के पर्दे के बारे में। हमने तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर जो आज तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है, एंड आई एम श्योर आप दोबारा फिर से आना चाहेंगे हमारी मुरादाबाद की जनता के लिए फिर से कुछ और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, और ये बहुत जरूरी था कि आपके जनता तक ये बात पहुंचे
1: डेफिनेटली,
0: और वो इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझे।
1: थैंक यू सो मच
0: पांच हमेशा स्वस्थ रहे और वो हमेशा अच्छे से देखते रहे।
1: क्या बात। सो डॉक्टर ईशा चलते चलते मैं आपसे एक छोटी सी एडवाइस लेना चाहता हूँ पूरे मुरादाबाद, आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी चलते चलते?
0: हाँ जी, तो मैं एक ही लाइन में इस चीज को समाप्त करना चाहूंगी, दैट राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम कैन सेव योर साइट।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। एंड गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए ऐसे ही आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। ये तो चल ही रहा था, बाकी रेडियो स्टेशन भी सुनते रहिए गाइज, फिर मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, फिलहाल के लिए घड़ी की सुई मुझे टिक टिक करके इशारा करेगी आनंद अब तेरा जाने का समय हो गया है, बहुत बातें होगी। तो चलिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, पानी पीते रहिए और खूब सारा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। एक आंखों का बढ़िया गाना छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं मत जाइए, बाय बाय।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: रही है भारत सरकार, 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पापा ये सब?
6: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
5: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
6: अरे ये कैसे रह गया?
5: पैसे गए?
6: नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक

0: संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
1: दादू ये
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सही कह रहा है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कल त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समापन। मुख्यमंत्री ने दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को अपने पुराने उपयोग योग्य कपड़े दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनका पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग की जा सके। दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर अर्पण दान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों के लिए इसमें भागीदारी करना और अधिक सुविधाजनक होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल राजधानी में सतत अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने पुराने और उपयोग योग्य कपड़े अर्पण केंद्रों पर दान कर इस जन भागीदारी अभियान का हिस्सा बने।
5: आज का ये अर्पण वस्त्र केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबकी साझी जिम्मेदारी है और मैं ये मानती हूँ कि इस जिम्मेदारी का निर्वाह हम सब लोग मिलके करेंगे। अपने घर से जो भी आपको कपड़ों का सामान नजर आए, भगवान जी के वस्त्र दें तो वो ले जा करके अर्पण केंद्र पे दीजिए और उस समाज को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, जिससे किसी बहन को रोजी रोटी भी मिलेगी और समाज से इस तरह का जो अपविष्ट है, जो गंदगी है, वो भी खत्म होगी।
4: दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली सचिवालय में इस बैठक का उद्देश्य राजधानी को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार राजधानी के लिए ऐसा हरित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रही है जहां उद्योग, तकनीक और पर्यावरण एक दूसरे के सहयोगी बने। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि मजबूत उद्योग और सुरक्षित पर्यावरण दोनों साथ साथ आगे बढ़ें, तभी दिल्ली का भविष्य और बेहतर बनेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के कृषि मंडियों के पुनर्विकास और विभिन्न मंडियों के प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गाजीपुर, नरेला, IFC गाजीपुर आदि से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया और मंडियों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी ली गई। एक रिपोर्ट।
6: बैठक में गाजीपुर में लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे आधुनिक पोल्ट्री मार्केट की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का लगभग 85% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस आधुनिक पोल्ट्री मार्केट में 100 थोक व्यापारियों की दुकानें और 120 प्रोसेसिंग यूनिट विकसित की जा रही है। गाजीपुर फल, सब्जी और फूल मंडी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मंडी में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए 200 मीटर लंबी बाईपास ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा मंडी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से आवारा पशुओं को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में नरेला अनाज मंडी में 2 अतिरिक्त स्टील शेड विकसित करने के प्रस्ताव और गाजीपुर में इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित आधुनिक फूल मंडी परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की कृषि मंडियां किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए इन मंडियों को समय की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुव्यवस्थित और बेहतर आधारभूत ढांचे वाली मंडियां न केवल व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाएंगी बल्कि पूरी कृषि विपणन व्यवस्था को भी अधिक समक्ष बनाएंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। एक रिपोर्ट।
1: उत्कलमणि के नाम से प्रसिद्ध गोपबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा के पुरी में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता, शिक्षा के प्रसार, समाज सेवा और गरीब तथा वंचित वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित गोपबंधु दास ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और मानवीय सहायता कार्यों का भी नेतृत्व किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि गोपबंधु दास ओडिशा की एक महान और प्रेरणादायक विभूति हैं।
7: It's a big moment for the people of Odisha.
8: ये उड़ीसा के साथ साथ पूरे देश के लोगों के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर है। हम सभी जानते हैं कि उत्कलमणि गोपबंधु दास उड़ीसा के एक महान और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उन्होंने पत्रकार, कवि और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। अपने जीवन काल में उन्होंने उड़ीसा और देश के लोगों के लिए ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
7: For the people of Odisha and beyond.
1: दिल्ली में गोपबंधु दास की प्रतिमा लोक सेवक मंडल की ओर से स्थापित की गई है। इस संगठन की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। राष्ट्रीय राजधानी में उनकी प्रतिमा का अनावरण स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दी गई महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। विशाल दास की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
4: दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में आज अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। अस्पताल में उन्नत आपातकालीन विभाग के साथ धर्मशाला और नेत्र रोग विभाग में स्थापित अत्याधुनिक उपकरण सहित अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि चिकित्सक समाज में भगवान के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहीं स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि अस्पताल निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है और यहां के चिकित्सकों की विशेषज्ञता, आधुनिक मशीनें तथा सुदृढ़ आधारभूत ढांचा हजारों मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करा रहा है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज उत्तरी दिल्ली स्थित नजफगढ़ नाला पर नए पैदल पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये नया फुटब्रिज गुडमंडी, राजपुरा, रूपनगर, मुखर्जी नगर और यमुना मार्ग को आपस में जोड़ेगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि ये परियोजना दिल्ली सरकार की नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर सार्वजनिक आधारभूत ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार के दौरान पुलों का कोई व्यापक सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया गया, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण संरचनाओं की समय पर जांच नहीं हो सकी। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के सभी पुल, फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज का व्यापक ऑडिट करा रही है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह राजधानी में सुरक्षित, टिकाऊ और जन केंद्रित आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में कल रात एक मकान की छत गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने दोनों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान तलाशी अभियान भी चलाया गया और मलबे में किसी के भी होने की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करें, घटना की गहन जांच सुनिश्चित करें और सभी आवश्यक कार्रवाई करें। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को मुंडका से गिरफ्तार किया है और उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी आबकारी अधिनियम के दो मामलों में शामिल रहा है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने एक महिला शराब तस्कर को बवाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध शराब बरामद की है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली महापौर कार्यालय को आज सुबह एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई। ये आठवीं बार है जब कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए महापौर कार्यालय द्वारा तत्काल सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न के एक मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ये मामला विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत महिला पहलवानों द्वारा सिंह के महासंघ प्रमुख रहते हुए दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा था। ये मामला 2023 का है जब महिला पहलवानों ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर श्री सिंह के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता तथा कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्र ने सभी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रत्येक जीवन शिवमय हो, प्रत्येक परिवार सुखी रहे और राष्ट्र निरंतर वैभव के पथ पर अग्रसर हो। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कल नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी पदक विजेताओं को भी बधाई दी।
5: हमारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीत करके दिल्ली को दिया, भारत को दिया और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये बात कही है, केवल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि ऐसे गेम्स की मेजबानी भी करनी है। मुझे खुशी है कि दिल्ली ने ये मेजबानी बड़े मन से की है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय खिलाड़ियों के ग्लासगो में यादगार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। और दिल्ली में आज दिनभर मौसम सामान्य रहा। राजधानी के कई क्षेत्रों में दोपहर में हल्की बारिश हुई। अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़े के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: हेलो जी, कैसे हालचाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद, RJ आनंद के साथ हैं आप। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट टॉक शो, जहां पर हमारे साथ कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सुनते हैं। ऑफ कोर्स आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन है, तो यहां पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिल को टच करके जाती है। कुछ ऐसी पर्सनालिटी भी हमारे साथ मौजूद होती हैं जिनके साथ हम ढेर सारी बातें करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल में आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही कमाल की शख्सियत मौजूद है, एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो में, जिनकी आवाज में एक मैजिक है, एब्सोल्युटली मैजिक है भाई। आप सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। एंड मैं जो इतना कनेक्ट हुआ हूँ ना मैम के साथ, वो उनकी वॉइस की वजह से ही मैं कनेक्ट हुआ। एंड आई एम श्योर आप में से भी कई लोग मैम को जानते होंगे और शायद इनका चेहरा आपकी आंखों के सामने भी आ जाएगा जब आप इनकी वॉइस सुनोगे। बहुत सारे इवेंट्स करती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैम की लाइफ में चलती रहती हैं और हम भी उन्हें बहुत टाइम से देख रहे हैं कि इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल, उसके बाद भी इतनी प्यारी स्माइल और इतनी पॉजिटिविटी, मतलब मैं कैसा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बाय द वे मैम का वार्म वेलकम करेंगे। हेलो, वेलकम टू FM मुरादाबाद, ये टॉक शो है जहाँ पर मैं और आप ढेर सारी बात करेंगे। सो कैसे हैं आप? हाउ आर यू मैम?
5: हेलो मुरादाबाद, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और अपने लिए इतना अच्छा अच्छा सुन के तो मैं और भी ज्यादा फाइन हो गई हूँ।
4: एक्चुअली मैम, जब कोई डायनेमिक पर्सनालिटी आपके बीच में हो तो आपको उसके बारे में चार शब्द ऐसे बोलने चाहिए कि उनकी जो थकान है वो भी दूर हो जाए और एक पॉजिटिविटी और अच्छे से आ जाए।
5: Absolutely.
4: So, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मुरादाबाद को आप अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपने स्टाइल में आप बताएं। ऑफ कोर्स आप इतनी अच्छी स्पीकर हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नो डाउट।
5: मुरादाबाद मेरे लिए मेरी गृहस्थी है, मुरादाबाद मेरे लिए एक ऐसी जगह है जिसको मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई भी शहर जो आपको बनाता है, जब आप कुछ बन जाते हो तो आपका फर्ज बनता है रीपे करने का। सो अभी इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं, बहुत सारी टीचिंग्स दी हैं, बहुत सारे सेटबैक्स भी दिए हैं, बट वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट हुए हैं। और इन सब चीजों को सीखने के बाद आज जब मैंने मुकाम पाया है तो अब मेरा टाइम चल रहा है कि मैं इस शहर के लिए कुछ अच्छा करूं।
4: Very
5: मैं
4: nice.
5: इस शहर को वो सब वापस दूं जो इस शहर से मुझे मिला।
4: वेरी नाइस nice. मतलब एक वंडरफुल इनिशिएटिव के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, नो डाउट।
5: ऑफ कोर्स इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो दुनिया की हर जगह पे जहां आप दिल से खड़े हो जाते हैं आपको कुछ ना कुछ करने मिल ही जाता है।
4: राइट,
5: तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मैं जहां खड़ी हो जाती हूं वहां मुझे या तो काम ढूंढ लेता है या मैं काम को ढूंढ लेती हूं।
4: क्या बात है, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये हर किसी में तो नहीं होता मैम, ये ना एक वाइब मैच करने की बात भी होती है और जब अंदर से आपके वो आती है ना एक कि यार अब मुझे ये चीज करनी है तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाती है। राइट,
5: ऑफ कोर्स मैं इसमें ये जरूर कहूंगी कि आपके अपने लाइफ के प्रति जो आपके एथिकल वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं आपको ड्राइव करती हैं इस तरीके का कोई भी काम करने के लिए। इनिशिएटिव जो वर्ड आपने यूज किया, इनिशिएटिव का मतलब ये है कि आप हर चीज की पहल के लिए तैयार रहते हैं।
4: राइट,
5: वो तभी मुमकिन होता है जब आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, सोसाइटी से कमिटमेंट करते हैं कि आप जो भी करेंगे 100% करेंगे।
4: वेरी नाइस nice. बहुत ही बढ़िया। और अभी तक देखिए मैम का नाम नहीं जा रहा ना, मैम की खूबसूरत बातें तो अब तक पहुंच ही रही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर गाने भी चलेंगे और ढेर सारी बातें भी चलेंगी और आज का सेशन भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करो यार। वेल मैम, थोड़ा सा अपने बारे में तो बता दें, अपना नाम बता दें, उतना लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। आप क्या करती है प्रोफेशनली और आप कहाँ से बिलोंग करती है, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स को दीजिएगा प्लीज।
5: वैसे तो मैं ये कहूँ कि मैं हूँ हर प्रोग्राम की होस्ट और आपकी अपनी प्यारी दोस्त गरिमा सिंह। ये मुरादाबाद मैंने कहा मेरी दूसरी गृहस्थी है, तो आप सब मेरे परिवार के लोग हैं। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी जो स्टार्ट की, मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप प्लेस अलीगढ़ है एंड आई बिलोंग्स टू द राजपूताना फैमिली। माय फादर गॉट ट्रांसफर हियर इन मुरादाबाद इन 2000, सो सन 2000 से हम मुरादाबाद में हैं। मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया, मेरा करियर बड़ा डाइवर्सिफाइड है, आप ये सोचेंगे कि ये सब कुछ ट्राई कर चुकी है। सो मैंने अपनी छोटी सी एज में, एज नहीं बताऊंगी वो सही नहीं रहेगा, इसलिए अपनी छोटी सी एज में मैंने बहुत सारे कामों को ट्राई किया। किया है और बहुत सारी फील्ड्स को एंजॉय किया है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया कोरियोग्राफी से। मुरादाबाद में जब हम आए थे तो मुरादाबाद के लगभग सभी स्कूल्स में, सभी कॉलेजेस में मैंने अपनी डांस की क्लासेस दी है। बहुत सारे स्टेज शोज मुरादाबाद में किए और एक बूगी वूगी डांस सीरीज हमने मुरादाबाद में रन की, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे बड़े बड़े स्टेजेस एंड प्लेटफॉर्म्स पर गए। यहाँ से शुरुआत करते करते क्योंकि मेरे फादर दूरदर्शन में थे तो हम छोटे से थे तभी से हम ये स्टूडियोज में जाना, प्रोग्राम्स में बैठ जाना। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितने सारे दूरदर्शन के सीरियल्स और उनके अंदर बैठ चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ। सो वो जो माहौल हमें बचपन से मिला उसने कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए। और हर किसी का एक ऑलरेडी इंस्टिंक्ट इंटरेस्ट होता है जो आपके अंदर इनबिल्ड होता है। वेदर मैंने अपनी एजुकेशन के बिहाफ पर कॉर्पोरेट सेक्टर को चुना, आई हैव वर्कड विद द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, आई हैव वर्कड विद द फाइनेंस इंडस्ट्री एंड नाउ आई एम वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड पीआरओ इन सीएल गुप्ता आई हॉस्पिटल। बट ये सब चीजों के बाद भी जो मेरा दिल है, मेरा पैशन है और मेरा इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं एंकरिंग, इवेंट्स, इन चीजों में है। एक कीड़ा है मेरे अंदर जो कभी मरता ही नहीं है। और बस
4: शायद इसी वजह से आप रेडियो पे तो नहीं आ गए हो, आपके अंदर का जो पैशन वो आपको यहाँ भी ले आया है, सोचिए ना।
5: बिल्कुल आप ये कह सकते हो आनंद। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर मैं अपना एकेडमिक्स देखूं तो मैंने अपनी एकेडमिक और अपनी जो पढ़ाई करी वो काफी हद तक इसी इंडस्ट्री में करी है, इवेंट में। मैंने एनआरएआई से कोर्स भी किया है आरजे का और न्यूज रीडिंग, एंकरिंग एंड इन सब का। बट वो मेरा फर्स्ट एंड प्राइम करियर कभी नहीं बन पाया, पर वो जो एक चाहत थी उसको हमेशा प्लेटफॉर्म भी मिलता रहा। तो चाहे मैं कंपनीज में रही तो मैंने कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट किए, मुरादाबाद में आई तो मुरादाबाद में मुझे हिंदुस्तान न्यूज पेपर्स के थ्रू अनोखी क्लब मिला, मुझे शिखा गुप्ता मैम का साथ मिला। ऐसे बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में जुड़ते गए जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली। और इस शहर में मैंने बहुत काम किया है, अच्छा भी बुरा भी, सब तरह का फीडबैक लिया है, लेकिन हर फीडबैक को मैंने दिल से एक्सेप्ट किया। जहां मुझे काम करने की जरूरत थी वहां खुद पर काम किया और उस निखार के बाद आज शायद मैं इस लेवल पे हूं कि मैं 89.6 एफएम में आपका हिस्सा बन रही हूं।
4: वेरी नाइस मैम। और मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी अनाउंसर से या किसी प्रवक्ता से बात नहीं कर रहा हूं, मुझे तो साक्षात ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई मेरा एंकर बैठा हुआ है, कोई आरजे बैठा है और जो आज हमारे साथ इस शो को और भी ब्यूटीफुल बना रहा है। नो डाउट,
5: ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टेक यू टू दिस जर्नी।
4: एब्सोल्युटली। सो गाइस अभी तो शुरुआत है, आपकी हिम्मत जाइए, रेडियो की सुई में मत घुमाइए। आई विल बी राइट बैक, एक अमेजिंग गाना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इसके सेशन भी बहुत स्पेशल है, बताऊंगा ये गाने के उस पार। सो डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए आरजे आनंद को।

0: Once again, welcome back. You are listening to FM Moradabad show का नाम है टॉक शो. इसमें आज हमारे साथ गरिमा जी मौजूद हैं स्टूडियो में. हमारे शो की गरिमा बढ़ा दी है मैम आपने यहाँ पर आके. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. बहुत मजा आ रहा है आपसे बातचीत करके. एंड आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे होंगे उनको भी डेफिनेटली मजा आ रहा होगा. और आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. नो डाउट हमारे स्टूडियो में जो भी लोग आते हैं वो बड़े धुरंधर होते हैं और उनमें से एक हाफ भी है नो डाउट. बहुत ही धासु पर्सनालिटी है हमारे साथ. सो मैम प्लीज टेल अस कुछ बताएं. और आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं, आपको मजा आ रहा है. यानी पहले ये बताइए स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
1: मैंने आपको बताया ना कि मेरे अंदर ऑलरेडी कीड़ा है इवेंट वाला.
0: Right.
1: और मैं उसी माहौल में बैठी हूँ जो मेरा पैशन है. तो ऑफकोर्स ये मेरे लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट है.
0: वेरी नाइस. और जब हम अपने अपने फेवरेट जॉनर में होते हैं ना तो वहाँ पे वाइब ही अलग होती
1: Perfect.
0: है.
1: Yes,
0: है ना? Yes. और मुझे लगता है कि जब ऐसे लोग मिल जाते हैं तो फिर और ज्यादा जो ना बातूनी सेशन बन जाता है. सो मैम मैं थोड़ा सा आपके करियर के बारे में पूछना चाहूंगा पहले तो, कि आप ये एंकरिंग वाले फील्ड में कैसे आए. मतलब आपको कैसे लगा कि यार मुझे इस चीज में आना चाहिए. आई नो आपके अंदर वो कीड़ा है, पैशनेट है आप उस चीज को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं एक थॉट दिमाग में ट्रिगर करता है ना कि हमें इसमें जाना ही जाना है या हमें ये करना ही करना है. बट करना क्यों है ये भी बहुत जरूरी है. जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा. राइट. तो थोड़ा सा इसके बारे में आप प्लीज आए.
1: ऑफकोर्स जैसा मैंने बताया कि बचपन से हमें एक ऐसा माहौल मिला. मैं टॉकेटिव हमेशा से रही हूं.
0: Right.
1: और दिल से बात करना ये मेरी एक खूबी रही है और ये मुझे बहुत पसंद है.
0: Okay.
1: मैं किसी से भी मिलती हूँ मेरी कभी भी बात करने में या कोई स्पीच देने में कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता. वो हमेशा दिल से होता है.
0: नेचुरल जेन्युइन.
1: यस, नेचुरल एंड जेन्युइन. और ऐसा क्यों हो पाता है उसका रीजन है कि अगर आप कुछ भी अपने जीवन में करते हैं आपकी जो व्यक्तित्व है अगर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, आपकी नीयत बहुत साफ है तो आपके व्यक्तित्व की ये झलक आपकी आवाज में
0: Absolutely.
1: बिल्कुल आएगी.
0: Definitely.
1: म्यूजिक हो, डांस हो, एंकरिंग हो, ये सब कहीं ना कहीं इंसान को खुशी देने वाले, प्लेजर देने वाली चीजें हैं.
0: Correct.
1: और मैं इन सब चीजों को साधना मानती हूँ. तो जो अपनी साधना में प्योरिटी रखता है उसकी प्रेजेंटेशन उतनी ही प्योर पब्लिक के सामने जाती है. एंकरिंग करना मुझे हमेशा से पसंद था. लोगों से बात करना रादर मुझे बहुत पसंद था. और ये बात करने का सिलसिला कब मेरे प्रोफेशन में आ गया ये मुझे भी नहीं पता चला. मेरे सपोर्ट सिस्टम, मेरे लोग, उन लोगों ने ही मुझे इनकरेज किया, मुझे चुना इस चीज के लिए. और जब मुझे चुन के भेजा गया किसी स्टेज पर तो वहां जो पब्लिक थी, वहां जो जनता थी, उसने मुझे एक्सेप्ट किया, दिल से एक्सेप्ट किया. और उन्हीं की वो तारीफें वही मेरा मोटिवेशन बनी इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए.
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. अच्छा मैम जैसे अभी आपने बताया कि एंकरिंग के बारे में आपने भी जिक्र किया और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज जब आप करते हो ना, कोई भी चीज जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हो तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है या आप अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो जो आपने प्रेजेंटेशन रेडी किया ना वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है अगर आप कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तो, है ना. सो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आया. एंड इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे हमारे यूथ हमें सुन रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हमें सुन रहे हैं जो आपकी तरह कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा क्रिएटिव करना चाहते हैं मेरी तरह आपकी तरह, बट वो कर नहीं पाते क्योंकि इसलिए उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है और उसी की वजह से वो पीछे हो जाते हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में. आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ और आप हमारे लिसनर्स को क्या सजेशन दोगे आज.
1: कॉन्फिडेंस जो वर्ड है उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है. अगर आपको स्वयं अपनी चीजों पर या अपनी काबिलियत पर भरोसा है, आप दूसरों के द्वारा जज नहीं किए जाते, खुद को खुद जज करते हो, डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट होगा, अलग से पता चलेगा. अगर हम एंकरिंग लाइन की बात करें, हम जब कोई भी प्रोग्राम होस्ट करते हैं किसी भी मंच पर, चाहे वो बड़ा मंच हो, छोटा मंच हो, वहां पर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है. क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको 3 घंटे 4 घंटे तक अपनी ऑडियंस को बांधने के लिए तैयार करता है. आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी बात में वेटेज लाता है. और ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसे ट्रेट्स होने चाहिए कि आप लोगों के द्वारा सराहे जाएं. अगर आप सच बोलते हैं, आप ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, तो ये सारी चीजें मिलकर के आपके कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बूस्ट करती हैं. और ये कहीं ना कहीं इस लाइन में, प्रोफेशनल करियर में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है. तो जितना भी यूथ है, केवल अच्छा बोलने से आप एंकर नहीं बनते. अच्छा एंकर बनने के लिए जो मुझे लगता है आपके पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी पर आपको काम करना पड़ेगा. आपके दिल में सच्चाई होनी चाहिए, आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए, आपका लोगों के प्रति नजरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. एक एंकर कभी भी किसी को ये जज नहीं करता कि ये अच्छा है या बुरा है.
0: True.
1: आपके सामने जितने लोग बैठे हैं वो आपसे कनेक्ट होने चाहिए और वो कनेक्शन तभी बनता है जब आप दिल से बात करते हो और बिल्कुल प्योरिटी के साथ में आप सामने वालों से आई कॉन्टेक्ट बनाते हो.
0: राइट. आपके कॉन्फिडेंस का राज क्या है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए.
1: मेरे कॉन्फिडेंस का राज ये है कि वसुधैव कुटुंबकम. मैं हर किसी से प्यार करती हूँ. इस पृथ्वी पे रहने वाला हर वो व्यक्ति जो मुझसे मिलता है वो कहीं ना कहीं, अगर लोग इस बात को मानते हैं लेकिन मैं मानती हूँ, उसका कहीं ना कहीं पिछले जन्म का मुझसे नाता है. यानी वो मुझसे अलग नहीं है, वो

0: बिल्कुल, बिकॉज अभी आपने एक चीज बोली कि मैं आपको प्यार करती हूँ, और जिनका नजरिया पॉजिटिव होता है ऑफकोर्स उनके लिए सारी चीजें बहुत प्यारी सी हो जाती हैं। जो जैसे होता है वो वैसे ही सोचता है ना मैम, ये भी तो है ना। तो ये कायनात तो सच में बहुत खूबसूरत है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं, राइट। सो गाइज, ऐसी अमेजिंग बातें चलती रहेंगी गरिमा जी के साथ। फिलहाल एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, और मैं चाहूंगा ये ट्रैक आपकी पसंद का, जो आप चाहेंगी कि हमारे लिसनर्स को ये गाना जाना चाहिए। आनंद, यू नो एक होता है कि यार हाँ ये गाना मेरा फेवरेट है, कोई एक गाना जो आपको लगता है कि आनंद ये गाना बजना चाहिए हमारे श्रोताओं के लिए। आज आपके पास माइक है, तो आप भी इसमें थोड़ा सा अपना सहभागिता निभाइए अपनी।
1: श्योर, मैं आनंद आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मैं लिसनर वाली सीट पर होती और मुझे अपना चॉइस सॉन्ग देना पड़ता,
0: हाँ,
1: तो अभी जो हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है उसके हिसाब से दिल है छोटा सा छोटी सी आशा,
0: ब्यूटीफुल ट्रैक है।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स।

मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, आरजे आनंद के साथ हैं आप। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट टॉक शो, जहां पर हमारे साथ कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं और आप नहीं करता है उनकी प्रोनंसिएशन, उनके शब्द, उनके शब्दों की क्वालिटी, ये भी बहुत मैटर करती है, राइट? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ बोलना ही तो है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा आप अच्छा स्टेज संभालती है, नो डाउट। आप मेरे से बहुत बड़ी है, तो आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर। हमारी तो अभी शुरुआत है, सो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या सच में ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब आप बोलते हो तो सिर्फ बोलना मैटर नहीं करता है, आपके शब्द, आपकी क्लैरिटी बहुत मैटर करती है?
1: देखिए, अगर कोई दो बातें हैं, एक चीज तो ये है कि हम शौकिया तौर पे एंकरिंग कर रहे हैं,
0: राइट?
1: किसी स्कूल का फंक्शन है, स्कूल के टीचर को खड़ा कर दिया, भाई अच्छा बोलते हैं, चलो। लेकिन माइक पर जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। इस तरीके के कहते हैं शौकिया तौर पे करने पर आप भी नॉर्मली कर रहे होते हैं, कई बार आप अनस्क्रिप्टेड होते हैं तो उसमें का ध्यान नहीं रहता, भाव में बह जाते हैं, अपना ट्रैक कोई बात करते करते दूसरे ट्रैक पर आ जाते हैं, सब अपना जो आपका स्टेटमेंट है वो कंप्लीट भी नहीं होता, उससे पहले दूसरा स्टेटमेंट सामने आ जाता है। हमें ये लग रहा होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आपके सामने जो आपके लिसनर बैठे हैं उनका एज ग्रुप क्या है, वो क्या पसंद करने वाले लोग हैं, वो छोटे शहर के लोग हैं, वो बड़े शहर के लोग हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो अर्बन क्षेत्र के लोग हैं, उनका प्रोफाइल कैसा है। आपकी बात हमेशा उनके प्रोफाइल से मैच करती होनी चाहिए, तभी उनको इंटरेस्ट आएगा, तभी वो आपसे कनेक्ट होंगे। एंड एक एंकर को भी मजा तब आता है जब सामने वाला इंटरेक्टिव होता है, आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ जवाब दिया, आपकी बात पे सर हिलाया, आपकी बात पे नजर चलाई, आपकी बात पे खुद बिना कहे ताली बजाई, तो ये आपकी गेन्स हैं, ये आपको तभी मिलती है जब आप उनको वो देते हैं जिसके लिए वो वहाँ बैठे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल की। अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आप अफोर्ड करते हैं, तो ऑफकोर्स आपको कोई ना कोई छोटा मोटा कोर्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में अच्छा बोलते हैं ये हमें पता है, लेकिन बहुत सारे अच्छा बोलने के बाद भी जब आप माइक पर जाते हैं तो आपकी जो पिच है, या तो रेट ऑफ स्पीच बहुत हाई हो जाता है या बहुत लो हो जाता है, आपकी वॉइस में एक समान स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम रिदम में आप चल रहे होते हैं, तो वो मोनोटोनस हो जाता है। तो वॉइस को एक मॉड्यूलेशन की जरूरत होती है, कहां किन शब्दों पे स्ट्रेस करना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ही आप बहुत अच्छे एंकर माने जाएंगे,
0: करेक्ट,
1: या आप बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलेंगे तब आप अच्छे एंकर माने जाएंगे। आपको वो बात कहनी है, वो लैंग्वेज यूज करनी है, वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज इंग्लिश और वेदर इट इज प्योर हिंदी, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द जितना साफ निकलेगा उसी फ्रीक्वेंसी और उसी स्पष्टता के साथ में वो पब्लिक के माइंड में और दिल में जाएगा,
0: राइट।
1: और अगर कोई एंकर इंटायर द प्रोग्राम सामने वाले से आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाता, उसके दिल में नहीं उतर पाता, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है।
0: 100% सही बात है, और उस कमी को अगर आप सुधारोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, नो डाउट। अच्छा मैम, जब हम बात यहाँ पर बोलने की कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें, हम रेडियो में बैठे हैं तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, हमें लग रहा है कि मैं और आप ही हैं, लेकिन इसके बाहर कितने लोग सुन रहे हैं ये आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते, करेक्ट? लेकिन जब हम किसी एक उस जगह पर मिलते हैं जहाँ पे हमारे साथ 8-10,000-500 लोग होते हैं, लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, या कोई कॉन्सर्ट हो गया, कोई इवेंट्स हो गया, तो वहाँ पे कितने सारे लोग होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सबके साथ होता है, आई एम श्योर, मेरे साथ नहीं, हम में से जो इस चीज को कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि जब हम लाइव चीजें करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम जैसे आपने बताया ट्रैक से उतर जाते हैं, कई बार हम फंबल भी करते हैं, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हम बात कुछ और कहना चाह रहे हैं बट कुछ और बोल जाते हैं क्योंकि हम स्क्रिप्टेड नहीं है, कई बार बहुत सारे लोग नहीं करके जाते स्क्रिप्ट, बट उन्हें कॉन्फिडेंस होता है अपने काम पे, अपने आप पे, बट अगर अनफॉर्चुनेटली कभी आप ट्रैक से उतर गए या आपके साथ फंबल हुआ, आपके साथ वैसे कभी हुआ ये सिनेरियो?
1: देखो, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगी, फंबल कब होता है? फंबल तब होता है क्योंकि जो हमारा माइंड है वही हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है,
0: right.
1: वहीं से हमें शब्द मिल रहे होते हैं और वो आगे निकल रहे होते हैं। अगर हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, घर परिवार बॉसेस लड़ाई
0: खिचड़ी बन रही है घर,
1: बहुत कुछ चल रहा है, तो आपके बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रेलिवेंट है और कुछ इनरेलीवेंट,
0: राइट,
1: तो लेकिन वो जब एक ही स्टेट पर है तो वो कुछ भी आपके मुंह से निकल सकता है। समटाइम्स इट इज एक्सेप्टेड, समटाइम्स इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो जो बात आपने कही फंबल की, एक तो सबसे पहली चीज, जो लोग भी प्रोफेशनली इस करियर में है या आप कभी भी माइक पर आते हैं, आप ये मान के चलिए कि जैसे एक पायलट की जिम्मेदारी होती है कि उसके प्लेन में अगर 200 सवारी हैं तो उन्हें उनको सेफली लैंड कराना है। इसी तरह एक एंकर की जिम्मेदारी होती है कि आपकी उस 1.5 घंटे की जर्नी में आपके संग 1,000, 2,000, 3,000 जितने भी लोग हैं उन्हें आपको कम्प्लीटली बांध के रखना है और हैप्पी मोमेंट से उन्हें एंटर कराना है और हैप्पी मोमेंट से उन्हें लैंड कराना है।
0: करेक्ट।
1: वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप स्वयं खुश नहीं हो, तो आप हैप्पी वाइब्स दोगे कैसे?
0: सही बात।
1: आपके फेस में स्माइल नहीं है तो आप सामने वाले की स्माइल लाओगे कैसे?
0: 100%.
1: तो इसलिए आपकी व्हाटएवर द लाइफ यू आर स्पेंडिंग या व्हाटएवर द सिचुएशन यू आर इन, आपको उससे बाहर निकलना होगा। और वो कब होता है, मैं अपने केस का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब हर किसी की लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, मेरा प्रोफेशनल, सोशल, बहुत सारा करियर ऑप्शन चीजें हैं जो छाता चल, लेकिन जब मैं माइक पर जाती हूँ सो मैं सिर्फ 2 गहरी लंबी सांसें लेती हूँ, अपने प्रभु को थैंक्स करती हूँ उस पल के लिए, और उसके बाद मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसके बाद मैं एक जिम्मेदारी लेती हूँ कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं मुझे उनके चेहरे खुशी लानी है।
0: वाओ।
1: और वो तभी पॉसिबल है जब मैं इधर से अपने प्रयासों से खुद भी खुश रहूंगी, स्माइलिंग फेस रखूंगी और पॉजिटिव वाइब सामने ट्रांसफर करूंगी।
0: करेक्ट।
1: तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सब कुछ भूल करके बिल्कुल सिर्फ वन फोकस, और जो लोग वाकई इस प्रोफेशन के प्रति पैशनेट हैं वो अपने आप उस जगह पे जाके सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि दे आर एंजॉयिंग दैट
0: मोमेंट। एब्सोल्युटली।
1: बिकॉज़ आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन आप खुद के लिए भी कर रहे हैं, यू ऑल्सो एंजॉय
0: कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैम ने बोला और बहुत ही साफ शब्दों में जो है क्लियर कर दिया है। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में डेफिनेटली मैं करूंगा अभी, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरा भी हो और आप में से कई लोगों का भी होगा, और ये डर भी कई बार ना हमें पीछे छोड़ देता है और हम इस डर की वजह से कई बार अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। वो कौन सा डर है, वो कौन सी बात है? एक गाने के मैं डेफिनेटली आता हूँ। आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। आप सुनते रहिए आनंद को। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, सोशली आपको मिलता हूँ रेडियो वाला आनंद के नाम से। डोंट फॉरगेट फॉलो कीजिए, हमारी ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें देख भी सकते हैं। एक गाने के बाद मिलते हैं।

0: सो गाइस वेलकम बैक। ये वंस अगेन ये पॉजिटिविटी का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ डोज आप ले रहे हैं, आई एम श्योर आपको सुनकर मजा आ रहा होगा एंड मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग अलॉट बिकॉज मैम के साथ इतनी सारी बातें हो रही है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। और जरूरी नहीं है कि लाइफ में हमें हर बार कुछ सीखने को मिले, कभी कभी कुछ एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी होती है, लेकिन ऑफकोर्स यार यहाँ तो आपको सीखने को ही मिलेगा। रेडियो पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ ना अच्छी बातें भी होती है, तभी तो हम इसको बोलते हैं इन्फोटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो वो एक इन्फोटेनमेंट सेशन बन जाता है। जैसे कि मैम गरिमा मैम हमारे साथ बैठ के ढेर सारी बातें कर रही है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैम आपको नींद तो नहीं आ रही है ना? वैसे आनी तो नहीं चाहिए बिकॉज आपका तो खुद ये पार्ट है, आई नो, बट मेरा काम है बीच बीच में लोगों को जगाते रहना, बिकॉज यहाँ जितने भी लोग बैठते हैं मैं सबको पूछता हूँ बार बार कि भैया आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है।
1: आरजे आनंद के साथ में अगर दो पल तसल्ली वाले नहीं मिले तो फिर मुरादाबाद में एफएम का होना और एफएम में आनंद का होना बेकार है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ये मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। मैम इतना अच्छा आपने बोल दिया, मजा आ गया है। एंड अब एक चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लोगों को भी बताया था और आपके सामने ही मैंने एक क्वेश्चन मार्क दिया था कि मैम बहुत सारी चीजें ना हम करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है इनकी वजह से हम गिव अप कर देते हैं। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इंडिया में अभी भी बना हुआ है इंग्लिश, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड इनफैक्ट मेरी लाइफ में भी वो पार्ट है। यू नो आप सभी को बताया गाइस मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी खासी है नहीं, वैसे अगर अच्छी खासी होती तो शायद मैं कहीं अच्छी जगह बैठा होता हूं। इसका मतलब ये मतलब नहीं कि मैं रेडियो में अच्छा, भाई ये मेरे लिए बहुत, आई लव माई जॉब, आई लव माई प्रोफेशन, मैं इसके लिए ही बनाऊ तभी शायद ये मुझे यूनिवर्स ने दी है। बट मैं बात करता हूँ बैक टू पॉइंट, तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार इंग्लिश हमारी है नहीं, इवेंट्स में जाते हैं बड़े बड़े स्क्रिप्ट इंग्लिश में आते हैं, पढ़ नहीं पाएंगे तो होस्ट कैसे करेंगे, अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, वो थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं और कई बार ये अपॉर्चुनिटीज भी छोड़ देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
1: मैंने अभी पहले भी कोट किया था कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप अपना बेस्ट उसी में दे पाएंगे,
0: ठीक है, राइट।
1: अगर इंग्लिश आपके लिए इतना मैटर करती है तो फिर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप प्लीज उन्हें ज्वाइन कर लें, लेकिन अगर आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जितनी भी अगर हम कॉन्फ्रेंसेज की बात करें, बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग्स की बात करें, येस ऑफकोर्स वहां पर आपकी स्क्रिप्ट इंग्लिश में होती है, बट आज के टाइम में गूगल बाबा का सपोर्ट लेके आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं
0: 100%।
1: अगर जिस स्टेट में हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां कोई भी ऐसा मंच नहीं है जो आपको हिंदी बोलने से रोकेगा,
0: 100%
1: और ये तो हो सका है कि उस ऑडियंस में 15 लोग इंग्लिश में बोली हुई बात ना समझे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई भी हिंदी में बोली हुई बात ना समझे। तो जब मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस हिंदी समझ सकती है तो मेजोरिटी ऑफ स्पीकर्स हिंदी में बात क्यों नहीं कर सकते,
0: राइट।
1: और हिंदी में अगर मैं आपको बात कहूँ तो इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है, बहुत अच्छे वर्ड्स भी आप बोलना चाहते हैं तो आपको दिल से फीलिंग नहीं आएगी उन्हें बोलने में। इंग्लिश एक ड्रामेटिक लैंग्वेज है जो मैं समझती हूँ, जब हमें किसी पे इंप्रेशन डालना होता है तब हम इंग्लिश का सहारा लेते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी एक आत्मा से निकली हुई लैंग्वेज है, वो हमारी ओरिजिन है जिसके संग हम पैदा हुए हैं और बचपन से चलते आ रहे हैं, तो वी आर कम्फर्टेबल, कहीं गड़बड़ भी होगा तो संभाल लेंगे। और जब हम हिंदी से बात करते हैं तो हमारे जो शब्द होते हैं और जो हमारी बात करने का स्टाइल होता है, खासकर हिंदी में हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। तो जिस तरह से इंग्लिश एक प्रभाव डालने का तरीका है, हिंदी इंटरनली या इमोशनली कनेक्ट करने का तरीका है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हिंदी और इंग्लिश के समावेश से आप आगे बढ़ सकते हैं, और कभी भी ये मत सोचिए कि इंग्लिश मेरा बैरियर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आपका पर्पस लैंग्वेज प्रमोट करना नहीं है, आपका पर्पस खुशी, हैप्पीनेस, एक लाइव मोमेंट वहां पर बनाने का है,
0: right,
1: तो
0: right.
1: उसके लिए सिर्फ आपका अच्छा बोलना और कनेक्टेड होना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
0: एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा बोला मैम आपने, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस ज्यादातर हिंदी में बहुत अच्छे से हमें कनेक्ट कर पाती है, नो डाउट। और हम भाई लंदन का इवेंट तो होस्ट कर नहीं रहे हैं, जो मुझे भी कई बार लगता है कि यार रेडियो पे था इंग्लिश बहुत अच्छी, फिर मुझे बहुत से लोग
1: आनंद लंदन के प्रोग्राम में भी अगर कभी मुझे होस्ट करने का मौका मिलेगा ना, तो मैं हिंदी से स्टार्ट करूंगी, और मुझे इतना पता है कि उन्हें समझ में आए ना आए बट हिंदी के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि सामने वाला इमोशनली ट्रैप हो जाता है।
0: क्या बात है, एग्जैक्टली, आपने तो लंदन की बात को भी ऐसे घुमा दिया ना कि वो सेट हो गया हमारी कॉन्वर्सेशन पे, अमेजिंग। ये होता है सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा मैम, कई बार ना लोगों को यू नो ये लगता है कि यार हम बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं होता है, और मुझे लगता है कि हर एक इवेंट्स में आप जरूरी नहीं है कि आप स्क्रिप्ट लेके जाए, जैसे आपका बहुत चैलेंजिंग रहता है शेड्यूल, बहुत ज्यादा आपके लिए यू नो ऐसा हिटिंग वाला हो जाता है, कई बार आप बहुत ऑक्यूपाइड होते हो, नहीं भी आप कर पाते होंगे, बट आप इतने क्रिएटिव हो कि आप उस इवेंट्स को कर लेते हो मैनेज, बट हर इंसान इतना क्रिएटिविटी में यू नो नहीं स्ट्रांग होता है, तो वो क्या उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन किसी भी इवेंट से पहले?
1: देखो, शुरुआती दौर में जब हम इस इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं या हम इसे एज ए प्रोफेशन ले रहे हैं, सो ऑफकोर्स फंबल्स, क्योंकि जो आपकी शुरुआत होती है वो लोगों के माइंड में आपका परसेप्शन सेट है, अच्छा आरजे है या बुरा आरजे है या अच्छा एंकर है बुरा एंकर है। तो जब तक लोग आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे होते हैं या परसेप्शन बना रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड में आपका पॉजिटिव पार्ट ही उनको दिखाई दे, आपकी गलतियां कम से कम नजर आए, तो वो आपके प्रोफेशनल करियर में आगे आपको मदद करता है। अनस्क्रिप्टेड होना गलत बात नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं ध्यान कि मैंने कभी किसी की चोरी की हुई या कॉपी की हुई कोई भी कविता पढ़ी है या कभी किसी की शेर शायरी पढ़ी है। मैं सिर्फ वो दो पन्ने जरूर लेती हूँ जो उस प्रोग्राम से रेलिवेंट होते हैं, जैसे प्रोग्राम का एजेंडा हो गया, वर्क इवेंट फ्लो हो गया या लोगों के नाम की लिस्ट हो गई, लेकिन बाकी सब चीजें मैं वही के वही क्रिएट करती हूँ, स्पॉन्टेनियस होते हैं। और उसके लिए क्या है कि जो लोग आपने जब किसी का अनाउंस किया और फिर कोई पर्सन आया तो उसने क्या बोला, यू हैव टू बी नॉट ओनली अ गुड स्पीकर, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एज वेल। उसने जो बात कही उसी बात में से आपको एक लाइन उठानी है और उसी को आधार बना के अपनी अगली लाइन बोलनी है। तो जो लोग ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, ये चीजें आप कितना ज्यादा पेशेंस लिसनर है इस चीज से आती हैं। तो जो लोग स्टार्टिंग में बिगिनर हैं उनको तो मैं यही कहूंगी कि वो स्क्रिप्टिंग करें, बट स्क्रिप्टिंग में आप सिर्फ रेफरल पॉइंट्स लिखें, पूरी कहानी अगर आप लिखेंगे और अगर आप उसको पढ़ के बोलेंगे तो एक तो वॉइस का मॉड्यूलेशन कभी भी स्क्रिप्टेड चीज में नहीं बन सकता, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेट करने के लिए अपर और हायर और लोअर और मीडियम जाने के लिए आपको आई कनेक्टिविटी और इमोशनल बैलेंस की जरूरत होती है, वो स्क्रिप्टिंग करते वक्त नहीं हो पाता। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका प्रोग्राम आपकी सारी चीजें स्क्रिप्टेड हैं तो आपका आई कॉन्टेक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप बार बार नजर चुराओगे और पेपर पे नजर लेकर के जाओगे। आप जिस भी लाइन में जिस भी व्यक्ति को उस समय देख रहे होते हो वो उससे आपका एक कनेक्टिविटी मेंटेन हो रही होती है, वो रिदम टूट जाता है।
0: Exactly.
1: तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ रेफरल पॉइंट्स आप अपने हाथ पे लिख सकते हो या एक ऐसे पेपर पे सामने की तरफ लिख लो जिससे आपकी नजर ज्यादा ना भटके और आप अपनी ऑडियंस के संग की इस अगर हम कोर वर्ड बात करें जो क्रक्स है वो यही है कि जितना बेटर आप अपनी ऑडियंस के संग कनेक्ट रहोगे उतना बेटर आपकी परफॉर्मेंस आएगी एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय योर एंकर।
0: वेरी नाइस। एक गाने के बाद मैम से लेंगे इजाजत, बहुत सारी बातें होगी मैम को, मैंने थका डाला यार, लेकिन जाने से पहले कुछ अच्छे थॉट्स अच्छी बातें ऑफकोर्स मैम से सुनेंगे, एक अच्छा सा मैसेज जो वो कन्वे करना चाहती है हमारे यूथ को मुरादाबाद को, पर उससे पहले गाना, उसके बाद हम लौट।
2: की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
3: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र

0: में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
1: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,800 27 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
7: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
8: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
9: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
9: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
10: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक, सिर्फ FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां पर बातें होती हैं दिल की और जुड़ते हैं दिल से दिल। आज शुरुआत करते हैं प्यारी सी शायरी के साथ। हर बात जो लोगों ने कही वो सच हो ये ज़रूरी नहीं, कुछ बातें बस डर बन जाती हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं। सोचिए समझिए फिर मानिए, क्योंकि ज़िंदगी अपनी है, फैसले भी अपने ही होने चाहिए। तो आज हमारी बातें होंगी कुछ चटपटी सी, कुछ ऐसी जिन्हें कहते ना हम ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, या कुछ मिथक्स जो लाइफ में जुड़े होते हैं। हाँ हाँ, वो आपके साथ भी जुड़े हैं कि आज अगर ये हो गया तो बारिश हो जाएगी, या इसने रास्ता काट दिया तो ये काम ऐसे हो जाएगा। तो बताना अपनी अपनी बातें, तब तक हमें ये भी बताना कि कहाँ हूँ आप अटके हुए, स्टेशन के पास या रोडवेज के पास या फिर लाजपत नगर में प्रभात मार्केट के आसपास। जैसा भी हो अपडेट हमें ज़रूर दें, MDA में या मानसोवर में कहाँ है ट्रैफिक स्लो और कहाँ है ट्रैफिक फास्ट, दोनों का पता आपको बताना है। और करते हैं हम अपने एक लिसनर से बात, जो कहना चाह रहे हैं आज अपने दिल की बात, तो सुनिए क्या कहते हैं। हेलो, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो करते रहना चाहिए, मौसम कैसा हो रहा है? बिजली ज्यादा कड़क रही है? हवा तो अब धीरे धीरे अच्छी चल रही हो गई है। तो आज क्या क्या किया धैर्य आपने?
1: आज
0: पहले दिन आपने सारे काम जल्दी जल्दी में ही करे है ना?
1: हाँ।
0: और आज आपकी छुट्टी भी हो गई, आपके तो मजे आ गए होंगे आज तो। आपने घर में ही, आपने आज घर में ही धमा चौकड़ी मचा रखी होगी फिर तो। अरे भाई,
1: और जैसे मेरे को स्कूल का काम निकलना था तो वही मैं उसमें बैठ गया। मैं उठा हूँ 11 बजे, कभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई नहीं। मैं उठा हूँ, उसके बाद मैं उठा हूँ 1 बजे, पूरा क्लियर हो गया।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आज आपने छुट्टी वाले दिन भी पढ़ाई करी है, इससे अच्छी बात क्या है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ना, आज हम धैर्य बात कर रहे हैं माइस के ऊपर, कि क्या मिथक होते हैं जिन पे आप विश्वास करते हैं, जिन पे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे रास्ते से बिजली बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है तो रुक जाते हैं एक मिनट के लिए और फिर आगे जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, या आप किसी ऐसी कोई माइथ आपके साथ हुई और आपने वो किया उसके लिए? हाँ, वैसे तो अच्छी बात है, नहीं माननी चाहिए अंधविश्वास। और फिर क्या गए, गए या नहीं गए? अच्छा, अच्छा, तो तुम इसका मतलब आप वेट करते हो, अगर कोई रास्ता काट जाए तो जब तक दूसरा वो रास्ता पार नहीं करेगा तब तक आप आगे नहीं जाओगे?
1: हाँ।
0: क्या बात है साहब, ये भी एक अलग ही कहते हैं ना, इसे भी एक अलग अंधविश्वास। मगर कुछ अंधविश्वास जो हैं ये पहले से चलते हुए आ रहे हैं और ये ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ गए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम खुद ही ऑटोमेटिक रुक जाते हैं, ये बात तो है ना धैर्य?
1: हाँ, ये बात तो है। आगे तो
0: हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और ध्यान रखो, रास्ता कोई भी काटे अपने रास्ते पे तो हमें चलते रहना है ना।
1: हाँ।
0: चलो बहुत बढ़िया। कल की कल भी तुम्हारी छुट्टी है या नहीं?
1: छुट्टी
0: तो बस अब आराम करना, मस्ती करना और कल आराम से उठना फिर।
1: नहीं, कल मेरे को जल्दी उठना है और कल तो मेरे सारे फ्रेंड्स भी आ गए पार्क, तो मैं कल तो आराम से खेलूंगा पार्क में।
0: ठीक है धैर्य,
1: मतलब इतनी तो मेरा ना ये मानना है कि कहते हैं जिंदगी में हमेशा ऐसे होता है कि कभी बुरा टाइम आएगा तो अच्छा टाइम आएगा, इसलिए कभी रुकना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल सही, मार्क्स कैसे भी आए हमें पढ़ाई करती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है धैर्य, थैंक यू आज हमसे कनेक्ट करने के लिए और इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे धैर्य, जो कहते हैं कि एक अंधविश्वास तो उनके साथ भी जुड़ा हुआ है, जब भी वो कोई रास्ता उनके आगे से बिल्ली काट जाती है तो फिर वो रुक जाते हैं, और जब तक कोई दूसरा वो रास्ता पार नहीं करता है ना तब तक वो वहीं खड़े रहते हैं। तो क्या आप भी उसमें से हैं? अगर हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें या हमें कॉल करें 9837896896 पे। तब तक आते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ और करते हैं आपसे खूब सारी दिल से दिल की बात।

0: विश्वास किया और बाद में लगा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी।
1: बिल्कुल, लगा तो होगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा। हमारी एक लिसनर हैं संगीता जी, उन्होंने हमें मैसेज किया कि अखिल जी, मेरी दादी कहती थी कि रात को झाड़ू मत लगाओ। अब समझ आया कि पहले बिजली कम होती थी इसलिए सामान खोने का डर रहता था।
2: बिल्कुल सही कहा संगीता जी, यही तो बात है, हर परंपरा अंधविश्वास नहीं होती, कई बार उसके पीछे जो है ना कुछ अलग व्यवहारिक कारण भी होते हैं। और कहते हैं कि कुछ विश्वास और अंधविश्वास की बातें अगर हम अपने आपस, मतलब जब बातें करते हैं इनके बारे में, तो सारी बातें सब पिछले तरीके से, पिछले ज़माने से होती होती आती आगे आ रही हैं, और अब वक्त के साथ साथ थोड़ा सा सबका नज़रिया भी बदलता जा रहा है। हमारे साथ हमारे एक अभी कॉलर जुड़े हैं, पहले करते हैं चलिए उनसे कुछ बात और फिर देखते हैं क्या निकल के आती हैं कुछ नई बातें। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? धन्यवाद साहब, हमारी तरफ से भी आपको मोहब्बत भरा नमस्कार। क्या कर रहे हैं इस समय आप?
3: सर इस टाइम तो मैं बैठा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और साथ में आप प्रोग्राम पेश कर रहे हो, सर रहा नहीं गया, कॉल लगाई थी मैंने।
2: तो इस समय आप ठंडी ठंडी हवाओं का मजा ले रहे हैं?
3: जी सर, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। मुरादाबाद का मौसम कैसा है सर?
2: मुरादाबाद का मौसम अच्छा हो रहा है इस समय, अब थोड़ा जाके और अच्छा होने लगा है। इस समय ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ भी दिख रही हैं, चल रही हैं,
3: नींद अच्छी आ जाएगी रात में।
2: हाँ जी, नींद अच्छी आ जाएगी। तो आप बताइए, आज हमारी बातें चल रही हैं अंधविश्वास के ऊपर कि कितना आप उसे मानते हैं कितना नहीं। तो कोई ऐसी बात जो आपके साथ भी घटी हुई, कभी बिजली ने रास्ता काट लिया, या फिर कभी कहते हैं ना बिजली कड़क गई है तो बिजली कड़कने पे कोई चीज़ को बाहर मत बांधो, जैसे किसी भी जानवर को बाहर नहीं बांधा जाता।
3: हाँ सर, सर मैं पहले तो ये बिजली तड़पती है तो मैं खुद भी डरता हूँ, और जो मेरे पास होते हैं घर वाले कहते हैं पहले इन्हें अंदर बांध और बाद में हमारे पास में आना। और सर ये कहावत यह है कि हम कहीं बाहर जाते हैं बिल्ली मतलब जो रास्ता काट जाती है, ये कहते हैं कि आगे मत बढ़ना कोई नुकसान हो जाएगा यार। यार सर मुझे तो सर यार कुछ नहीं है, बिल्ली की कहावत तो खैर गलत है, मतलब जो बिजली तड़पती है सर ये कहावत सही है, मतलब अक्सर गिर जाती है, कोई कीड़ा होता है उसके ऊपर गिर जाती है काली चीज के ऊपर।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: तो जब से हमारे पास पशु हुए या कोई सांप वगैरह हुआ तो गिर जाती है, ये बात तो सही है सर, झूठ नहीं है। और ये बिल्ली वाली तो खैर कहावत सही नहीं है, देखा जाए तो
2: बिल्ली वाली सही नहीं लगती है, कोई बात नहीं। मगर जब भी कभी ऐसा होता है आपके आगे से बिल्ली काट जाती है तो आप क्या करते हो पहले ये बताओ?
3: सर जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो मैं भी रास्ता पार ही कर देता हूँ।
2: आप बिल्ली का रास्ता काट देते हैं ना?
3: किताब बराबर हो जाता ही है।
2: हाँ तो सही है साहब, हिसाब किताब बराबर रहता रहना चाहिए। और कोई आज गाने की पेशकश जो आप करना चाहें?
3: हाँ सर, आज मूवी का नाम है मिट्टी और सोना, गाने के बोले मारा जिसको मोहब्बत ने मारा, सर आज के सो में यारा सुन के कर देना।
2: ठीक है, जरूर जरूर जरूर ईश्वर जी, और आप खूब ठंडी हवाओं का आनंद लें, और बस आनंद लें, पता नहीं उड़ ना जाए उसके साथ। ठीक है,
3: उड़ेंगे तो ना खैर, बाकी तो आनंद तो ले रहे हैं। यहाँ मैंने आपके पास में भेज दिया, आपको आवाज आ रही है सन्नाटे की?
2: हाँ हाँ सर, हमारे पास भी सन्नाटे की खूब आवाज आ रही है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे ईश्वर जी, कह रहे हैं कि इस समय तो वो ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं और मौसम भी ऐसा चल रहा है, लोग झूमते हुए कांवड़ लेके आ रहे हैं और झूमते हुए इस समय भोले का नाम ले रहे हैं, तो ये सब ठंडी ठंडी हवाएं तो साहब आपको मिलेंगी। हमारे पास एक मैसेज आया है, हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है जी। गुड वाला इवनिंग, धन्यवाद, आपको भी गुड वाला इवनिंग है जी। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी आवाज़ बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप जब भी ये बात कहते हैं मुझे और अपना गला साफ करना पड़ता है कि थोड़ी और आवाज़ अच्छी हो जाए। शो बिंदास प्रेजेंट करते हैं ललिता कश्यप मुरादाबाद से। ललिता जी आप भी जो हैं बहुत सही समय पर मैसेज करती हैं और बहुत ही अच्छा जो हैं आप मैसेज के थ्रू हमें सबको मोटिवेट करती हैं। जय भोले की बम बम बोले, जय भोले की बम बम बोले। आपने एक मैसेज और लिखा है, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को गुमराह कर परिवारों में फूट डालने और रिश्ते तोड़ने का धंधा तेजी से बढ़ रहा है। मेरी FM के माध्यम से सभी से विनम्र अपील है कि ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए, अपने परिवार

में प्रेम, विश्वास, सम्मान और एकता बनाए रखें। जागरूक बने, विवेक से निर्णय लें और अंधविश्वास नहीं, सत्य व समझदारी का साथ दें। क्या बात कही है आपने ललिता कश्यप जी, और बिल्कुल सही बात कही है कि थोड़ा सा विवेक बना के रखें, थोड़ा सा जागरूक बने, थोड़ा बहुत तो देखिए अंधविश्वास और ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट आ गई हैं। तो जो चीज़ बाई डिफ़ॉल्ट आ गई वो धीरे धीरे से कम होंगी, मगर जहाँ आपको दिमाग लगाना है वहाँ तो ज़रूर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। एक मैसेज और हमारे लिसनर का आया हुआ है, तपन सूरज से होती है, धरती को तपना पड़ता है, जब घर के रिश्ते टूटते हैं तो दिल को तड़पना पड़ता है। क्या बात है। नेम शंकर लाल यादव जी, नमन निरांशी, ऋतु यादव, अमित यादव। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज क्ले चल सन्यासी मंदिर में तो ज़रूर हमने आपको इसकी आपकी फरमाइश को हम पूरा करेंगे। लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहे से आप बात कर रहे हैं, अखिल सर जी को नमस्ते। नमस्ते आपको भी। तो दोस्तों हम करते हैं छोटा सा ब्रेक, म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद आते हैं आपकी फरमाइश। और कहीं ना कहीं आपका भी ऐसा कोई ना कोई अंधविश्वास के बारे में कुछ है जो आपको लगता है कि हमारे साथ साझा करना चाहिए, और कुछ ऐसी बात जो आपने करी हो और आपके साथ घटित हुई हो और आपको बाद में विश्वास हुआ उस चीज़ पे, तो ज़रूर आप हमें मैसेज करें या फिर कॉल करें 9837896896 पे। तब तक हम आते प्यारे से म्यूजिकल गाने के बाद करते हैं खूब सारी गुफ्तगू।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: खंजर तो जो दिल में उतरना था उतर चुका। मैं
2: लोगों को देखा है।
1: मैं बुझसे नहीं हूँ, तुम्हारी बेवफाई नहीं मेरा।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोग शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। फ्यूजन एंड फैशन लेके आ रहे हैं तीज एंड रक्षाबंधन एग्जीबिशन कम सेव 9 अगस्त को मिगलानी सेलिब्रेशन पे सुबह 11:30 बजे से। एंट्री बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे आपको मिलेंगे खूब सारे स्टॉल्स रक्षाबंधन से आपकी शॉपिंग के लिए, और ट्रूप इन आइसक्रीम की वहाँ पे आपको मिलेगी बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम और मफिन्स खाने को। तो आप ज़रूर जाएं, खूब सारी शॉपिंग करें, मस्ती करें और एक बढ़िया सी सेल का आनंद भी लें। एग्जीबिशन कम सेल है, और जब भी ये लेके आते हैं श्रीमती गुंजन महेश्वरी जी एंड प्रिया अग्रवाल जी, तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेके आते हैं। तो ज़रूर आप इनकी एग्जीबिशन का पार्ट बने और एंजॉय करें उस 9 अगस्त को मिगलानी सेलिब्रेशन पर। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी पहेली और बड़ी सी पहेली आपके लिए लेके आए हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी सूखती है उतनी ही गीली करती है? ये बताइए, हमें मैसेज करें या कॉल करके बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितना सूखती है उतनी ही गीली करती है। पता तो चली गया होगा, सुबह सुबह इस्तेमाल में बहुत होता है आपके साथ। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक लिसनर, करते हैं उनसे कुछ बात और पूछते हैं क्या है उनके हालचाल। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका, सभी को बताएं।
1: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, साहब गुप्ता साकिबुल्ला की जारत के पीछे नक्की पैसे बोल रहे हैं।
0: मुरादाबाद से बोल रहे हैं, तो सबको
1: बता दीजिए। नाम होता तो सीने से लगा होता, बाप इंसानों के रस्सियों में पड़ा होता।
0: क्या बात है उस्मान जी, क्या बात है। और इस समय क्या कर रहे हैं उस्मान जी आप? इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय रेडियो सुनने के साथ साथ क्या काम कर रहे हैं?
1: और रहा नहीं जाता, आपको जरूर फोन करना पड़ता
0: है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, आपसे रहा नहीं जाता है। कभी मुझे जरूर है, पूरी उम्मीद है एक दिन आप हमारे एफएम स्टेशन पे जरूर आके मिलेंगे हमसे। तो आज कोई शायरी सुना रहे हैं उस्मान जी पहले?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे आप कहेंगे।
0: सुनाइए सुनाइए, पहले पहला आपकी शायरी से शुरुआत करते हैं।
1: मैं अल्फाज हूँ, तेरी हर बात समझता हूँ। मैं एहसास हूँ, तेरे जज्बात समझता हूँ। जब कब पूछा मैंने क्यों तू दूर हो मुझसे, मैं भी दिल रखता हूँ, तेरे हालात समझता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, आप हालात बहुत अच्छा समझ रहे हैं।
1: किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया उस्मान जी, आज बहुत ही दिल से, गहरे दिल से निकल के आई है शायरी, क्या बात। सुबह सुबह
1: मेहरबानी है साहब, मुझे प्रोग्राम अच्छा सुनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं और आपकी टीम बहुत बढ़िया।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आज हमारी उस्मान जी बात चल रही थी कि कुछ अंधविश्वास होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं ना, हमारे रोज दिनचर्या में हमारे साथ वो अंधविश्वास भी हमारे साथ चलते हैं। जैसे शाम के बाद नखून मत काटा करो, ग्रहण के समय बाहर मत निकला करो, काली बिल्ली रास्ता काट जाए। तो कभी आपके साथ हुआ है ऐसा?
1: ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और जो होने वाली बात होती है वो हो जाती है।
0: तो कभी ऐसा हुआ है किसी काली बिल्ली ने आपका रास्ता काटा और फिर आपने उसका भी रास्ता काट दिया हो?
1: नहीं, हम तो अगर बिल्ली भी रास्ता काट जाती, हम जब भी निकल जाते, कुछ नहीं हुआ अभी तक आपके द्वारा।
0: चलिए चलिए साहब, बहुत ही बढ़िया है और अच्छी बात कही आपने।
1: आपका नाम है?
0: अच्छा अच्छा, अब भी साहब अपनी चिट्ठी पहुँचवा रहे हैं, आप अपनी चिट्ठियां भेजते रहेंगे अपनी इधर उधर, पता ना चल जाए लोगों को कि अभी भी उस्मान भाई सब जगह चिट्ठी भेज रहे हैं। पकड़ में आ जाओगे आप एक दिन।
1: अरे हम तो पहले से हर रेडियो स्टेशन के श्रोता है।
0: धन्यवाद उस्मान भाई, धन्यवाद।
1: और चिट्ठी भेजते थे रात को, लिखते थे सुबह ही डाल दिया करते थे।
0: हाँ सर, एक आध कबूतर आप इधर भी उड़ा दीजिएगा, हम भी देखें।

0: आपकी चिट्ठी कैसे आती
1: सबको खुश कर
0: धन्यवाद
1: देते हैं और बढ़िया प्रस्तुत करते हैं आप, आपकी
0: धन्यवाद
1: टीम बहुत बढ़िया।
0: धन्यवाद साहब धन्यवाद। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ उस्मान जी, जिन्होंने इतनी बढ़िया शायरी सुनाई, उसके बाद इन्होंने गाना भी बहुत अच्छा सजेस्ट किया। कहते हैं कबूतर जा जा जा मेरे पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को पहुँचा। तो अब इनकी चिट्ठी कहाँ पहुँच रही है ये तो सिर्फ इन्हें ही पता होगी, मगर हाँ आपकी और हमारी चिट्ठी तो यहीं स्टूडियो तक आ रही है और गाने के थ्रू आप सभी तक पहुँच रही है। तो ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट भेजें, कॉल करें 9837896896 पे और बातें करें कुछ दिल से दिल की। तो जो भी आप मानते हैं या इनमें से कोई भी ऐसी बात कि आप इन अंधविश्वास पे विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं, या मैं केवल तर्क और विज्ञान पे विश्वास करता हूँ या करती हूँ, तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ होगा, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हम आते हैं छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद और फिर करेंगे लास्ट कॉल अटेंड और करेंगे खूब सारी दिल से दिल के बात। तो क्या पता वो की हो, गाड़ी चला रहे हैं साहब थोड़ी हल्की हल्की चलाएं, भले ही रास्ता बिल्कुल साफ हो तब भी किनारे किनारे चिपक के चलाएं और हॉर्न को कम ही बजाएं, हो सके तो ना ही बजाएं। साइलेंटली जो कार चलाने का मज़ा है, गाने सुनते हुए का मज़ा है और आपस में बात करते हुए का जो आनंद है वो कहीं नहीं है। ड्राइव करें सेफली करें, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, अगल बगल भी झांकते रहें, मगर सामने रास्ता हमेशा फोकस होना चाहिए। क्योंकि आजकल मोबाइल ऐसा हो गया कि एक हाथ में स्टेयरिंग है और एक हाथ पे आपका मोबाइल चल रहा है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो स्कूटी हो। तो गाड़ी वालों के लिए भी है कि ये नहीं कि अगर मोबाइल हाथ में है तो आप ज़्यादा सेफ़ हैं गाड़ी के अंदर हैं, नहीं जी नहीं। जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस ड्राइविंग का आनंद लीजिए, आस पड़ोस में देखिए कि कहाँ कोई बल्ब भी अभी भी लगा हुआ है डिवाइडर पे या नहीं, या क्या आसपास विकास चल रहा है। विकास तो आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो अगले चौराहे पे मिलेगा। तब तक के लिए सुनते हैं बढ़िया सा एक गाना।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हमारे पास मैसेज आया है प्रिया जी का, कहती हैं मैं शुभ काम करने से पहले, मैं कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान का नाम लेती हूं, लेकिन अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती। तो क्या बात है प्रिया जी, बहुत ही सुंदर सोच है आपकी। आज तक हमें जो है ना, हमें जितनी कहते हैं ना सकारात्मक सोच बनती है हमारी, और लेकिन जो डर है हमारी सोच को सीमित कर सकता है। तो जितना हम आस्था में जितना विश्वास करेंगे उतना ही हम थोड़े से सकारात्मक वे में जाएंगे और इन सब चीज़ों से भी आगे निकल के आएंगे। एक शायरी जो हमारे पास भेजी है संगीता जी ने, क्या बात है आज जो है सब वुमेन एम्पावरमेंट हुआ पड़ा है, मैसेजेस हमारे पास महिलाओं के इतने आए हुए हैं। यकीन खुद पर रखो तो राहें बन जाती हैं, डर पर भरोसा रखो तो मंजिलें खो जाती हैं। जिंदगी हिम्मत वालों की कहानी है, अंधविश्वास नहीं विश्वास की निशानी। क्या बात है संगीता जी, आपने तो आज के टॉपिक के ऊपर ही इतनी बढ़िया शायरी लिख दी। तो दोस्तों जो मैंने पहली पूछी थी, मुझे पूरी उम्मीद है मैसेजेस हमारे पास आए हैं। एक ने हमें मैसेज किया है, अर्जुन यादव जी ने मैसेज में लिखा है स्पंज कह सकते हैं, मगर जो असली जवाब है वो है तौलिया, क्योंकि जितना वो खुद को सुखाता है ना उतना ही हमें सुखा देता है। तो आज का जवाब जो है हमारे पास कोई सही से नहीं दे पाया, मगर अर्जुन जी आपने बहुत अच्छा ट्राई किया और बहुत ही बढ़िया, मतलब कहीं ना कहीं आपने सोच के निकाल ही लिया था कि हाँ ये हो सकता है। और हम बात करेंगे अपने नए लिसनर से और कहते हैं कि क्या अंधविश्वास में कितना विश्वास सकती हैं। हेलो,
1: मेरा नाम गुंजन है।
0: गुंजन जो बहुत ही गूंज रही, और बताइए इस समय क्या कर रही हैं आप? तो जब आप बैठी हैं तो आज आपको पता चला हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ज्यादातर? तो बताइए आप क्या बातें कर रहे हैं आज? हम
1: आज बात कर रहे हैं रिवाज पे, क्योंकि रिवाज जैसे कि दिल्ली में रास्ते काट दिए तो जाते नहीं
0: है। हाँ, मैं तो बात कर रहा हूँ अंधविश्वास की, उसमें से एक बात होती है जैसे कभी कहते हैं ना हम लोग कि अगर भैया बिल्ली ने सामने से रास्ता काट लिया तो हम आगे रुक के जाएंगे, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ है? आपके कब कब हुआ है आपके साथ? और आप रुक जाती हो फिर आप ये नहीं सोचती हो कि मैं क्यों रुकी हूँ?
1: नहीं,
0: बस आप थोड़ी देर तक रुकी रहती हो हैं? जब तक कोई निकलता नहीं है तब तक आप रुकी रहती हो। तो ठीक है, आप भी जो है ना गुंजन नाम बताया ना आपने अपना, तो गुंजन हमारे साथ एक हमारे आज एक लिसनर जुड़े थे धैर्य, वो भी स्कूल में अभी पढ़ाई करते हैं, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि जब भी सामने से बिल्ली रास्ता काट जाती है तो मैं रुक जाता हूँ, जब तक कोई दूसरा बंदा वहाँ से रास्ता नहीं काटता मैं भी नहीं गुजरता हूँ। तो आप आज दोनों जो है ना बिल्कुल सही स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो फिर। चलिए ये तो मजाक रहा, आज गाना। हाँ तो तब तो आपने, तब तो किसी ने रास्ता नहीं काटा ना आपका? सही है सही है सही है। तो आज कौन सा गाना सुनोगी आप?
1: दिल मांग रहा है।
0: दिल मांग रहा है
1: मोहलत।
0: मोहलत कल स्कूल जाना है या कल स्कूल जाना है या उसकी भी मोहलत चाहिए? नहीं भैया हमें एक दो दिन की मोहलत दे दो, उसके बाद जाएंगे स्कूल।
1: अगर स्कूल खुल जाएगा तो जाऊंगी।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये तो सुबह ही पता चलेगा, पक्का पूरा सुनाऊंगा। ओके गुंजन, बाय बाय। तो ये थी हमारे साथ नटखट गुंजन जी, जो कहती हैं हमेशा कि भैया मेरा ये गाना तो पूरा सुनाना। तो हम गाना आपका पूरा ही सुनाएंगे गुंजन जी, उसकी कोई कहीं से कहीं तक कमी नहीं रखेंगे। हाँ, हम कोई गाना नहीं काटेंगे, भले ही रास्ता काटने पर आप रुक जाते हैं मगर हम कोई गाना नहीं काटेंगे, आपको गाना पूरा सुनाएंगे। तो दोस्तों आज हमारे साथ खूब सारी बातें हुई इस अंधविश्वास की, जबकि पूरा कहते हैं ना ये टॉपिक इतना है कि जितनी बातें करो उतनी कम है। हमने तो आज सिर्फ एक आध बातों पे ही आके जो है इतना हमने समय में सब लोगों के साथ शेयर करी, बहुत सारी बातें हैं, इसे कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले दिनों में इसके ऊपर खूब सारी बातें भी करेंगे। जाने से पहले एक बढ़िया सी शायरी एक आप सभी के लिए, सोच खुली हो तो रास्ते भी खुल जाते हैं, हौसले हों तो सपने भी सच हो जाते हैं, डर नहीं विश्वास रखिए अपने कर्मों पर, यही जीवन को खूबसूरत बना जाते हैं। तो ऐसे ही हमें खूब मस्ती से रहना है, अपने पे विश्वास ज़्यादा करना है, ना कि अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास रखना है, और खूब हंसते रहो, हंसाते रहो, खिलखिलाते रहो, और ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलके रहो, तो सारे विश्वास, सारे जितने भी आसपास आपके अंधविश्वास है, सब आसपास भाग जाएंगे, आपके से दूर भाग जाएंगे। तो मैं था आपका दोस्त अभी भी हूँ, अब मुझे

दीजिए इजाजत, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ मुरादाबाद, क्योंकि यहाँ दिल जुड़ते हैं दिल से दिल तक। नमस्कार, शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।